मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शुक्रवार है। शक्सवत 1948 के आषाढ़ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। 5:57 होने को हैं। प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर

0: दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले समूह सर्म सुनते हैं वीरेंद्र मिश्र की ये मातृवंदना।

आइए अब सुनते हैं MS सुबुलक्ष्मी के स्वर में ये भक्ति पद।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री सुरेश तिवारी का है।
1: यूनान में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ डायोजनीस। वो बड़ी दोपहरी में लालटेन लेकर घूमता था। जलती लालटेन लेकर वो होता था एथेंस की सड़कों पर। लोग उससे पूछते, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम क्या खोज रहे हो लालटेन लेकर? वो लोगों के चेहरे में लालटेन से देखता, वो कहता, मैं आदमी खोज रहा हूं। जिंदगी के अंत में जब डायोजनीस मर रहा था तो किसी ने उससे पूछा, तुम जिंदगी भर दिन की दोपहरी में लालटेन जलाकर आदमी खोजते रहे, मिला? डायोजनीस ने आंखें खोली और कहा, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन यही क्या कम है कि किसी ने मेरी लालटेन नहीं चुराई। धन्यवाद इसी का कि लालटेन बच गई, नहीं तो कई की नजर लालटेन पर लगी थी। आदमी तो मिलता नहीं था, और आदमी मिलना कठिन है क्योंकि हर आदमी गौण हो गया है। डायोजनीस अपनी तलाश में आदमी ढूंढ रहा था, और आज का आदमी अपनी तलाश में क्या ढूंढ रहा है? आदमी अभी क्या है और कहां है? आदमी के बीच आज अपनेपन और प्रेम का अभाव हो गया है। आदमी आज विकास के नाम पर ज्यादा से ज्यादा काम करने में जुटा है। आदमी आज ज्यादा से ज्यादा हासिल करने में जुटा है। विकास के साथ उसकी दौड़ भौतिक साधनों को अपनी सीमा से कहीं ज्यादा पा लेने के लिए है। अधिक से अधिक पा लेने की दौड़ में आदमी वास्तव में कुछ पा रहा है या नहीं? पर यह दौड़ हरेक आदमी को थका दे रही है। हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ रहे हैं। हम कहां पहुंच रहे हैं या हम कहां पहुंचेंगे, ये अलग बात है, लेकिन इस प्रवृत्ति के कारण आपसी प्रेम और भाईचारे पर बहुत असर पड़ा है। विकास की दौड़ में भाईचारा खत्म हो रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है। आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रवृत्ति ने कटुता फैलाई है। कटुता अपने पीछे बेचैनी लाती है। भाग दौड़ की इस दुनिया में हमें वास्तव में जो कुछ ढूंढना चाहिए वो है सुकून। सुकून हमने एक बार पा लिया तो बाकी सब चीजें हम पा सकते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य को भी पहचानना चाहिए। बर्फ के दो टुकड़े को मिलाने की कोशिश करो, मुश्किल होगी, लेकिन वे ही पिघल जाएं, जल होकर बिल्कुल मिल जाते हैं। सीमा खो गई, मिलन सुलभ हो गया। इसी तरह दर्द और संवेदना की भी अपनी सीमा होती है। किसी के दर्द में शामिल होना और उसे दूर करने में भी अजब सा सुकून मिलता है। ऐसे सुकून की व्याख्या बहुत आसान नहीं होती। एक मार्मिक प्रसंग आपके सामने रखते हैं। जाड़े के दिन थे, महात्मा गांधी सेवाग्राम स्थित अपने आश्रम की गौशाला में पहुंचे। गायों की पीठ पर हाथ फेरा, बछड़ों को प्यार से सहलाया, और तभी उनकी नजर वहीं खड़े एक गरीब लड़के पर पड़ी। बापू उसके पास आए और उससे पूछा, तू रात में यहीं सोता है? लड़के ने सिर हिलाया, हां बापू। बा की सहायता से साड़ियों का खोल सी डाला और अखबार के मोटे कागज और रुई भरकर कुछ एक घंटों में ही गुदड़ी तैयार कर दी गई। गौशाला के उस गरीब बालक को बुलाया गांधी जी ने, और वो गुदड़ी उसे दे दी। दूसरे दिन सुबह गांधी जी फिर गौशाला में गए। लड़का दौड़ता हुआ आया, बापू रात मुझे बहुत मीठी नींद आई। बापू मुस्कुराए और कहा, सच? तब तो मैं भी इसी तरह की गुदड़ी बनवाकर ओढ़ूंगा। इस तरह हम देखते हैं कि दीन दुखियों की सेवा करने के बाद जो खुशी हमें प्राप्त होती है, उसे शब्दों के माध्यम से

0: जान कर पाना कठिन है। हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की तरफ जाना होगा। गरीब असहाय बेबस लोगों की सहायता करके ही हम वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमें मानसिक शांति मिल सकती है, जिसकी हमें तलाश है।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे आलेख श्री सुरेश तिवारी का था। मीडिया वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडिया वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

चित्रकूट पहुंचकर श्रीराम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रीराम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले हे नाथ कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं नगर निवासी सेवक गण सेनापति मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहाँ आए हैं।

0: श्री रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे। इसके संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। मुख्य गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में शून्य भू परिष्करण यानी जीरो टिलेज की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के साहू।
1: हमर सबो किसान भाई बहनी मन ल जय जुहार। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। मैं आप मन ल अभी बताना चाहत हूँ कि शून्य भू परिष्करण का है, जिला जीरो टिलेज कथें। मतलब ओमा खेत के जुताई, जो हमन गहरी जुताई खास कर कहन, वो गहरी जुताई के तो कल्पने नहीं है, उमा बिल्कुल मना है वह। और इमा ये जो जीरो टिलेज है, ये कृषि के आधुनिक तकनीक है। इमा बिना खेत ल जोते जो पहली हम फसल ले रहे हैं, ओकर अवशेष के बीच में ही हम जो बीज ल सीधा बुआई कर देथन मशीन के द्वारा, वो तकनीक ल शून्य भू परिष्करण या जीरो टिलेज तकनीक कथें। और ये तकनीक जो है वो खासकर जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बोए जाते। तो एमा लाइन से हम जो बीज ल बोथन, एमा हमार बीज के बचत भी होते, और जो भूमि के जो अधिक ज़्यादा टिलेज करे से या जुताई करे से जो भूमि के गुणवत्ता में विपरीत असर पड़त रही से, ओकर से भी बचाव होते। और ख़ास कर जो हमर जो वर्षा आधारित क्षेत्र है, जिमें पानी के कमी है और हमर पोषक तत्व ऑर्गेनिक कार्बन के कमी है, वहाँ ये दोनों के समस्या से निपटे बर ये जीरो टिलेज तकनीक है बहुत उपयुक्त पाए गए है। और एमा जो अतिरिक्त जो अनावश्यक जो जुताई है, उकर खर्चा से भी बचत होते। अब तो एमा दो प्रकार के चीज़ हम देखें कि जैसे मान लो लागत और समय में बचत, ये सबसे मुख्य एकर आकर्षण है कि पारंपरिक जुताई करे में ईंधन है, श्रम है और समय है, ओमा बहुत कमी आते। और ये जो कमी होते तेन है हमार 2,000 से 2,500 रुपया तक के एक हेक्टेयर के पीछे किसान भाई मन के बचत भी हो जाते। तो ये आम के आम गुठली के दाम भी कह सकत हन। वैसने मिट्टी के संरक्षण का है, बिना जुताई के मिट्टी के नमी जो है वो बने रहते, उमा ओकर नुकसान नहीं हो। खास कर जैसे धान के बाद हम रबी फसल ले थन तो, और कम सिंचाई है या वर्षा आश्रित हम खेती करत हन, तो उमा हमर नमी के बनाए रखना, भू नमी वो जरूरी है। और एकर से भूमि के कटाव में कमी आते। मतलब ज़्यादा आप जोत दे है तो मिट्टी है पानी के साथ

कृषि चर्चा में कृषि में शून्य भू परिष्करण यानी जीरो टिलेज की जानकारी दे रहे थे डॉक्टर के साहू। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का प्रसारण होगा 8:30 पर और 9:30 पर करंट अफेयर्स आप सुन सकेंगे। इन कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा पंडित मुकुंद भाले का तबला वादन, ताल तीन ताल में पेशकार कायदा रेला परण उठान चक्रदार फरद आदि पर निबद्ध होगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण होगा 10:00। ये प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति होगी। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम का समय होगा 8:30 पर। इसमें आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री सुनील सोनी से रमाशंकर की बातचीत। नवा बिहान, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 9:00। इसमें आप सुनेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर महिला और बाल विकास विभाग रायपुर की सहायक संचालक श्रीमती ममता भगत से बीरभान साहू के गोठबात का दूसरा भाग। हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर का समय होगा 7:05 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी 5:10 पर हिंदी में प्रसारित होगा। आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस। साथ ही सेहत कार्यक्रम में सुनेगा युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान विषय पर डॉक्टर एस एन मढ़रिया से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता होंगे दीपक हटवार और साथ ही होगा कार्यक्रम अपनी पसंद। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल 7:20 पर। 7:21 पर इसमें आज की बात का विषय होगा पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती। हेलो चौपाल में बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग पर जानकारी देंगे महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर तुरनलाल साहू। कार्यक्रम का संचालन करेंगी पूजा चंद्रवंशी और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:40 और 8:15 पर आप सुन सकेंगे मीनू पुरुषोत्तम को। 6:30 पर जवाहर बघेल के गाय छत्तीसगढ़ी गीत आप सुन सकेंगे। 11:05 पर अन्य प्रदेशों के गीतों का कार्यक्रम अनुराग धारा में सुनिएगा बुंदेली लोकगीत। कलाकार होंगे संजय उपाध्याय। उत्कल भारती कार्यक्रम में 10:00 आप सुन सकेंगे उड़िया लोकगीत। कलाकार होंगे ब्रजमोहन दास और साथी। चित्रपट संगीत का आप आनंद उठा सकेंगे 9:15 पर, 10:30 पर, 1:05, 2:00, 2:30, 7:00, 8:00, 9:15 पर, 11:05 पर। 11:30 का समय होगा सदाबहार नगमों के लिए और 10:30 पर प्रसारित होगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकेंगे 12:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनेगा 5:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियों का समय होगा 6:30 पर। हम आप

0: एक बार पुनः दिल्ली केंद्र से प्रसारित कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। स्पोर्ट्स जिसके इनका प्रसारण होगा रात 8:30 पर और रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे करेंट अफेयर्स। इन कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। ये हमारे प्रादेशिक समाचार एकांश आकर्षण रायपुर की प्रस्तुति होगी। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रांतिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्य जनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति जनान् सशक्तञ्च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्वः आरभ्य 29 दिनांक पर्यन्तं सेशल्स देशस्य राजनैतिक यात्रायां भविष्यति। सः तत्र सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्णजयन्ती उत्सवे अतिथि रूपेण भागं ग्रहीष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा 2015 वर्षे सेशल्स देशस्य भ्रमणं कृतमासीत्। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकं दलं भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। द्विपक्षीय सहकार्यस्य संपूर्ण समीक्षां करिष्यति अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यति। प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रीय सभायाः संबोधनं च करिष्यति। प्रवासी भारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को समन्वय केन्द्रे 10 संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादकद्रव्यनियन्त्रण अभिकरणद्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीयमन्त्रालयानां राज्यसर्वकाराणां मादकद्रव्यविधिप्रवर्तनसंस्थानां च प्रतिनिधयः एकत्रिताः भविष्यन्ति येन देशे सर्वत्र मादकद्रव्यव्यापारस्य मादकद्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री शाहः मादकद्रव्य नियन्त्रण विषयम् अग्रिम कार्ययोजना प्रतिवेदनं च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधिः वर्तते। अस्मिन् मासे 21 आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यकशुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इन्धनस्य आपूर्ति विषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबन्धनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलित

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण। नमस्कार रायपुर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन।

श्रोताओं, अभी सुबह के 7:07 हुए हैं। सुबह की बेला है, यह समय नींद को दूर कर, आलस्य को त्याग कर और दिन को की बेहतर शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इन दिनों मानसून की बौछार पड़ चुकी है, यह बौछार गर्मी से राहत दे रही है। प्रकृति भी बारिश की बूंदों में सराबोर होने को बेकरार है। अब देखिए ना, गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे जो मुरझाए हुए से दिख रहे थे, उनका रंग भी थोड़ा सा फीका सा लग रहा था और इन दिनों पड़ी बौछारों से वह फिर हरा भरा होने लगा है। वैसे भी इन दिनों की बात ही अलग है और वे दिन अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। इसका सिलसिला 21 जून से शुरू हो चुका है। किसान भी हल और बैल लेकर खेतों की ओर जाने को बेकरार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बारिश में भीगने को हम बेकरार से हैं। वैसे भी बारिश हो और वो भी पहली बौछार किसे अच्छी नहीं लगती। बस थोड़ी सी सावधानी के साथ बारिश का आनंद हम उठा सकते हैं।

सबकी वाणी आकाशवाणी। श्रोताओं, हर दिन कोई न कोई नया संदेश लेकर आता है। यह हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। आज है 26 जून। ये दिन हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उनकी तस्करी के विरुद्ध जागरूक होने का संदेश देता है। इसलिए हर साल 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और सेवन से मुक्त दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक संकल्प पारित कर इस दिवस की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय द्वारा सदस्य देशों का समर्थन किया जाता है ताकि स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण, पुनर्वास और अवैध खेती के विकल्पों पर काम किया जा सके। इस दिवस पर भारत सरकार, विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा देशभर में नशा मुक्त भारत अभियान और जागरूकता पखवाड़े चलाए जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां नशीली दवाओं को जब्त कर नष्ट करता है। इस काम में कई अड़चनें आती हैं और इसे लड़ते हुए ऐसे कामों में कई अड़चनें आती हैं, कई तरह की परेशानियां भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है।

श्रोताओं, अच्छा काम करने पर तारीफ मिले, कोई प्रशंसा करे तो किसे अच्छा नहीं लगता, और इसके साथ ही यदि पुरस्कार मिले तो अरे तब तो फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले साल जिन बच्चों ने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। और हर साल ये प्रोग्राम होता है और इस पुरस्कार के लिए इस बार भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों, अभिभावकों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों से इसके लिए आवेदन मंगाए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वोच्च बाल सम्मान माना जाता है। चयनित बच्चों को यह सम्मान राष्ट्रपति के हाथों दिया जाएगा।

आकाशवाणी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन की वाणी। वैसे भी हमारा नमस्कार रायपुर कार्यक्रम सूचनात्मक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो श्रोताओं शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। प्रदेश के गृह विभाग में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानी ADPO की 15 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 21 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया के तहत 10 नियमित और 5 बैचलर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। 3 घंटे की लिखित परीक्षा में कुल 300 अंकों की होगी और इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में छत्तीसगढ़ और भारत के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न होंगे, इसमें 100 अंक होंगे और दूसरे भाग में विधि से संबंधित 100 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में 2-2 अंक होंगे। इस तरह ये 200 अंक के होंगे। इस बार कानून विषय के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को इसमें शामिल किया गया है।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुराने छात्रों का पंजीयन चल रहा है और वहीं नए छात्र 1 अगस्त तक पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पोस्ट मैट्रिक postmatric.scholarship.schoolkr.ship.cg.nic.in पर ऑनलाइन की जा सकती है। आपकी सुविधा के लिए हम विभागीय पोर्टल का एड्रेस एक बार पुनः बता देते हैं, पोस्ट मैट्रिक postmatric.scholarship.cg.nic.in। वर्ष 2026-27 से छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR को अनिवार्य किया गया है। साथ ही नई संस्थाओं के प्रमुखों और छात्रवृत्ति प्रभारियों के लिए भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी इसमें लागू की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को आजीविका और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा आगामी 1 जुलाई 2026 से लागू की जा रही है वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना। इसको लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा

निर्धारित कार्य योजना के अनुसार 30 जून तक पंचायत, विकासखंड स्तर और जिला स्तर के सभी अधिकारी, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों को प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे, ताकि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न आए और पात्र परिवारों को समय पर इसका लाभ मिल सके। वीबी जी राम जी, ये योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.govin/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए पोर्टल का एड्रेस एक बार पुनः बता देते हैं। पोर्टल का एड्रेस है https://awards.gov.in। पुरस्कारों के माध्यम से उन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास सेवाएं, कौशल और दक्षता विकास, रोजगार सृजन, सुगम्यता को बढ़ावा देने, अनुसंधान और नवाचार, खेल, कला, साहित्य और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां और योगदान इसमें शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग ने पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों से निर्धारित समयावधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया है। ये पुरस्कार न केवल उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने का माध्यम है बल्कि समाज में दिव्यांगजन अधिकारों और समावेशी विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। राष्ट्रीय पुरस्कारों से दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत प्रेरणादायी व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके प्रयासों को देश भर में एक नई पहचान मिलेगी।

बरसात का मौसम केवल राहत की फुहार ही नहीं लाता श्रोताओं, बल्कि घर की बालकनी, छत अथवा छोटे से आंगन को हरी भरी सब्जियों से सजाने का सुनहरा अवसर भी देता है। वर्षा की नमी, अपेक्षाकृत कम तापमान और प्राकृतिक आर्द्रता पौधों के वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। यदि थोड़ी समझदारी से पौधों का चयन किया जाए और मिट्टी की तैयारी पर ध्यान दिया जाए तो सीमित स्थान में भी बढ़िया सब्जियां प्राप्त की जा सकती हैं। बारिश में घर की बालकनी या फिर छत में अभी तक साग वाटिका नहीं बनाई तो फिर घर की ताज़ी सब्जियों का आनंद कैसे मिलेगा। वैसे आर्टिकल अभी ये तैयारी कर लीजिए। बरसात में सबसे बड़ी चुनौती जलभराव की होती है, इसलिए हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिसमें अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके। सामान्यतः

40% बगीचे की मिट्टी, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट और 30% रेत, कोकपीट या पत्ती खाद का मिश्रण उपयुक्त माना जाता है। ये मिश्रण पौधों की जड़ों तक पर्याप्त वायु पहुंचाता है और नमी का संतुलन भी बनाए रखता है। गमले के निचले भाग में टूटे हुए टुकड़े, कंकड़ या नारियल का रेशा रखने से जल निकास भी बेहतर होता है। इस तरह घर में हम इस बारिश में किचन गार्डन बना सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो हुई किचन गार्डन की बात, आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज बस इतना ही। कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त संजय पाठक को अनुमति। आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं, समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए NEET UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून

0: 75 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी

ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री सुनील सोनी से रमाशंकर की बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ की माटी बहुत ही उपजाऊ है। इस माटी पे हम धन धान्य जैसे कई चीजों को उपजता देखते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, साथ ही हम इसे लोकगीत का भी एक बहुत मधुर केंद्र मानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से कई ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया है जिनकी ख्याति आज छत्तीसगढ़ से बाहर भी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और जब हम हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, गीत परंपरा, त्योहारों की बात करते हैं तो एक मधुरता हमारे छत्तीसगढ़ के गीतों में मिलती है। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं गीतों की, संगीत निर्देशन की, तो हमें आदत है ऐसे गीतों को सुनने की जिससे कि मन मुग्ध हो जाए। ऐसे ही मन मुग्ध होने वाली आवाज हमारे छत्तीसगढ़ में है और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी है। सुनील सोनी जी का नाम आप सबने सुना है और इनके गीत आप गुनगुनाते भी हैं, हम भी गुनगुनाते हैं। कई त्योहारों, उत्सवों और सिनेमा तक में इनके गीतों की गूंज हमेशा सुनाई देती है। आज सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं इस आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो सबसे पहले सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप सभी ला जय जोहार, नमस्कार और स्नेही जन सभी जन ला मोर प्रणाम है
0: जी। तो सुनील जी, आज कार्यक्रम में आप आए हैं तो हम आपसे बातें करेंगे, पर उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि जिस तरह आपके मधुर गीतों को सुनने की हमारी आदत है, उस आदत को हम बरकरार रखें और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके एक मधुर गीत से करें।
1: तोरे ककनी करना फूल झूले ना,

0: ए बोरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका, हाय हाय। ए बोरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका, तोरे ककनी करना फूल झूले ना, तोरे ककनी करना फूल झूले ना, मोर पगली खुल के बिराजे तोला झुमका। ए बोरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका।
1: बहुत ही मधुर गीत और आपकी आवाज, वो आवाज जो हम कई सालों से सुन रहे हैं, अनवरत सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो सुनील सोनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले कार्यक्रम में आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ।
0: बाल मंदिर से मैं गीत गात हूँ और हिंदी फिल्म के जतका वो समय के जो बहुत प्रसिद्ध गीत रहे, किशोर साहब के, रफी साहब के, लता मंगेशकर जी के, ये सब गीत से मोर शुरुआत हुए है। और अगर विधिवत शास्त्रीय संगीत के शिक्षा ले हूं तो मैं 1984 में मोर प्रथम गुरु पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी से मैं हारमोनियम वादन और शास्त्रीय संगीत के प्रवेश का प्रथम में भातखंडे महाविद्यालय मीरज से मोर पहला परीक्षा हुई
1: जी।
0: और वहां से मोर संगीत के जो सफर है वो आज 2026 में आप सबके आशीर्वाद से, श्रोताजन, स्नेहीजन और गुरुजन और माता पिता के आशीर्वाद से आज भी अनवरत चलत है, जारी है, जिला आप मन बहुत प्यार देते हो।
1: जी जी। तो सुनील जी, हम जैसा जानते हैं कि बचपन से आपने गाने की ओर अपना रुख किया और आपकी रुचि थी गानों में, तो आप बताइए कि किन मंचों पे आपने शुरुआत की, जहां से जो आप मानते हैं कि एक मील का पत्थर रहा हो आपके बचपन में, जहां से आपको गायकी का जो एक सुरूर आपको जो लगा कि मुझे इस ओर जाना चाहिए।
0: मैं छत्तीसगढ़ी मंच में सोनहा अभियान से प्रारंभ कर रहे हूँ। दाऊ महासिंह चंद्राकर जी की एक टीम रही से सोनहा अभियान और एक टीम रही से पिनका पार से दाऊ रामचंद देशमुख जी के, और चंदेनी गोंदा में भी कुछ वर्ष मैं गुरुदेव हमारे जो खुमान साव जी जो जिला मैं गुरुदेव मानता हूँ
1: जी जी,
0: तो उनकर सानिध्य में भी बहुत सारा संगीत के बारीकी जाने ला मिलिस
1: जी जी।
0: और शास्त्रीय

0: संगीत की विधा में मैं पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन, जिनको मैं अपना पहला गुरु मानता हूं, वो मेरे प्रथम गुरु रहे हैं और वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रीय संगीत की प्रारंभ हुई। उसके बाद मैं सुगम संगीत और गीत भजन में और लगातार जो पब्लिक जेला पसंद करते वो सब गीत मन लेकर के लगातार बने रहे। हाँ, एल्बम के माध्यम से 1990 में मोर पहली एल्बम आयरिस है और वहां से मुकुंद कौशल
1: जी
0: जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के माने हुए कवि है, उनखर सानिध्य में हमें गुरुदेव ही माने रहे हूं ला, तो आज तो हमारे बीच नहीं, लेकिन बहुत अकन गीत मैं उखर मन के एल्बम में गाए हुए हूं।
1: जी तो सुनील जी, वो बचपन के कोई गीत है वो आपके जिससे आपको लगता हो कि इन गीतों को आज भी मैं गुनगुना दूं?
0: जय हो मां।

0: बमलेश्वरी मैया के एक भजन रही से जिला लगातार मंदिर में मंदिर प्रांगण में वहां के शुरुआत रही से
1: जी।
0: और आप सबके बीच मतलब बहुत सारा आशीर्वाद मिलिश
1: जी जी। तो सुनील जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की परंपराओं की, गीतों की, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में आपको अगर हम गाने को कहा जाए तो आप किस ओर सबसे ज्यादा आपका रुझान होगा?
0: मोर पसंदीदा छत्तीसगढ़ी जो बोली भाखा है ओकर सबसे प्रिय मुला कर्मा अंग बहुत भात है
1: जी।
0: और कर्मा में मोर गीत मन अपन छत्तीसगढ़ के माटी एक कार्यक्रम रही से प्रहलाद सिंह कश्यप के परपोड़ी से,
1: अच्छा
0: उनकर सानिध्य में मोर एक गीत रही से जिला मैं मंच में गाऊ और मैं अपन पिताजी संग जुड़े रहा और उस समय मैं कोरस भी करूँ गाना
1: जी।
0: और वो गीत रही से तेहा काबर मारे गोरी करे जामा लगे बहन काबर मारे तेहा

0: तोरी काबर मारे गोरी काबर मारे गोरी करे जामा लगे बान काबर मारे।
1: जी जी बहुत खूबसूरत गीत है और आपकी आवाज ने बोल को और मधुर बना दिया है।
2: बस पिताजी लगातार मेरे संगीत के लिए लगे रहे हमेशा, गुरुजनों के पास सीखो, अपने से बड़ों से संगीत की बारीकियां जानो और लगातार अभ्यास करो। तो ये मेरे गुरु और मेरे माता पिता जो लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद दिए, ये उसी का परिणाम है जो मैं आप सभी को अपने संगीत से जोड़ पा रहा हूँ, अपने स्वरों को ईमानदारी से लगा पा रहा हूँ। कहीं कुछ ऐसे प्रभु इच्छा है जो आज तक आप सबके बीच बना हुआ।
1: जी जी जी सुनील जी, तो सुनील जी कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई एक हिंदी गीत हम सुने।

0: बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, संगीत निर्देशन में भी इनका काफी योगदान है। तो सुनी सुनी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कार्यक्रम में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गायन की ओर से हम थोड़ा सा संगीत निर्देशन की तरफ चलते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत निर्देशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अभी आपकी कौन कौन से जो है कार्य किए गए हैं।
1: संगीत निर्देशन में सबसे पहला मेरा जो फिल्म था वो माया, 2005 में हम इन गीतों को रिकॉर्ड किए थे
0: जी।
1: काने मा बाली ओ गोरा गोरा गाल, गोरा गोरा गाल, ये ले तोर घर ला।

0: ये बहुत ही प्रचलित हुआ गीत और लोगों को बहुत पसंद आई। इसमें के सभी गाने ये पीरित वाली रानी पिया दे मया पानी लगे है मुरबानी तोरे चटन मा एती तेती मा बे मतलब के वो तबाराला बजा डारेना
1: जी। तो सुनील जी, जब गायन की बात होती है, जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपको कई बार अवसर मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों से आपको अवसर कब से मिलने शुरू हुए और अभी तक उन फिल्मों के बारे में आप बताएं जहां आपकी आवाज हम जिन फिल्मों में सुन सकते हैं।
0: जी, सन 2002 में मेरी पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग हुई, झन भूलो माँ बापला,
1: जी
0: सतीश जैन जी की फिल्म, और वहां से प्रारंभ करते हुए आज 2026 में 100 से अधिक फिल्में हैं जिनमें मेरा संगीत और गायन है। और एल्बम अगर हम देखें तो 5000 से ऊपर एल्बमों में मेरे गीत संगीत हैं जिनको दर्शकों का प्यार मिल रहा है, वो लगातार सुन रहे हैं अपने कार में अपने घर में
1: जी।
0: और जब मेरी छोटी छोटी बहनें जब इन गीतों को सुनती हैं सुबह सुबह एक पारिवारिक वातावरण में जब वो लोग अपने मेरे गीतों को बजाते हैं तो मुझे हार्दिक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है।
1: जी जी।
0: और छत्तीसगढ़ी में दर्शक मल्ला गोठियाना चाहो कि जैसे हमार बोली भाखा हमार खान पान हमार रहन सहन हमार पहरावा ओढ़ावा हमार रिश्ते नाता हर चीज में एक आरूपन है, एक अमृतमय समा है, तो वही अमृतमय हमार गीत संगीत में भी है।
1: जी जी।
0: और हमर कर्मा ददरिया चनैनी पंडवानी हमर लोक पुरोधा कलाकार मन के आशीर्वाद से जिखर माध्यम से मुला सीखे ला मिली गुने ला मिली सुखर मन के कला ला, तो ये सब मोर आदर्श रहे हैं और ये सब गुरुजन के ही आशीर्वाद से मोर संगीत ला मैं निभा पात हूँ।
1: तो ये बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो सुनील जी, एक फिल्म थी भूलन द मेज जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भी इस फिल्म की चर्चा रही, तो इसमें भी आपके गाए कुछ गीत हैं।
0: मेरे संगीत भी हैं इसमें, जिसमें हम लोगों ने शीर्षक गीत को कैलाश खेर जी से गवाया
1: जी।
0: ये मनोज वर्मा जी के निर्देशन में प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया
1: जी।
0: और इसमें मीर अली साहब का एक गीत है।
1: अच्छा।

0: जी जी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। तो इसके बारे में आप, जैसे हम भूलन द मेज फिल्म की बात हो रही है, तो जब इस फिल्म को वहाँ 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों के लिए जब वहाँ पे इसका नाम आया फिल्म का, छत्तीसगढ़ के लिए काफी एक गर्व का विषय था। तो इस तरह हम देखें तो आपकी जो फिल्में हैं जिसमें भूलन द मेज है, चल हट कोनो देख ली, इश्क मरीज खरे, तो ऐसी ऐसी कितनी फिल्में हैं जो अभी जिसमें आपकी आवाज हम सुन सकते हैं?
1: 100 से अधिक है
0: जी,
1: और 100 से अधिक फिल्मों में मेरा संगीत है
0: जी,
1: और यहाँ की लगभग 200 से अधिक फिल्मों में मेरा गायन है
0: जी।
1: जी अभी लेटेस्ट में मायारू भौजी, महू दिलवाला तहू दिलवाली, इसके पहले मेरी फिल्म आई थी मोर छैया भुइया पार्ट 2, मोर छैया भुइया पार्ट 3, सुकुआ
0: जी,
1: और अभी झनबुलो माँ बाप भाग 2 में काम चल रहा है
0: जी,
1: और एक हमारी जो फिल्म है जो छत्तीसगढ़ में टॉप बिजनेस की, जिसको हम कह सकते हैं ले शुरू हो गए माया के कहानी।
0: अच्छा जी जी,
1: तो उसके भी गीत संगीत को बहुत प्रतिसाद मिला
0: जी जी। तो सुनी जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ

0: किस तरह देखते हैं कि जो हमारा संगीत का और फिल्म निर्देशन और संगीत निर्देशन जो क्षेत्र है वो कितना अभी जो है अनुकूल है?
1: यहाँ समृद्ध है हमार कला
0: जी।
1: यहाँ के माटी में एक ऐसे धुन है जो बिहनिया से लेके रात्रि तक एक उत्सव के माहौल बनते हैं यहाँ के संगीत में, यहाँ के वाद्य मन में
0: जी।
1: और यहाँ के जो सरल स्वभाव है लोगन में, वो तो मैं कितो देवी देवता है हमार
0: जी।
1: जो कहिला समूचा विश्व में हमार यहाँ कस हमार जो जनता जनार्दन है ये हमारे देवी देवता के बराबर है, देवता धामी के बराबर है, जैन मन हमला सुनत है और ये आशीर्वाद सदा बने रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ला बहुत माया देते हैं
0: जी।
1: और आज विश्व में भी हमार छत्तीसगढ़ के महान गायिका तीजन बाई जी के पंडवानी आज समूचा विश्व में बगरे है और उखर मन के ख्याति जो जनता सराहना मिले है तो ये बहुत बड़े बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला ला नवा पहचान और बहुत सारा प्यार मिले।
0: तो सुनील सोनी जी, जैसे कि हमें ज्ञात है किशोर साहू राज्य अलंकरण सम्मान और फिल्म हांडा के लिए बेस्ट सॉन्ग ऑफ द छत्तीसगढ़ पुरस्कार भी आपको प्रदान किया गया था, इसके बारे में बताएं।
1: सबसे पहले तो संगीतकार के मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ जो ये फिल्म से मुला जोड़ी ओमी स्टाइलों के गीत और संगीत रही से
0: जी।
1: एक गोरीबो गोरीबो गोरीबो गोरीबो माया मुला तोर से भारी लागे लागे लागे लागे जब ले तला देखो रे मैं हो गये कोट नकस जटी जटी मैं देखो रे तोर दिखे थोथना बस तोर दिखे थोथना बस। ये गीत बहुत ही इंटरटेनिंग है और एमा बहुत सारा मंच में जब एला हमन प्रस्तुत करथन तो एमा जो आनंद मिलते और दर्शक मन के प्यार मिलते ये बहुत ही मतलब यादगार बना देते हैं
0: जी।
1: और रही सवाल के राज्य सम्मान, राज्य अलंकरण पुरस्कार, किशोर साहू सम्मान जो मुला प्राप्त हुई उपराष्ट्रपति से और यहाँ के हमर मुख्यमंत्री साहब के हाथ से, तो ये जो ये मुरली बहुत यादगार पल जेल में भूल नहीं सको और आज मैं सब हमर गुरुजन माता पिता और स्नेही जन श्रोता जन मन के हृदय से आभारी हूँ कि ये जो आशीर्वाद है ये मोर कला पे बने रहे ताकि मैं अंतिम सांस तक संगीत ला निभात रहूं और पूरा हमर जो पारिवारिक जो हमारे रिश्ता नाता है छत्तीसगढ़ के जनता मन से वो सदा बने रहे, उखर मन में नवा नवा गीत संगीत सृजन करके लात रहा।
0: जी जी सुनील जी, जब हम कभी हमारे छत्तीसगढ़ की जो पर्व त्योहारों का समय आता है तो उस समय भी आपके गीतों की धूम होती है। कभी हम सुनते हैं जैसे चलो चलो गिरोदपुरी धाम
1: जी।
0: और आवाज जो है इन गीतों में भी सुनने को मिलता है, तो हम चाहेंगे आपसे कि कुछ इस तरह के गीत हमें।
1: अभी मोर हाल ही में पिछले वर्ष एक फिल्म आ रही से जेमा मोर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के एक पंथी जिला बहुत मया दुलार मिलिस
0: जी।
1: सत

0: जी, तो सुनील जी, हमारे छत्तीसगढ़ की जो माटी है इसको जीवित रखने के लिए गीत संगीत कितना भागीदार होता है?
1: बिना साहित्य के संगीत अधूरा है
0: जी।
1: तो यहाँ के जो साहित्यकार मन है उखर मन के गीत जो हमारे माटी से जुड़े हुए है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के महान कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी
0: जी
1: और

0: जी, रामेश्वर वैष्णव जी, बद्री विशाल जी और छत्तीसगढ़ के पुरोधा खुमार लाल साव जी,
1: जी
0: दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, दाऊ रामचंद देशमुख जी, और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के सब पुरोधा कलाकार मन है, खर मन के जो अपन अभ्यास रही से, उखर मन के मेहनत रही से, ओ मल्ला हमन नवा पीढ़ी ला बिल्कुल जरूरी है कि हमारे नवा पीढ़ी मनोला सुने और अपन जीवन में उखर मन के प्रेरणा मान के अपन संगीत के अभ्यास में उमल्ला लगातार गुने और उखर मन के कार्यशैली भी पकड़े, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से हमारे नवा पीढ़ी जुड़े। जैसे मोर एक गीत है जिला मैं प्रेमचंद्राकर जी के माध्यम से फिल्म में गा रहे हूँ, जिला अपन बहुत प्यार दे,

0: गीतों में एक ऐसी मिठास है जो सीधा कानों को भेदते हुए हृदय तक प्रवेश करती है। तो सुनिए जी, हर किसी के जीवन में कोई एक ऐसा क्षण होता है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो पल वो क्षण आपके जीवन में कोई ऐसा आया हो।
1: जी, 2004 में एक फिल्म आई थी भकला
0: जी,
1: जिनके गीतों को संगीत दिया था कल्याण सेन जी ने
0: जी,
1: और उसके जो निर्देशक उसके प्रोड्यूसर रायसिंह ढिकोला जी,
0: जी
1: जिसको बाद में रिलीज किया दिनेश पटेल जी ने, उस फिल्म में मैं अनुराधा पौडवाल जी के साथ मदन शर्मा जी का एक गीत गाया था जिसको बहुत प्यार मिला, और उस फिल्म में लता मंगेशकर जी जो हमारे महान गायिका हैं, जिनको मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, माँ सरस्वती कहता हूँ, और तब से लेकर आज तक मेरा कोई डीपी भी चेंज नहीं हुआ
0: जी, जी।
1: मेरे व्हाट्सएप का डीपी भी आज वही है, माँ के साथ मेरा जो फोटो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, वो पल मैं भूल नहीं पाऊंगा जब मैं स्वरलता स्टूडियो में हमारे विश्व की महान गायिका लता मंगेशकर जी का मुझे आशीर्वाद मिला, और पूरा दिन भर हमने उनके साथ गुजारा और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं घर में
0: जी।
1: लेकिन ये पल मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा, ये मेरे लिए धन्य हो गए, बहुत कीमती हैं
0: जी।
1: आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो मुझे बहुत याद आते हैं, और मैं अपने जीवन में उनको बहुत गुरु मानता हूँ, भगवान की तरह पूजता हूँ
0: जी। बहुत अच्छी बात है, और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आपने किया और लता मंगेशकर जी से आपकी मुलाकात हुई, ये वाकई में एक सौभाग्य की बात है
1: जी
0: जी। तो सुनील सोनी जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से अपने अनुभव अपनी बातें साझा की, और बेशक ही हमारे श्रोता गीतों को सुनते रहे हैं सुनते रहेंगे, और आपके बारे में जो जानकारी आज उन्हें मालूम हुई है, आपके अनुभव जो उन्हें पता चल रहे हैं, ये बहुत खास रहेंगे। सुनील जी, आप आज आकाशवाणी आए और हमसे रूबरू हुए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी से जाते जाते मैं दो पंक्ति हमारे श्रोताजन को कहना चाहूंगा।

0: और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया रे।
1: जय छत्तीसगढ़।
2: श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

बातचीत। मीडिया व्यूअर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नवा बिहान। इसमें आइए सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर महिला और बाल विकास विभाग रायपुर की सहायक संचालक श्रीमती ममता भगत से बीरभान साहू के गोठपात का दूसरा भाग।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री सुनील सोनी से रमाशंकर की बात।

बेटी बिना ये मन है व्याकुल, बेटी हाबे तब हे कल है, बेटी है तब दुनिया के रंगत, बिन बेटी जीवन निष्फल है। बेटी आँखी के ज्योति है, सपना के सुर होती है, बेटी दुर्गा बेटी शक्ति, बिन बेटी जिंदगी करिया कोठी है, बिन बेटी जिंदगी करिया कोठी है। यही भाव संग नव बिहान के आज के अंक में जम्मो श्रोता संगवारी मन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी हो, मनखे मन के बेटा पाए के लालसा और खतरनाक ढंग ले घटत स्त्री पुरुष अनुपात आज पूरा देश के समाजशास्त्री, जनसंख्या विशेषज्ञ, विकास की योजना बनैया योजनाकार और जम्मो समाज के लिए चिंता करैया सियान मल्ला चिंता में डार दे। बेटी मल्ला कोख में मार देना और कैसनो करके दुनिया में आ गए तो जन्म के बाद उकर हत्या, ये स्थिति ला अब बहुते विकट बनावत है। यूनिसेफ के अनुसार 10% महिला मन विश्व जनसंख्या ले लुप्त हो गए है, जेकर पाछू भ्रूण हत्या, गर्भपात जैसे कुकृत्य और रूढ़िवाद पूर्ण और नान्हे मानसिकता है। हमरो देश में ये समस्या सुरसकस मुहला खोले ठाड़े आवे। जे नारी के सेवा त्याग और ममता दुलार के छैया माँ पूरा परिवार फूलते फलते और विकास करते, उखरे आयले घर भर में परिवार में मायूसी और दुख के वातावरण छा जाना बहुते दुखद और आश्चर्यजनक लागते। फिर ये सत्यला स्वीकार करेला पड़ी कि आज भी समाज बेटी मल्ला वो दर्जा नहीं दे पाए जेन बेटा मल्ला मिले है। हमारे रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था तको बेटा और बेटी में भेदला बढ़ाते। कतको महतारी बाप समझते कि बेटा जीवन भर साथ देही, उकर बुढ़ापा के सहारा बनी, बेटी तो पराया रहना है। ये छोटे विचार बेटी मल्ला और गहरा अंधेरा में ढकेल देवा थे। यही बात हमर सरकार मल्ला सोचे पर मजबूर करते कि कैसे बेटी मन के जीवन ला सुरक्षित कर समाज में बराबर के अधिकार दिलाया जाए और एकरे कारण समय समय में बेटी मन के कल्याण पर योजना बनाएगी, पर ये योजना बेटी मन के स्थिति में आशातीत सुधार करे में असफल रही। वर्तमान सरकार है ये बात ल बहुत ही गंभीरता ले समझीन और हमर संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है 22 जनवरी 2015 ले एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करीन, जेखर ले बेटी के गर्भ में आयले ये दुनिया में अस्तित्व में आयले जीवन पर्यंत सुरक्षा प्रदान कर सके और बेटी के सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और मूल अधिकार ला बिना भेदभाव के सुरक्षित किए जा सके। अब ये योजना ला नाम देगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेखर उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या ला रोकना, बेहतर पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और बालिका अधिकार ला सुरक्षित करना है। नव अभियान के पिछले अंक में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के सहायक संचालक श्रीमती ममता भगत जी ले ये योजना के कुछ उद्देश्य ल जानें। आज के अंक में ये योजना के संबंध में कुछ और बात जाने पर स्टूडियो में आमंत्रित है एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्रीमती ममता भगत जी। ममता जी, आपके कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। अब हम थोड़ा अब आगे बढ़थन कि बेटी मन के जन्म के बाद उकर पोषण के व्यवस्था तो सरकार कर दी, और कथे ना कि जब तक शिक्षित नहीं हुई बेटी तब तक उकर शोषण के जो आशंका हमेशा बने रही। तो समाज में एक बात प्रचलित है कि बेटी पढ़ी विकास की रद्दा गढ़ी, तो बेटी मन के

0: शिक्षा के लिए का का योजना है, का का व्यवस्था करे गए है, किस प्रकार बेटी मतलब सुविधा दे जाते ये योजना के तहत?
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऐसे है कि उमें सबो जागरूक हो और नोनी मन के साथ साथ महतारी और आम जनता भी जागरूक हो, जेकर सती प्रचार प्रसार किए जाते और इमर हमें हमर मैदानी अमला और हब के मुख्य योगदान है। विभाग से सभी जिला पर एक कार्य योजना जारी होते जिमें हर माह कौन कौन ला गतिविधि करना है वो सब उमें बताए जाते कि आप वो गतिविधि में अपन नवाचार भी कर सकत हो, जेकर जे समस्या वहाँ है कि कोई बालिका काबर स्कूल नहीं जाते, वो काबर पढ़े बर नहीं जाते, वो काबर शिक्षा से वंचित हो गए है। एमें अभी जिसे के आप सब जाना तो स्कूल सब लेकर मन के चालू हो गए है, तो हमार कार्य योजना में है कि जुलाई और जून जो है पंजीयन माह के रूप में चलाए जाए।
0: अच्छा।
1: और वृहद स्तर पर सब बालिका मल्ला स्कूल जाए पर प्रोत्साहित करे जाए, वो मल्ला कॉपी पेन किताब आदि स्टेशनरी भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो मल्ला कोई कमी ना हो और वो स्कूल जाए पर शुरू कर दे। नोनी मल्ला अधिक से अधिक दाखिला ले सके एकर कार्यवाही की सुनिश्चित किए जाते, पढ़ाई बीच में झन छूटे एकर बर समय समय पर स्कूलों में जाकर उमल्ला प्रोत्साहित करे जाते, उमल्ला कैरियर गाइडेंस दिए जाते कि आप मल्ला पढ़ के आगे भविष्य में का बनना है का करना है उमल्ला बताए जाते। एकर अलावा सुकन्या समृद्धि योजना और नोनी सुरक्षा योजना में एक प्रावधान रखे गए है कि एमें जे राशि जमा होते वो तब ओला मिली 18 साल बाद में कि जब वो 12वीं के परीक्षा 12वीं के कक्षा ला उत्तीर्ण करी, तो ये भी एक कारण है कि नोनी मनहा प्रोत्साहित हो और मनला पढ़ाई हो।
0: हमार जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज शुरू से रहे है और सामान्य रूप से देखे बार मिलते कि आर्थिक व्यवस्था पुरुष के हाथ पे देखे जाते हैं और महिला मन सामान्य रूप से दो दो पैसे पर लाचार दिखते हैं, तो का ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी मल्ला स्वावलंबन बनाए पर आर्थिक रूप से मजबूत बनाए पर ऐसे कोई सहायता या कोई योजना एक अंतर्गत हावे?
1: बिल्कुल है, जैसे कि आप मल्ला सब मल्ला पता है कि हमार विभाग के सबसे महती योजना है महतारी वंदन योजना।
0: जी।
1: इमें सब महतारी मन ला 1,000 रुपया मिलते।
0: जी जी।
1: वो महतारी मन ता आर्थिक रूप से भले थोड़ा अमाउंट है लेकिन उमन ला बहुत बर है क्योंकि हमन हमार पास उमन के कथन आते कि ये 1,000 रुपया हमन जिंदगी ला बदल दीस।
0: जी।
1: कुछ महतारी मन हा अपन बेटी कर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोले है 100 रुपये 200 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में।
0: जी।
1: अभिभावक अपन एक छोटा राशि बैंक खाते में जमा करते हैं, जबकि नोनी सुरक्षा योजना में सरकार है गरीबी रेखा से नीचे जेकर पास कोई साधन नहीं है आय के उमन बर उमन कर नोनी बर पैसा जमा करते हैं, लेकिन महतारी वंदन योजना से जे महिला मल्ला मिला थे उमन सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोले है और उमन बड़ा खुश है कि वो अपन नोनी मल्ले कुछ कर सकते हैं ओकर बर आर्थिक मजबूती बर कुछ काम कर सकते हैं। एकर अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में गर्भवती महिला जे है उकर संस्थागत प्रसव ला बढ़ावा दे जाते ताकि जो नोनी मन हा स्वस्थ और सुरक्षित पैदा हो, और किशोर वय नोनी है उमला आयरन और फॉलिक एसिड के गोली स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दिए जाते
0: हैं। यानी कि स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज
1: बिल्कुल
0: की व्यवस्था ये योजना में आवे है ना, तो हम आगे ये जानना चाहबो कि ये सब के बावजूद जब बेटी घर से निकलते तो आज भी हमारे समाज की जो दृष्टिकोण है समाज के एक ऐसे वर्ग है जिन बेटी ला या जिन नारी ला उपभोग के वस्तु समझते और बहुत प्रकार के चाहे वो लैंगिक उत्पीड़न हो चाहे संस्थागत उत्पीड़न हो चाहे किसी भी प्रकार के भेदभाव, तो उकर सुरक्षा पर काका व्यवस्था करेगी?
1: हमारे विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रचार प्रसार के कार्य किए जाते, उसमें ये भी विषय शामिल है कि भारतीय संविधान में बेटी मन बर जे बराबरी के अधिकार है समानता के अधिकार है शिक्षा के अधिकार है और नोनी मन बर जे भी अधिकार भारतीय संविधान में प्रावधान है ओकर 100% उमन ला लाभ मिल सके, आम जनता ला ओला जागरूक कर सके, काबर की जागरूक नहीं होए बर भी उमन ये सब गलती कर देते कि हमला तो नहीं पता है हमला ऐसे भी करना चाहिए, तो भारतीय संविधान में जे अधिकार है नोनी मन के कि ओकर शिक्षा ला सुनिश्चित हो सके पोषण हो ओकर शोषण ना हो ओकर बर भी लोगों मन जागरूक करके प्रचार प्रसार के कार्य किया जाए।

0: थे। बाल विवाह जे सबसे बड़ी कुप्रथा है हमर सबो जिला में, कहीं ना कहीं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, बाल विवाह विद्यमान है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाए गए है जे में हमर राज्य के बालोद जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किए गए है। ये हमर विभाग के सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बालिका के शोषण ना हो, ओकर अधिकार सुरक्षित हो, एकर बार मानव तस्करी के जो क्षेत्र प्रभावित है ओकर बार पुलिस विभाग के सहयोग से अभियान भी चलाए जाते, स्कूलों में विभिन्न कार्यालयों में इला जागरूक करे बर कि मानव तस्करी के चंगुल में नहीं फंसना है, उमल्ला इस जानकारी से अवगत कराया जाते।
1: बहुत आप विस्तार ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आप बताओ। और आखिर में हम आपसे ये जानना चाहबो कि ये योजना ला आए 2 साल से ज्यादा समय हो गए, तो एकर कतिक लाभ उठा पात है मर बेटी मन हा या उकर परिवार के महिला मन हा, कतका सफलता मिला थे?
0: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अवश्य सफल हुआ थे, ये एक निरंतर चले वाले प्रक्रिया है
1: जी।
0: बेटी मन के सुरक्षा और उकर शिक्षा और उकर स्वच्छता पोषण सुनिश्चित करे बर पिछले साल हमारे बाल लिंगानुपात 959 होते, जो कि इस बार प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करके 967 हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही उपलब्धि है। और निरंतर हम प्रयास में हैं कि यह 1000 का आंकड़ा भी छू सके राज्य स्तर पर। कुछ जिलों में 1000 से ज़्यादा है, 1000 पुरुषों के प्रति बालिका जन पर लिंगानुपात ज़्यादा है, किंतु हम इसे राज्य स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि यह बढ़ोतरी हो। समाज में नोनी मल्ला जन्म के जन्मला सोच लोगों के सोच में बदले बर और उकर स्कूल छोड़े के दर ला कमी करे बर भी लोगों मल्ला जागरूक करे थे, और एकर फायदा निरंतर हमला दिखा थे
1: जी जी। और आखिर में जावत जावत आप का संदेश देना चाहो?
0: मैं हाँ यही कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं भी महिला हूँ और मोर माँ बाप मल्ला जी से पढ़ाई से लिखाई से और मैं समाज के साथ कदम मिलात हूँ, तो नोनी मल्ला उकर पोषण ला देखू और उमर ला पढ़ाहू तो वो भी समाज और ला गढ़ी और समाज ला गढ़ी तो राज्य और देश भी आगे बढ़ी। काकि बेटी हमर मान है, हमर अभिमान है और भविष्य निर्माण करता है, तो बेटी ला बचाओ और बेटी ला पढ़ाओ।
1: ममता जी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में अतिक विस्तार ले जानकारी देव, उम्मीद है हमर श्रोता मन ला बहुत उपयोगी सिद्ध हुई और समाज में जागरूकता लाए बर काफी कारगर रही। आप कार्यक्रम में अपन कीमती बेरा निकाल के आयो, एकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, ये रहीन श्रीमती ममता भगत जी, उप संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर। और संगी हो, आखिर माँ कवि विजेंद्र कुमार वर्मा जी के एक रचना सुरता आवा थे, भाग जनी घर बेटी होते नहीं लबारी सच्चा गोठ, सुन तो वो नोनी के दाई बात कहत हूँ अब मैं पोठ, अढ़ा कही थे लोगन मोला बेटा के जी राह अगोर, कुल के कर ही नाव तोरिए घर ला कर ही बिकट अंजूर, कही था मैं अंधरागे मनखे कही था मैं अंधरागे मनखे, बेटी बेटा ला झनछाट एक पेड़ के दोनों डारा, दुआ भेदमा तय झन बाँट दुआ भेदमा तय झन बाँट, सोचो बेटी नहीं हो ही ते ढोए कौन कुल के मर जाद, अचरा माँ के सुनना होही बोझा अपने सिर मलाद, बोझा अपने सिर मलाद, आवो अब इतिहास रचाओ जी गढ़ाओ सुघर जिंदगी के राह, दुनिया के बेड़ी ला तोड़ाओ अब तो ऐसन चाह, पढ़ा लिखा के बेटी ला तुम मन सुघर देवाओ सम्मान, जानाओ अब बेटी ला बेटा देवाओ सपना ला उखर उड़ान, देवाओ सपना ला उखर उड़ान। जय जोहार।

व्यापक रायपुर के सहायक संचालक श्रीमती ममता भगत से बीरभान साहू के गोट बात का दूसरा भाग। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म अभिमान का ही गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत सचिन देव बर्मन का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अभी आपने सुना फिल्म आखिरी खत का ये गीत। इसे लिखा था कैफी आजमी ने, संगीत से संवारा था खयाम ने, आवाज लता मंगेशकर की थी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे।

आइए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का है, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है बहारों के सपने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800

0: 1-1-7-8-0-0 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1-9-2-2 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आइए अब सुनते हैं फिल्म रजिया सुल्तान का एक गीत। आवाज लता विसर की है, बोल जानिसार अख्तर के और संगीत खयाम का।

रज़िया सुल्तान के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले इनकी आवाज में सुनते हैं महेंद्र दहेलवी की रचना।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम। आइए अब सुनते हैं इनकी आवाज में बीके पुरी का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत की कलाकार हैं मीना पुरुषोत्तम। आइए अब इनके स्वर में सुनते हैं मीराबाई की रचना।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी मीनू पुरुषोत्तम। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव।

और अब पेश है आपके आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा सरगुजा और रायपुर संभाग के नगरीय निकायों के लिए 200 से अधिक एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की सूची जारी की गई है। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठक में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। सड़क, पानी, सफाई जैसी नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। एल्डरमैन जनता और निकाय के बीच सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLDT लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD बसों वाली उपकरणों लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण

और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लकी ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जांच जरूर कर लें। आयोग ने बताया कि निजी विश्वविद्यालय अपने कैंपस के बाहर अन्य संस्थानों को संबद्धता नहीं दे सकते। पीएचडी में प्रवेश लेने वाले छात्र यूजीसी के नियमों और शोध निर्देशक की योग्यता की भी पुष्टि करें। आयोग ने छात्रों से अपील की है कि भ्रामक विज्ञापनों से बचें और प्रवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। राज्य शासन ने डोंगरगांव नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार डोंगरगांव नगर पंचायत की सीमाएं ही डोंगरगांव नगर पालिका की सीमाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि नगर पालिका बनने के बाद डोंगरगांव में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास को गति मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन आज रात किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, अगला कार्यक्रम कुछ पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश की आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों की दशा के साथ ही शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अनेक पहल कर रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हाल ही में संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर अनेक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इनमें से एक दिशा निर्देश यह है कि अगले साल से स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक गणवेश भी 1 अप्रैल को ही दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। श्रोताओं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ

0: हैं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव। मंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मंत्री जी, जो नया शिक्षा सत्र है वो 16 जून से शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ें, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, आपके विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: अभी हम लोगों ने कहा है कि जो बच्चा 16 जून से हम जो प्रारंभ किए हैं और जो कंटिन्यू अब्सेंट हैं, जो बच्चे अनुपस्थित हैं, प्रधान पाठक या संस्था प्रमुख उसमें विशेष फोकस करें। 30 जून तक देखें कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा अब्सेंट है, कौन बच्चा जो बिल्कुल नहीं आया हो, उन बच्चे को मार करें और हर हाल में हमको 30 जुलाई के पहले उस सारे बच्चों का फिर से एडमिशन कराना है। उसके लिए कल हम बैठक किए और बैठक में सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उन स्कूलों का आप चयन करें, चिन्हित करें जहाँ ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं, कौन बच्चे जो लगातार अनुपस्थित हैं उनको चिन्हित करें और जाके वहाँ बात करें, उनके पालकों से बात करें, बच्चों से बात करें और वापस उनको स्कूल की ओर लाए, ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं।
0: मंत्री जी, आपने जिला शिक्षा अधिकारियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली है और उसमें काफ़ी अहम दिशा निर्देश भी आपने उनको दिए हैं कि अगला शिक्षा सत्र जो है 2027-28 वाला, वो 1 अप्रैल से शुरू हो, और काफ़ी इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
1: देखिए, अभी तक हम लोग देखते थे कि सारे जो निजी विद्यालय हैं वो 1 अप्रैल से नया सेशन चालू करते हैं और हम लोग का भी पिछले बार का जो एग्ज़ाम है उसी पैटर्न में हुआ था, उसी तैयारी के आधार पे हम लोगों ने फरवरी में एग्ज़ाम लिया था। और चूंकि एक 10वीं बोर्ड का एक पेपर लीक होने के कारण फिर से एग्ज़ाम लेना पड़ा, जिसके कारण हम थोड़ा पीछे हुए
0: जी।
1: हमारा टारगेट ये है 15 जून से स्कूल खुले। क्या होता है, 15 जून को जब स्कूल खुलता है
0: जी,
1: तो प्रवेश आते आते वो जुलाई चल देता है
0: जी।
1: और वो वास्तव में जो पढ़ाई रनअप होने की स्थिति में 15 जुलाई तक आ जाता है, तो 1-2 महीना हम ऐसे पीछे हो गए जाते हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप तैयार होगा, जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज़ हैं, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे
0: जी।
1: तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद
0: जी,
1: वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा
0: जी।
1: 16 जून को जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा
0: जी।
1: तो जो 1 अप्रैल का हमको 15 दिन पूरी पढ़ाई के लिए मिलेगा और 16 जून से जो हम 15 जुलाई तक जो एडमिशन और जो काम में जो व्यस्त रहते हैं
0: जी,
1: वो पूरा 1 महीना पूरी तरह पढ़ाई में रहेगा
0: जी।
1: तो इस साल हम चूंकि अभी सेशन प्रारंभ हुआ है
0: जी,
1: हमने बैठक में कहा है कि कोर्स, सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, जनवरी में रिवीजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है
0: जी।
1: और फरवरी में एग्जाम होगा तो हम हर हाल में 15 मार्च तक रिजल्ट घोषित कर देंगे
0: जी।
1: अभी से सारे जिलों को कहा गया है कि आप अनिवार्य परीक्षा समिति बनाए, ताकि परीक्षा समिति बनने से क्वेश्चन पेपर संधारण, उसके छपाई और उसके संचालन में दिक्कत ना हो
0: जी।
1: दूसरा, जब परीक्षा समिति रहती है तो क्वेश्चन पेपर भी बनता है, मार्कशीट भी इजी बन जाता है, नहीं तो ज्यादातर देखा जाता है कि वो अंकों को ही उपलब्ध नहीं करा पाते, जैसे मार्कशीट मिलने में देरी होती है। तो ये सारी तैयारी हम अभी से करेंगे
0: जी।
1: तो हम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे, जनवरी में उनको रिवीजन करा पाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हम थोड़ा लेट चलते हैं और ऐसा होता है कि फरवरी तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमको अतिरिक्त क्लासेस लेनी पड़ती है
0: जी।
1: जब अतिरिक्त क्लासेस लेने की स्थिति में शिक्षक भी पूरी मन से तैयार नहीं हो पाता और बच्चे को भी बोझिल हो जाता है
0: जी।
1: तो हम लोगों ने तय किया है कि हर हाल में दिसंबर तक करना, जनवरी में रिवीजन करना, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जब जनवरी में हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, फरवरी में एग्जाम करेंगे, मार्च में रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से आसानी से हम स्कूल प्रारंभ कर लेंगे।
0: मंत्री जी, हमें यह भी पता चला है कि आपने बैठक में जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए और शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए एक मानक भी कुछ बताए हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, इसके बारे में बताएं कि वो मानक क्या है।

0: देखिए मैं हमारा दुर्भाग्य है, जब 2009 में सरकार थी उन्होंने शिक्षा अधिकार कानून लाया, और शिक्षा अधिकार कानून तो अच्छी बात है लेकिन उन्होंने कई ऐसे चीज़ों को जोड़ दिया जो बच्चों के शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के बजाय
1: जी
0: उसमें बच्चों की शिक्षा स्तर गिरते गया
1: जी।
0: जैसे एग्जाम नहीं लेना, बिना पढ़े पास करना, उससे जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका टैलेंट लगभग खत्म होने जा रहा था
1: जी।
0: तो वो हम लोगों ने ऐसा किया कि आज ये स्थिति है, शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद मिडिल स्कूल में जाएंगे बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ो तो एक मतलब
1: पढ़
0: नहीं पाता, हाई स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे को आप बोलोगे नवमी के बच्चे को इंग्लिश में कुछ लिखे तो लिख नहीं पाता
1: जी।
0: तो हमने बैठक में कहा है, पहले भी इसके पहले पिछले सत्र हम बैठक में बोले थे कि हमको हर हाल में जो मिडिल स्कूल तक के पढ़ने वाले बच्चे को उनको 20 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए, 12 खाड़ी आना चाहिए, उल्टा गिनती आना चाहिए, और धारा प्रवाह हिंदी को पढ़ना आना चाहिए 5वीं तक के बच्चे को
1: जी।
0: और मिडिल स्कूल के बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए, और धारा प्रवाह इंग्लिश के सेंटेंस को उसको पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए हमने टास्क दिया है हिंदी पढ़ने वाले बच्चे को हर हाल में सितंबर तक धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने को आना चाहिए, और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को फरवरी 2027 तक उन बच्चों को इंग्लिश धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आना चाहिए। और हमने कहा है कि प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो बेस है
1: जी।
0: अभी शिक्षा का अधिकार कानून आने से हमारा बेस लगभग उजड़ गया था
1: जी।
0: वापस हमको उसको मजबूत करना है, जब बच्चा बेस मजबूत रहेगा तो आगे शिक्षा उसको बहुत आसानी होगी, ऐसा हमने टास्क दिया हुआ है।
1: एक बात और है मंत्री जी, कि ये देखने में आता है कि ठीक है सुविधाएं हम देते हैं, हम एक ढांचा खड़ा कर देते हैं, लेकिन शिक्षक ही गैर हाजिर होते हैं स्कूल से। तो अब आपने ये भी एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश आप कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, ऑनलाइन होगी, VSK ऐप के माध्यम से होगी, और यदि अवकाश भी लेना होगा शिक्षकों को तो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बारे में बताएं कि किस तरह से कसावट लाई जा रही है।
0: देखिए हमने तो चूंकि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देसाय जी का सुशासन है, यहाँ पे चतुर्थ कर्मचारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी से लेके मुख्य सचिव तक भी अपना अटेंडेंस भरते हैं
1: जी,
0: ऑनलाइन वो अपना अटेंडेंस करते हैं, बायोमेट्रिक से करते हैं। तो हमारा शिक्षक तो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षा का उजियारा समाज को दे रहा है
1: जी।
0: तो उनको भी जब शासन सुशासन चला रही है तो उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए
1: जी।
0: तो हमने कहा है कि ऑफिशियल जितने क्लर्कल स्टाफ हैं
1: जी,
0: जो बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, जेडी ऑफिस, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे
1: जी।
0: और जितने फील्ड के जो हमारे शिक्षक हैं
1: जी,
0: वो VSK ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस देंगे
1: जी।
0: उससे VSK ऐप हम जानते हैं कि जो सलाह जहाँ वो पढ़ाते हैं
1: जी,
0: उस परिसर के 50 मीटर के अवधि पे ही वो काम करेगा
1: जी।
0: तो कब करेगा, मान लो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है लेकिन आप उसमें अपलोड करोगे
1: जी,
0: हम करेंगे
1: जी,
0: तो वो समय भी आपको दिखाएगा कि आपने कितने बजे किया।
1: अच्छा,
0: तो उसमें जो कई लोग टाइम बे टाइम जाते हैं, नहीं जाते हैं, एब्सेंट मार देते हैं
1: जी,
0: उसमें कसावट आएगा
1: जी।
0: दूसरी बात ये है कि उपस्थिति 100% रहेगी। ज्यादातर जगह शिकायत ये आती है कि शिक्षक किसी गांव का है वो वहाँ पढ़ाने नहीं जाता
1: जी,
0: वो कहीं दूसरी जगह अटैच रहता है
1: जी।
0: अभी हमको ध्यान में आता है कि एवरेज हर जिलों में
1: जी,
0: जितने पद सेटअप स्वीकृत हैं उससे डबल लोग वहाँ कार्यरत हैं।
1: अच्छा,
0: ये कौन लोग हैं? ये वही शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते
1: जी,
0: और ऑफिसों में अटैच हो जाते हैं, और बच्चों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो शिक्षकों का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो हमने अनिवार्य लागू किया है जो जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में पढ़ाएगा
1: जी।
0: और अटैच के लिए हमने कल बहुत कड़ाई कहा है, चूंकि अब तो VSK ऐप में वो दिखता है कौन कहाँ से ये कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स दिखता है
1: जी।
0: तो कल सारे डीओस को अनिवार्य कहा है, और पहला और कल आखिरी वार्निंग दी गई है, इसके बाद अगर ये शिकायत आई
1: जी,
0: तो संबंधित डीओस के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
1: एक बात और है मंत्री जी, कि स्कूल शिक्षा विभाग ने

0: हाल ही में बच्चों में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति की समझ को विकसित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अलग अलग तरह के जो मंत्रों का स्कूलों में वाचन किया जाएगा, इसके बारे में एक शेड्यूल भी बनाया गया है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
1: देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पहले हम लोग राष्ट्रगान गाते थे, फिर राष्ट्रगीत होता था। राष्ट्रगीत में जानबूझ के पिछली गवर्नमेंट तुष्टिकरण के लिए देश के सामने वंदे मातरम पूरा लाया नहीं
0: जी।
1: अभी माननीय हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो सारे स्कूलों में उसका गायन होना चाहिए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धा विष्णु देसाई जी के मार्गदर्शन में सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और इनके साथ हम तीन मंत्र दिए हैं। चूँकि सब स्कूलों हम जाते हैं, देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले दीप जलाते हैं, तो दीप मंत्र हम कर रहे हैं
0: जी।
1: सरस्वती मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, ये तो बिना बोले भी स्कूलों में किया जाता है
0: जी।
1: लेकिन उसको हमने कंपलसरी सब लिखा है
0: जी।
1: उसमें दीप ज्योति परम ज्योति, बच्चों के अंदर आज जो तेजोमय होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी कमी दिखती है
0: जी।
1: मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मंत्र के प्रभाव से उनका तेजमय बढ़ेगा
0: जी।
1: सरस्वती वंदना करने से एक अच्छा भाव आएगा
0: जी।
1: क्योंकि हम शिक्षक मंदिर में जा रहे हैं और शिक्षा की देवी साक्षात सरस्वती है
0: जी।
1: तो वो बच्चों में पढ़ाई के प्रति, पुस्तक के प्रति एक भाव अच्छा रहेगा। गुरु मंत्र बोल रहे हैं, गुरु मंत्र में जो गुरु पढ़ाने जा रहे हैं, पहले एक समय था, आप सब ध्यान देंगे कि कोई गुरु जी बस से उतर के मेन रोड से जैसे वो गांव की ओर आता था
0: जी।
1: तो राहगीर जो जितने लोग राहगीर चलने वाले थे, रहते थे, चाहे खेतिहर, मजदूर, किसान, जिसके बच्चे नहीं पढ़ते थे
0: जी।
1: वो भी गुरु जी देख के उसको नमन करता था, प्रणाम करता था, नमस्कार करता था, एक भाव था
0: जी।
1: आज वो भाव में कहीं कहीं कमी आ रही है
0: जी।
1: ये गुरु मंत्र प्रतिदिन बच्चे हाथ जोड़ के जब बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से गुरु शिष्य का जो संबंध फिर से प्रगाढ़ होगा, फिर से एक भाव आएगा। आज देखिए, जब बच्चा हाथ जोड़ के गुरु मंत्र बोलेगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे के मन में तो अच्छा आएगा ही, उसको देख के संबंधित शिक्षकों के मन में भी एक बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज देखते हैं कई जगह, आप देखें कोई अश्लील कोई व्यवहार करते हुए एक न्यूज चैनल ने चलाया, कई जगह शिकायत आती है शिक्षक शराब के पहुंच जाते हैं, कई जगह शिक्षकों को हरकत अमानवीय रहता है
0: जी।
1: तो ये गुरु मंत्र बोलने से, सरस्वती मंत्र बोलने से, दीप मंत्र बोलने से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमने ऐसा किया है कि इसको प्रार्थना के साथ करना
0: जी।
1: उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमने पूरे 12 महीने के 24 महापुरुषों का हमने चिन्हित किया है। संत रविदास जी हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, मन चंगा कठौती गंगा की बात उन्होंने कही। संत रविदास जी की जीवनी हम पढ़ाएंगे। गुरु घासीदास जी की जयंती है, गहिरा गुरु हैं हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। खूबचंद बघेल जी हैं, बाबू कल्याण सिंह हैं जो जिन्होंने अपना सब कुछ दान दिया। भक्त माता राजीम है जिसको अनुयायी हमारे साहू समाज के लोग मानते हैं। ऐसे महापुरुष जो अवतरण हुए हैं उनकी जयंती हर महीने कोई ना कोई रहती है। तो उनका हर महीने दो महापुरुषों का बच्चे वाचन करेंगे
0: जी।
1: महापुरुषों का जीवन जैसे बच्चा बचपन से किसी इंस्पेक्टर को देखता है
0: जी।
1: तो उसके मन में आता है कि मैं आगे वाले समय में पुलिस बनूंगा, शिक्षक को देख के वो पुलिस बना। तो ऐसे ही हमारे देश के अलग अलग महापुरुष हैं
0: जी।
1: उनके जीवन को जब देखेंगे तो जीवन को देख के वो कुछ प्रेरणा लेंगे
0: जी।
1: ऐसा हमने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ महापुरुषों का जीवन भी वाचन होगा। सांध्य बेला में जब छुट्टी का समय होता है तो हमने सारे बच्चों का है राजगीत, चूंकि छत्तीसगढ़ महतारी है, धरती माता है, उनके गीत राजगीत हो, साथ ही साथ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भी कुछ लोग जो विरोध करें, मैं करना चाहता हूँ कि अमेरिका के हम्बर्ड जो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है गायत्री मंत्र, और उन्होंने उस

0: चुका है सांध बेला में, इसको अगर करा जाए, जो हम हिंदू संस्कृति में बोलते हैं नाद ब्रह्म जो बोलते हैं, जो संध्या कालीन जो समय होता है जब पूरी तरह धूप नहीं रहती, पूरी तरह संधेरा नहीं रहता, सांध अवसर में जो अगर गायत्री मंत्र का वाचन करे तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव यूनिवर्स में पड़ेगा
1: जी।
0: उस नाते जब मैं बोल रहा हूँ हम्बर्ट यूनिवर्सिटी और वहाँ के वैज्ञानिकों ने जब शोध किया है
1: जी।
0: तो जब अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर सकता है तो हमारे देश के जो गायत्री मंत्र का उद्भव तो हमारे ऋषि मुनियों की है, किसी धर्म का नहीं है
1: जी।
0: सनातन ये मंत्र है, वैदिक
1: जी।
0: मंत्र है
1: जी।
0: और ऐसा बोलना उचित नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का है, सभी का है, कोई अच्छा ही है उसको सबको ग्रहण करनी चाहिए। तो उसमें एक बहुत सकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क पड़ेगा, फिर पूरे विश्व में आज भारत ही है जो पूरे विश्व के सुख और शांति कल्पना करती है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हम उसमें वो मंत्र बोला है। तो बोले का हेतु ये है, बचपन से बाल अवस्था से
1: जी।
0: अगर हम बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम उनको तैयार करेंगे, जब वो युवा बनेगा तो बहुत मजबूत रहेगा। हमारा प्लान ये है, पढ़ाई में फोकस करना है
1: जी।
0: पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी रहे, शिक्षा भी रहे और जिस धरती में वो जन्म लिए उस धरती के प्रति प्रेम भी रहे
1: जी।
0: तो ये सारी चीजों को समायोजन हमने हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ा अच्छा बच्चा अच्छा इंग्लिश बोले, अच्छा मैथ्स भी आए, उल्टा गिनती आए, सीधा गिनती आए और साथ साथ कुछ मंत्रों का भी उनको ज्ञान रहे। आज मैं देखा हूँ एक इंटरव्यू में रामायण के किसी पाठ को अगर दिल्ली की यूनिवर्सिटी के बच्चों पूछते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता कुछ मंत्रों के बारे में, उनको मालूम नहीं रहता। तो मेरा ऐसा कहने है कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ें लें तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बीच में हम भोजन मंत्र भी हमने जोड़ा है उसमें मध्यान्ह में
1: जी।
0: उसका हेतु है, हम सब देखते हैं आज बच्चों में अनाज के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहता
1: जी।
0: पहले हम जब भोजन करते थे तो प्रणाम करके भोजन करते थे, जिस थाली में हम भोजन करते थे उसमें हाथ नहीं धोते थे कि इसको हमने प्रणाम किया। आज बच्चे हम आप देखते हैं शादी पार्टियों में जाते हैं, लोग भर थाली खाना लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं
1: जी।
0: जब वो मध्याह्न भोजन में हाथ जोड़ के जब वो सहनावतु मंत्र बोलेगा तो उस बच्चों के मन में भोजन का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भोजन के प्रति, अन्न के प्रति उसमें एक अच्छा ये रहेगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा
1: जी।
0: ये भाव हमारे अंदर है शिक्षक साथ, संस्कार भी हो, संस्कार के लिए हम लोग कुछ वैदिक मंत्रों को, हम किसी धर्म पंथ के हिसाब से नहीं, जो अनिवार्य आवश्यक है उसके हिसाब से हम उसको कर रहे हैं।
2: मंत्री जी एक बात और है कि आपने ये कोशिश की है कि स्कूलों में जो है शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि कई बार ये भी देखने में आता है कि जो स्कूल भवन है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती और मानसून का आगमन हो गया है, मीडिया में भी खबरें आती हैं कि स्कूल जो है उसमें पानी टपक रहा है, तो जो स्कूलों की स्थिति है, जो स्कूल भवनों की जो स्थिति है उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: अभी हमने पहली बार स्कूल खुलने के 15 दिन पहले सारे जिलों को हमने 20 करोड़ की राशि मरम्मत के लिए जारी किया है।
1: अच्छा।
0: उसको इस संबंध में डीओ को निर्देशित किया गया है कि जो पैसा मरम्मत के लायक है उसका उपयोग आप मरम्मत में करें
1: जी।
0: उसका उपयोग हो और सकारात्मक उपयोग हो। उसके अलावा अभी हम लोग इस बार भी 1300 स्कूल नए बिल्डिंग बनाने वाले हैं, अभी एक लिस्ट हम मंगाए हैं, संबंधित विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अनुशंसा पे आने वाले समय में जहाँ जहाँ अति आवश्यक है उन सारे भवनों को, अभी पिछले साल भी हमने लगभग 300 भवन दिया, इस साल भी हम नया भवन दे रहे हैं और आने वाले समय में कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट को चिन्हित करके कहाँ कौन सी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में धीरे धीरे करके जितनी भी समस्या है हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
2: एक सवाल और कि बच्चों को भी काफ़ी सुविधाएं शासन की ओर से दी जा रही हैं, जैसे निशुल्क गणवेश है, पाठ्य पुस्तकें हैं, ये समय पर उपलब्ध हों, गुणवत्तापूर्ण हों, इसके लिए क्या कोशिश है?
0: देखिए अभी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ

0: स्कूल 16 जून को खुले हैं, पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म पहुंच गया है।
1: अच्छा।
0: माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे इस बार हम लोगों ने स्कूल खुलते ही बच्चों को यूनिफॉर्म हमने अनिवार्य दे दिया। कई जगह दोनों सेट दे दिए, कई जगह एक सेट दिए हैं, लेकिन पहले दिन उन बच्चों को यूनिफॉर्म मिला है। बुक भी सरकारी स्कूल का बुक हर हाल में 30 जुलाई तक पूरे शासकीय स्कूलों का बुक हम पहले दे देंगे।
1: अच्छा।
0: और साइकिल की बात है तो साइकिल सभी बच्चों को नहीं देते, कुछ अनुसूचित जाति के बच्चों को हम देते हैं, तो वो भी साइकिल वितरण काम भी हम जुलाई में कर लेंगे। इनके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म साइकिल तो हम दे ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पहली बार हम पूरे प्रदेश के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ICT क्लास लैब हम बना रहे हैं, 22,000 कंप्यूटर लैब हम इस साल दे रहे हैं और इस साल दिसंबर तक सारे स्कूलों में कम्प्लीट हो जाएगा। उसका लाभ ये होगा जो आपने VSK सिर्फ हम ऑनलाइन अटेंडेंट के लिए नहीं है, आने वाले समय में VSK अभी भी डाइट से जुड़ा है, सभी स्कूलों से ये जुड़ जाएगा, अभी नेटवर्किंग जुड़ जाएगा, तो आने वाले समय में सब जगह स्मार्ट क्लास LED लगा हुआ है। किसी स्कूल में मान लो सब्जेक्ट वाइज कोई टीचर नहीं पहुंच पाया, बच्चे खाली बैठे हैं, तो उनका जो जैसे केमिस्ट्री क्लास है तो केमिस्ट्री क्लास को ऑनलाइन के रूप में वो बच्चों को जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें उस पढ़ाई उसमें चलेगी। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि किसी के आने या नहीं आने से बच्चों के प्रभाव पढ़ाई में कोई भी प्रकार का प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, पढ़ाई निर्बाध रूप से चलेगी, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं, इस दिसंबर तक कंप्लीट करने का हमारा प्रयास है, आने वाले समय में बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे।
2: एक अंतिम प्रश्न, जो शिक्षा का अधिकार है उसमें यह भी है कि जो गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में भी मतलब उनको भी पढ़ने का अवसर मिले, छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में वो होता है, अभी पहला चरण हो गया है, दूसरा चरण होने वाला है, ये पारदर्शी तरीके से हो, प्रभावी ढंग से ये सब चीज़ें हों, तो वो गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: अब इसमें तो सीधा लॉटरी सिस्टम है, जो एप्लीकेंट रहता है वैलिड एप्लीकेंट रहता है, वो जाँच होता है कौन सही है गलत है, अगर उनका ये सही आता है फॉर्म सही भरा रहता है तो उनकी लॉटरी लगती है, और जिसका भाग्य के ऊपर है लॉटरी, जिसको मिल गया वो उसमें शामिल हो जाते हैं।
2: मंत्री जी, हम जानते हैं कि बड़ा व्यस्त आपका समय रहता है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें खूब वक्त दिया, बहुत विस्तार से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और सारे विषयों पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से हमारी यह बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय

0: केलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरोज, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुई हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल गुलजार के और संगीत खयाम का है।

आग और शोला। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में। संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का है और बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने सुना फिल्म 20 साल बाद का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए आप सुनते हैं एक बार फिर मोहम्मद अजीज की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम है नगीना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

लीजिए सुनिए फिल्म जीना तेरी गली का ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में, रविंद्र रविंद के बोल हैं और संगीत बाबुल बोस का।

0: जीना तेरी गली में। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत

0: करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक लोकगीतों का कार्यक्रम अनुराग धारा में बुंदेली लोकगीत। कलाकार हैं संजय उपाध्याय।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रादेशिक लोक संगीत अनुराग धारा का कार्यक्रम। कलाकार हैं संजय उपाध्याय।

आकाशवाणी के रायपुर सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं अनुराग धारा कार्यक्रम। कलाकार हैं संजय उपाध्याय।

प्रादेशिक लोकगीतों का कार्यक्रम अनुराग धारा में बुंदेली लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे संजय उपाध्याय। मीडियम एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:30 हुई हैं। प्रस्तुत है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। बोल अनजान के हैं, इसे संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। आवाज किशोर कुमार की है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

अभी आपने सुना अंधा कानून का एक गीत, इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ थी किशोर कुमार की। आइए अब सुनते हैं एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज़ में प्रियतमा का एक गीत। संगीत राजेश रोशन का है और बोल योगेश के।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लग हलो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

0: अभी आपने सुना फिल्म बरसात की एक रात का गीत। बोल आनंद बख्शी के थे और इसे संगीत से संवारा था राहुल देवर्मन ने। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इसी के साथ चित्रपट सदाबहार नगमों का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। इस तरह से पश्चिम एशिया संकट से पूर्व की आपूर्ति स्थिति बहाल कर दी गई है। इसके अलावा एलपीजी की विशाल आपूर्ति से संकट की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था को संकट पूर्व खपत स्तरों के 50% तक बहाल किया गया है। यह बहाली हाल ही में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में नगरी प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरी निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा सरगुजा और रायपुर संभाग के 9 जिलों के 62 नगरी निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं। नगरी निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले

0: चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लक्की ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जाँच अवश्य कर ले। रेलवे द्वारा भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए आज स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन आज भुवनेश्वर से रवाना होगी, जो 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिलासपुर के रतनपुर तहसील के लालपुर हलका के पटवारी को 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत मांग रहा था। इसके अलावा बिलासपुर के ही मस्तूरी में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर बिजली विभाग के क्लर्क को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोप है कि यह क्लर्क बिजली का खंभा लगाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता

0: का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: 1942 ऑक्सफर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you?
5: Happy birthday, Stephen!
4: Thank you,
5: congratulations!
4: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure. Yay.
4: Join us for a drink.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: <ख़ाँ>

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओ,

0: हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल

0: करता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,

0: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
4: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
4: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
6: सूरज।
4: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: बहुत आसान पूछते हो।
4: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
7: अगली बार में बहुत मुश्किल।
4: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
6: हाँ।
4: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
4: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
4: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
4: एकदम सही एकदम सही।
10: वो हमें धूप भी देता है।
4: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
4: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
4: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
10: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
4: हाँ हाँ बिल्कुल।
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
4: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
4: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
7: हाँ।
9: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
4: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
7: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
4: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम

0: ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, हाँ। तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं,
1: हाँ।
0: लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
2: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है,
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
1: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है,
0: बहुत बड़ा होता है,
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है,
0: हाँ,
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।

0: सबसे छोटे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
0: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
3: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
3: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
3: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
3: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
3: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: ये दिन रात बनाता है।
3: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: सूरज ये
3: कहलाता है।
1: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना, जल्दी आना।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
0: वो भी दस पूछेंगे।
1: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
0: है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
1: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। अब प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुरसिंगार।

संगी हो, आज के कार्यक्रम बर पहली गीत हवय केदार यादव संगवारी मन के आवाज मा। ए गीत ला सुनवाए खातिर पोस्ट कार्ड भेजे हवय हमर ए संगवारी मन, शिक्षक नगर दुर्गले राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, बाबी वर्मा, भाटापारा दत्रेंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले, राजेंद्र कुमार दामले, मगरलोड ले श्रीचंद यादव, भारती, कशिश चांदनी, सनातन यादव, औ रावण भाटा भाटापारा ले बाबला यादव, रिखीराम यादव औ कमलेश्वरी यादव। ई गीत सुनवाई खातिर ईमेल पठोए हमें हमर ए संगवारी मन, मेघा पारा ले रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक, टेकलाल पटेल, गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन भाई और मोतिमबाई मानिकपुरी, पलारी ले प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, फुलजर घटारानी गरियाबंद ले योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी साहू, यामिनी मुस्कान, हर्षिता साहू, सांकरा सोमनी, राजनांदगांव ले नारायणलाल साहू, कुलवंतिन देवी,

वीरेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू, सुंदरनगर बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन, लेवई ले गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी, इंदिरानगर भवरपुर ले राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन, बनियापारा धमतरी ले रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा चुटकी, शरद कुमार डोडवानी, दुर्राबंदा वाटापारा ले प्रमोद कुमार साहू, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू, पलरी ले नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू, भीमखोज तरपोंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश, उमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा, शीतल गुप्ता, पहांदा पलारी ले नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन लाल और सावित्रीबाई देवांगन, खमारमुड़ा ले सतीश गिरी गोस्वामी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी, आरंग ले वासुदेव साहू, हिमांशु, रेणिका और झिलमिल साहू, दरसीमा बस स्टैंड ले छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। आप जम्मू संगवारी मन के पसंद में आवाज सुने जाए केदार यादव संगवारी मन के गाए ए गीत।

केदार यादव और संगवारी मन के गाए गीत के बाद अब पारी हवाए कविता हिरकने और अनुराग ठाकुर के गाए गीत के जिला

सुनवाई खातिर पोस्टकार्ड भेजे हवाएं हमार ए संगवारी मन शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर अशरफ खान अयास खान अल्फैज खान बिल्हा ले शेख नासिर और महजीबीन बानो करही बदर ले ए संगवारी मन हमें पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर शारदा देवी जमुनाबाई चंद्रिका लोचन विद्यार्थी गिन्नी लल्ली भाटापारा ले श्याम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा दरचुरा ले ददुआ साहू भूरी साहू रेखा और मोतीलाल साहू और पट पर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार ध्रुव कविता और जयंती ध्रुव यही गीत सुनवाई खातिर ईमेल पठोए हवाए हमर ए संगवारी मन दुर्गापारा संतोषीनगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान आयशा सभिया अनस और रेहान भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू करण राहुल चंपा साहू बदरसी ले घनाराम सेन गीतेश दीपेश निर्मला सेन गेंदाटोला बाजार चौक राजनांदगांव ले बीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता बागबहरा बदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन देहान बांदा बाजार राजनांदगांव ले हरिओम साहू रेवाराम रानू सरस्वती प्यारी राम और परमानंद साहू नांदघाट कातलबोर ले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत सहसपुर ले छोटकू साहू मोहित राम लोकेश रामकिशन दुल्लीचंद सतीबाई साहू और सत्यम रानीगांव नगरी धमतरी ले खिलेश कुमार साहू चित्र रेखा शुभम सेजल साहू लच्छनपुर ले विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर तेंदुभाटा मगरलोड धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर निषाद कन्नेवाड़ा ले लक्ष्मीना सोनवानी गीतिका गुड़िया नयागंज वार्ड भाटापारा ले विष्णु साहू पूरब वीरा हर्ष कुमकुम योगेश्वरी साहू पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता समडिल नवापारा ले मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति राधे दीपक अंकुर राघव गुप्ता लोरमी ग्राम करुहानार ले गोमती रजक काजल रजक ओवरेठी पारा भाटापारा ले अनिता साहू वीणा नेहा मोनिशा साहू दतरिंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा ठेठवार पारा कनेरी ले सनत कुमार यादव और पीपर पारा पालचुआ मुंगीली लिए उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन पंचिका दिवाकर आप जम्मू संगवारी मन के पसंद मा आवाज सुने जाए कविता हिरकने और अनुराग ठाकुर के गाए ए गीत।

आवाओ अब सुने जाए संतोष शुक्ला और निर्मला बेलचंदन के गायकी जिला सुनवाई खातिर पोस्टकार्ड भेजे हवे हमर ए संगवरी मन पहंदा कोरबाले समेलाल कुरे सावित्री देवी कुरे कटोरा तालाब रायपुर ले मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी देवांगन सरक पुंदिया ले गब्बर साहू निर्मला देवी साहू सिमगा ले सविता जैन प्रदीप जैन मोनिका जैन बीना देवेंद्र आदेश जैन हटरी बाजार भाटापारा ले मोहम्मद जावेद एकता यदू पूजा यदू और रेशमा निषाद रहमानिया चौक भाटापारा ले मोहम्मद सलीम मोहम्मद नईम और मोहम्मद ताहिर कन्नेवाड़े ले देवेंद्र कुमार सोनवानी पीएल सोनवानी राहुल कुमार साहू आशीष कुमार टेमरे बंटी उन्द्रा हिमांशु सिंघालिया और महारानी चौक भाटापारा ले परस शर्मा निधि शर्मा रुचि और नित्या शर्मा ये गीत सुनवाई खातिर ईमेल भेजे हमें हमारे ए संगवारी मन कुटेना पांडुका गरियाबंद ले टीकम भूषण गेंदी गोपाल वीरांज ओजल काम्यांश हारमो भोरम देवले जीवनलाल साहू राजबाई लोकनाथ वेदिका साहू बुटगहन ले रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति लच्छनपुर ले रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिम्पल प्रियांश देवांगन लोरमी ग्राम तिलकपुर ले चंद्र कुमार मरावी चंद्रेश कुमार मालती मयंक मरावी हटरी चौक बिलाईगढ़ ले खीखराम देवांगन रेनू रजनी प्रियंका देवांगन हटौद बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज चिंटू तरुण चोवाराम कन्हैया और निर्मला यादव पीपरलोड सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा धमनी राजिम ले समेलाल धीवर मुन्नी धीवर गोविंद ममता कुणाल और युवांश धीवर जैसा कर्रा चरामा ले असाडूराम निषाद खेलावन निषाद और ऋषभ निषाद लगान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल और भारती बघेल भैंसमुंडी मगरलोड ले पूजा तुलेंद्र कुमार पूर्वांशी साहू करहीबदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा निर्मल भड़गा कोदवा गोडान ले श्याम से मरावी राजकुमारी रानी रजनी कुई ग्राम भंगी टोला ले ननकाराम ध्रुवे जामुनबाई ध्रुवे फिरतराम और मालती ध्रुवे झूरा नदी छुई खदान ले भागीरथी ध्रुवे संजीव कुमार तारिका वीणा और मोक्ष ध्रुवे अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचिनी मसिया तुषारिणी और कुमेंद्र मसिया और कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश ले अखिलेश कुमार यादव ज्योति यादव अंकित श्रद्धा और सौरभ यादव आप जमो संगवारी मन के पसंद में आवाज सुन जाए संतोष शुक्ला और निर्मला बेलचंदन के गाय ए गीत

संतोष शुक्ला और निर्मला बेलचंदन के गाए ए गीत के बाद आवाओ अब सुने जाए पद्मा देवार के गाए गीत। ए गीत ला सुनवाए खातिर पोस्टकार्ड भेजे हमें हमर ए संगवारी मन सिद्ध बाबा भाटापारा ले कामता यादव, सोनमत यादव, मन्नू निकिता यादव, गरियाबंद धवलपुर ले गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति मिश्रा, अर्चना प्रतीक्षा, धनंजय मिश्रा, शीतलानगर दुर्ग ले शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, बेमेतरा ले पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी, महामाया पारा ग्राम दरचुरा ले फिरंता साहू, दुलोरेन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। ये गीत सुनवाए खातिर ईमेल भेजे हमें हमर ए संगवारी मन लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरारी, चरौदा बारनवा पारा ले नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामुरिया, अजय देव, अल कबीर, डॉली बेबी, पूजा राधिका, उप्रभा देवी तामुरिया, तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, तत्रिंगी ले भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, अडार नांदघाट ले माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, भूपेश, दीपेश वर्मा, रिंगनी ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रसेड़ा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, बठेना पाटन दुर्ग ले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, कर्मा चौक लाहौरीडी कवर्धा ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, लालिमा, खुशांत, निशांत साहू, नागर कोहरा, राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, सोंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, बोगाटोला मोहला मानपुर ले मालिक राम सिन्हा, इंदु, तारामती, चांदनी, मुनिंद, सविता देवी सिन्हा, देवरी भाटापारा ले गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री ले चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा, शेफाली, पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू और आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू, मोंगरा, केसरी, चिंकी, प्रीति साहू। आप जमो संगवारी मन के पसंद मा आवाज सुने जाए पद्मा देवार के गाए ए गीत।

और कार्यक्रम के आखिर में आवाज सुने जाए प्रीतम साहू और दुर्गा ठाकुर के गाए गीत। सुनवाए खातिर पोस्टकार्ड भेजे हमें इस संगवारी मन कोरदार लवनले भूधर प्रसाद वर्मा घनश्याम प्रसाद वर्मा गुलशन कुमार शिव कुमारी हेमलता बेदकिरण वर्मा बेमित्रा मुलमुला ले नेतराम साहू मनीराम लक्ष्मी साहू बिंदु डिम्पल रमेश्वर साहू नर्मदा धाम सुरसिली ले कैलाश यादव सुरेश यादव डिकेन्द्र यादव योगेश यादव शिवरी नारायण ले धर्मेन्द्र केशरवानी योगेश केशरवानी मोनिका और राजेश्वरी केशरवानी कबीर चौक शीतला मंदिर वार्ड अहिवारा दुर्ग ले डबल कुमार डब्बू धीवर जतिन हेमंत राज बाबू धीवर ई गीत सुनवाए खातिर ईमेल भेजे हमें हमारे ए संगवारी मन खलारी भीम खोजले जी एल साहू सरोज छोटी पिंकी गिर्रा पलारी ले वीरेंद्र साहू सोनू आशीष कपिल साहू चिरमिरी कुरासिया कालेरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहोदर हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू जितेंद्र पायल साहू बलौदा ले दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल पहारा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्रकरण प्रीति और छाया बंछोर मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू कांकेर संबलपुर ले पागु राम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव गंडई पंडरिया ले दरियानामल मोटवानी अनीता राजेश मुकेश मोटवानी पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीना विनय शंकर नयन सुमांशु पांडे मन की लोरमी ले नारायण खांडे रजनी तुषार समीर खांडे टेकापार बालोद ले चिंताराम यादव रवि प्रकाश यादव नेवई उतई ले विक्की उर्वशी जतिन जयंत कुनिका दीपशिखा दिवंगन बाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय कुमार ठाकुर चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविन्द्र रौनक सेन सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी पथरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा औवान्या सिंगरौल हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस शांति वैष्णव ऋचा गायत्री वैष्णव डबरापारा सौंगा मगरलोड ले कोमल सेन तोषण सेन लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या शिवम कोलाम पलारी ले श्यामलाल साहू युवराज साहू रवेली फिंगेश्वर ले राम अवतार यादव शुभम सौरभ चंचल यादव और भाटापारा ले दानसे रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत। आप जम्मू संगवारी मन के पसंद में प्रीतम साहू और दुर्गा ठाकुर के गाए ए गीत।

एहिगी संत रात है आज के सुर सिंगार कार्यक्रम। जय के पहले आप मल्ला बता देना आज के कार्यक्रम पर गीत चुरिहीन वीर भान साहू। अब बीता देव जम्मू संगवारी मल्ला तारकेश्वरी के राम राम।

0: छत्तीसगढ़ी सुगम संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुरसिंगार अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। 1 बजने को है, आइए हिंदी में समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत

0: चेयरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

आदमी खिलौना है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा था, संगीत नदीम श्रवण का था। आइए अब सुने इम्तिहान, इस फिल्म का गीत। कुमार सानू और बेला की आवाजें हैं। गीत लिखा है फाइज अनवार ने, संगीत अनु मलिक का है।

इम्तिहान फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और बेला की आवाजों में। फाइज अनवर ने इस गीत को लिखा था, संगीत अनु मलिक का था। अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार यानी 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार, जैव विविधता का संरक्षण। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पूर्णेन्द्र साहू, उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमित्रा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 400-3482, दूसरा फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फोन नंबर है 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म चाहत का गीत कुमार सानू की आवाज में। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, संगीत अनु मलिक का है।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है, इसी का कल

कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म चाहत के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे करंट अफेयर्स, रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उत्कल भारती, इस कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा, उड़िया लोकगीत कलाकार होंगे ब्रजमोहन दास और उनके साथी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित मुकुंद भाले का तबला वादन। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट होगा शाम 5:00। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा हिंदी में। इसमें आजकल में बातचीत का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस पर। क्रम सेहत में आप सुनेंगे युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान। इस विषय पर डॉक्टर SN मढ़रिया से दीपक हटवार की बातचीत। साथ ही आप सुनेंगे क्रम अपनी पसंद। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेणिया सुनिएगा शाम 6:30 पर। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा होगी पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती के बारे में। और क्रम हेलो चौपाल में बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग, इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर तोरण लाल साहू, सहायक प्राध्यापक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी मीनू पुरुषोत्तम। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह, क्षमा कीजिए, चित्रपट संगीत का

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन और कार्यक्रम करंट अफेयर्स सुनिएगा 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:00 उत्कल भारती, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार होंगे ब्रजमोहन दास और साथी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 1:30 पर आप सुनेंगे पंडित मुकुंद भाले का तबला वादन। 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे हिंदी में, इसमें आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस। क्रम सेहत में आप सुनेंगे युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान, इस विषय पर डॉक्टर एस एन मडरिया से दीपक हटवार की बात।

तबला वादन। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे हिंदी में। इसमें आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस। क्रम सेहत में आप सुनेंगे युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान। इस विषय पर डॉक्टर एस एन मडरिया से दीपक हटवार की बातचीत। साथ ही होगा क्रम अपनी पसंद। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा होगी पॉलीहाउस और ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती के बारे में। क्रम हेलो चौपाल का विषय होगा बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर तोरण लाल साहू, सहायक प्राध्यापक, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। 1:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए पंडित मुकुंद भाले का तबले पर 3 ताल में पेशकार, कायदा, रेला, परण, उठान, चक्करदार, फरद आदि। हारमोनियम पर आपके साथ संगत की है विजय कुमार कुर्म ने। तो आइए सुनिए पंडित मुकुंद भाले का तबला वादन।

ता दा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़नग तक धा गिड़

दा गिड़नक तक दा गिड़नक तक गिड़नक तक दा गिड़नक तक गिड़नक धर धर गिड़नक तू ना गिड़नक तक ताड़ ता गिड़नक दिन तिर तिर गिड़नक तू ना गिड़नक धर धर धर धर धर गिड़नक धर धर गिड़नक।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित मुकुंद भाले का तबला वादन सुन रहे थे। हारमोनियम पर संगति की थी विजय कुमार कुर्म ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, संगीत जतिन ललित का है। फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में लीजिए सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है। फिल्म का नाम है जीना मरना तेरे संग।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत दिलीप सेन समीर सेन का था। फिल्म जीना मरना तेरे संग के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006

0: के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी।

0: वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर

ने का आह्वान, कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें।

0: के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म मिट्टी से। आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद सलामत की हैं। गीत लिखा है कैसर उल जाफरी ने, संगीत अली गनी का है।

0: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद सलामत और साथियों की आवाज़ों में कैसर उल जाफरी का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत अली गनी का था, फिल्म थी मिट्टी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: साधना सरगम की आवाज में आइए अब सुने फिल्म आत्मा का ये गीत, जिसे लिखा है राकेश मेहरा ने, संगीत गोपाल जे प्रसाद का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

हमको तुमसे प्यार है। इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने

0: 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत सुनिए फिल्म कयामत से। आवाजें अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म कयामत का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में दिल का रिश्ता, इस फिल्म का गीत। गीतकार है समीर, संगीत नदीम श्रवण का है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: नेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही,
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइन आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। आज आशुराए मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन में। मैं हूं नूपुर और आज का ये कार्यक्रम उन सभी दिलों के नाम है जो हर धुन पर झूम उठते हैं, हर गीत में अपनी कहानी ढूंढ लेते हैं और जिनके लिए संगीत जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। छोटी छोटी सी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेना ही जो है वो इनका काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुरीली यात्रा की एक मनभावन प्रस्तुति के साथ, एक प्यारे से गीत के साथ। और जिस दौरान ये गीत आप तक पहुंच रहा है तब तक आपको करना है एक छोटा सा काम जी, एक ईमेल रवाना करना है। हमारी ईमेल आईडी तक ये पहुंचना चाहिए और हमारा ईमेल आईडी वैसे तो आपके पास है, फिर भी बताना हमारी ड्यूटी है। fmgoldaiardelhi@gmail.com fmgoldaiardelhi@gmail.com। इस ईमेल पर एक ईमेल भेज दीजिए, हमें लिख भेजिए अपना नाम, आप किस शहर या स्थान से हमें सुन रहे हैं, कहां से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, और साथ ही उस गीत का नाम भी जिसे आप आज सुनना पसंद करेंगे। हाँ, अगर साथ में ये भी बता देंगे हमें कि गीत आपके दिल के इतना करीब क्यों है, उससे जुड़ी कोई खास याद या कोई खास वजह है तो वो क्या है, तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आज किसी कारणवश व्हाट्सएप हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आपको बस ईमेल ही रवाना करना होगा। देखिए थोड़ा काम आसान हो गया, वरना फ़ोन भी यूज़ कीजिए और ईमेल भी भेजिए और मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेजिए, तो आज सिर्फ और सिर्फ ईमेल से काम चलाते हैं। और जब तक आपके ईमेल्स हम तक आते हैं तब तक हम आपको ये प्यारी सी धुन सुनाते हैं, धरती फिल्म का ये गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

और ये जो FM गोल्ड की राहें हैं, ये भी अलबेली प्यार की राहें हैं, जहां हम गाहे बगाहे मिलते ही रहते हैं। आपके ईमेल्स बता रहे हैं कि आपने मिस किया मुझे और आपको मैं अभी भी याद हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन लिख रहे हैं कि आज मैं आपकी आवाज़ काफ़ी दिन बाद सुन रहा हूँ और वैसे ही लग रही है। आपके ईमेल्स भी मैं बहुत दिन बाद पढ़ रही हूँ और वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले, और उनकी जो नंबर्स है ना, तादाद, वो भी बल्कि बढ़ी गई है पहले जैसी, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यह गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार, आपका ईमेल पहुंच गया है हमारे पास।

पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक लिख रहे हैं, सारे ही गीत आपके अच्छे होते हैं, कोई भी गीत में हमारा नाम भी शामिल कर दीजिए। गीत जनाब सारे ही अच्छे होते हैं, बस हाँ थोड़ा ना पसंद पसंद का फ़र्क हो जाता है। और ये जो ईमेल आया है, ये आया है सुरेश नारंग जी का, सहारनपुर से इनके साथ हैं आशा नारंग और सोनाली नारंग। आप सभी का ईमेल पहुंच गया है हमारे पास। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से हैं परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरिंदर कौर रंधावा, आपका भी मेल आ चुका है। और छत्तीसगढ़ भाटापारा से हीरामणि वर्मा, साथ में परिवार के सदस्य पारस मणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल वर्मा, आपने ईमेल भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का ईमेल। आज जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, ईमेल बहुत है हमारे लिए, अगर हमें आपस में एक दूसरे से कुछ भी कहना सुनना है तो ईमेल के जरिए हम कह सकते हैं। गुरुजी बहुत बहुत राम राम, आज आपने दर्शन दिए बहुत खुशी हुई, फरमाइश की ज़रूरत ही नहीं है, गाने सभी अच्छे बजेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी शंकर जी नांगलोई से आपने ईमेल भेजा और इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें की, आपको इतना यकीन है कि गाने सारे अच्छे बजेंगे, तो ये मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि क्योंकि आप सभी की फरमाइशें बहुत अच्छी होती हैं जिन्हें हम प्ले करते हैं, तो जाहिर सी बात है गाने सभी बहुत अच्छे लगते हैं। कुन्नौर से हैं आदिल कमर तस्दीक और अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद। आप लिख रहे हैं किस बात का शुक्रिया दोस्त, आपने कोई फरमाइश भी नहीं भेजी और मैंने कुछ प्ले भी नहीं किया आपके लिए, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार भेजने के लिए। प्यारी सिस्टर आरजे नूपुर जी, एनी सॉन्ग बिल्कुल, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आशना मोहम्मद कैफ अंसारी। तो चलिए इतनी सारी फरमाइशें आ गई, किसी भी गीत पर नाम हमारा शामिल कर लीजिए। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी, हम पहुंचा रहे हैं गीत फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी के पास, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। फरमाइश बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से कर रहे हैं और आपके साथ कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश जी भी हैं और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 से भी है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका,
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।

0: प्रोग्राम खान पान और खरीदारी का साथ
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
3: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
4: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई

0: संपर्क डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बिल्कुल आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 फ्रीक्वेंसी और प्रोग्राम मन भावन। तो गर्मियों का मौसम अपने पूरे शबाब पर है और ऐसे में हर कोई चाहता है ना किसी तरह से इस तपती गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए। इसीलिए तो हम इतने प्यारे प्यारे तराने आपके लिए लाते हैं कि चलिए थोड़ी सी ठंडक दिलों को ही मिल जाए, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही है। लेकिन हाँ, इन गीतों के साथ साथ ना आप छोटे छोटे सी कुछ बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। पानी पीते रहिए, नींबू पानी हो, साथ में छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ऐसे पदार्थों का सेवन करते रहिए। और हम तो पी रहे हैं ना, लेकिन जो बेचारे बेजुबान सड़कों पर हैं, घरों में हैं, उनके लिए भी कहीं थोड़ा सा पानी रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पक्षियों के लिए आप छत पर, बालकनी में

साथ आप छोटे छोटे सी कुछ बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। पानी पीते रहिए, नींबू पानी हो, साथ में छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ऐसे पदार्थों का सेवन करते रहिए। और हम तो पी रहे हैं ना, लेकिन जो बेचारे बेजुबान सड़कों पर हैं, घरों में हैं, उनके लिए भी कहीं थोड़ा सा पानी रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पक्षियों के लिए आप छत पर बालकनी में किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी रख सकते हैं, और अगर सड़क पर कोई ऐसे आपको बेजुबान दिख रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा सा अगर आप पानी रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्के और सूती कपड़े पहने, तेज धूप में आने जाने से जितना हो सके बचें आप। खान पान थोड़ा हल्का रखें और घर में भी थोड़ी ठंडक बनाए रखें। और बहुत जरूरी पता है क्या है कि हम अपने दिमाग में भी ठंडक बनाए रखें। जरा जरा सी बातों पर ऐसे ना उबल जाना, एकदम आग बबूला हो जाना, वो छोड़ दीजिए जनाब, आराम से रहिए। कहते हैं ना कूल आजकल, तो वैसे रहने की बहुत ज़रूरत है। स्नान कीजिए, स्वच्छ रहिए और छांव का सहारा लेते रहिए। बाकी एफएम गोल्ड का सहारा तो आपके पास है ही, मन भावन का सहारा आपके पास है ही, बहुत से ईमेल्स का सहारा हमको है क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं जिन्हें हम शामिल करने वाले हैं। गीत आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा सा, एक लंबे अरसे बाद शायद मैंने फरमाइश देखी इस गीत की, मन कर गया जी आज तो ये गीत सुनना ही है और सुनाना भी है। फिल्म दो बूंद पानी से पीतल की मोरी गागरी, वाह क्या पसंद, वाकई लाजवाब। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु जी, आप सबने मिलकर ईमेल भेजा, इस गीत की फरमाइश भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहाने हम भी सुन लेंगे आज ये गीत। कुछ और नाम यहाँ पर जो शामिल करने हैं ज़रूरी, क्योंकि उनके नाम भी आए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, किसी भी सॉन्ग में हमारा नाम आप प्लीज़ ऐड कर दीजिए। ये हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया। और ये ईमेल जो आ गया है मेरे पास अभी अभी, ये आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नहावकर साहब का, निर्मला जी हैं, विशाल जी हैं, सोपान, नारायण और आशीष, आप सब मिलकर एक ईमेल भेज रहे हैं हमारे पास। मेल पहुंच गया है हमारे पास दिल्ली शहर से, यह है अस्मा परवीन और आमना परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेल भेजा। और जी कोई फरमाइश नहीं, कोई फरमाइश नहीं, मतलब पता क्या, हमें ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास जो है जितना है हम उसमें बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे। ये हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, आप सबका ईमेल आ गया है हमारे पास। और ये हैं जी कहाँ से है ये ईमेल, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से है, बबलेश हैं, डैनी, मनीष और दिनेश चौहान हैं, बाबूराम जयपाल जी हैं साथ में, आप सभी मिलकर लिख रहे हैं कि जी मन भावन का जादू तो वाकई निराला है जो हम सबको मंत्रमुग्ध कर देता है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल, मेरा भी कुछ यही मानना है। चलिए सुनते हैं परवीन सुल्ताना, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा तराना।

एक अरसे बाद वाकई इस गीत को सुना और बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया मुझे तो। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ईमेल आपके पास है ही, जो है fmgoldaiadelhi@gmail.com। बहुत से लोग हैं हमारे नियमित श्रोता हैं, रोज़ सुनते हैं, तो आपके लिए बता दूं कि आज बस आज भर के लिए कुछ ऐसा है कि व्हाट्सएप की सुविधा हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ ईमेल आप ज़रूर भेज सकते हैं। अभी लाइव सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति चल रही है। ये लिख रहे हैं मंगल जी, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील, आप सब ने मिलजुल कर ईमेल भेजा है श्री गंगानगर राजस्थान तरोड़ा जिला से। कभी कभी कोई नाम ऐसा हो जाता है कि बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है बोलने में, लेकिन टाइम ज़रूर लगाएं, सही बोलें, बाकी बहुत ज़रूरी है। वारली मुंबई से हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान, आप ने लिखा है एनी सॉन्ग। बिल्कुल जी, सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, किसी भी गीत में जो आपकी पसंद का हो हमें शामिल कर लीजिए। जनाब मनभावन ना मेरी पसंद के बारे में नहीं है, मनभावन आपकी पसंद के बारे में, जो गीत आप सुनना चाहते हैं, जिनकी फरमाइश आप हमारे प्यारे प्यारे श्रोता भेजते हैं, हम वही बस आप तक पहुंचाते हैं। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत, रिफत, नुजहत, शाजिया, नाजिया, आप सभी बहने हैं, कह रही हैं हमारा ये मैसेज शामिल कर लें प्रोग्राम में और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। तो लीजिए शामिल हो गया, अब मुझे इंतजार है कि आपका शुक्रिया मुझ तक आता है कि नहीं। तहे दिल से शुक्रिया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से, कि दीदी किसी भी गीत में जो है वो आप हमें शामिल कर लें। छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, और हमारे पास ये मैसेज आया है, देख रही हूँ मैं ईमेल में मैसेज किन का है। शबनम को और मेरे शौहर अकरम को आप शबनम का और मेरे शौहर अकरम का आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। और आज तो मन भवन में चार चांद लग गए हैं, अच्छा साथ में आपकी बेटी भी हैं। ठीकरी मध्य प्रदेश से आपने ये ईमेल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि गीत जो हमारे लिसनर्स की पसंद के हैं वो आपको भी पसंद आ रहे होंगे। बोर खेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूर्त जी हैं, नेहा जैन, दीपक, मयंक और चेतना, अपनी पसंद का कोई भी गीत, मेरी पसंद कुछ नहीं, सब आप हैं, ये सब आपके बारे में है। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आज कोई फरमाइश नहीं क्योंकि सभी गीत हमारी फरमाइश के हैं, हमारी पसंद के हैं। बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगता है, जो गीत आप लोगों को पसंद है ना, यकीन मानिए अगर कोई भी आरजे इन इस दौर के गीतों की प्लेलिस्ट बनाएगा ना, तो ये तमाम गीत प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल होंगे, ज़रूर ज़रूर। नई बस्ती गंज डुंडवारा से है मोहम्मद यासर।

चलिए जी, कुछ और नाम शामिल करने का वक्त हो चला है। और ये हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और आयान बाबू का प्यारा सा ईमेल, और सेक्टर 8 भिलाई से प्रभा, अनुश्री, पूजा, डॉली, आप सभी का ईमेल पहुंच गया है हमारे पास। और ये जो हैं दोबारा से ईमेल पहुंच रहा है, और मुझे याद है कि मैंने ये नाम शामिल कर लिया है। जो याद रह जाएगा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं तो कोई बात नहीं, दो बार नाम शामिल हो जाएगा। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, और बहुत सारे गानों की प्लेलिस्ट इन्होंने बना के रखी है और कह रहे हैं कि ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें से कोई भी सदाबहार

मुकदमा सुनवा दीजिए, धन्यवाद। ये प्लेलिस्ट तो हमारे काम आएगी बिल्कुल, इसको तो सेव करके रखना पड़ेगा। और ये है अल्तमश, समीना, मुदस्सर, फिरदौस, जुम्मा नगर, खंडवा के बच्चे, और लिख रहे हैं कि आपको बहुत दिन बाद सुन रहे हैं और सारे बच्चे आप कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बहुत दिन बाद जब कोई मिलता है ना तो अच्छा लगता है उससे मिलके, है ना। ऐसा लगता है कि कोई पुरानी यादें ताज़ा हो गई और पुराने दिन फिर से लौट आए। चिपा कॉलोनी खंडवा से हैं मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री, और आपका भी कुछ यही मानना है? बिल्कुल, मेरा मानना भी ऐसा ही है। अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। लिख रहे हैं विजय, प्रियंका, ट्विशा है ना आपका नाम, बहुत प्यारा नाम, पल्लवी और एकता, टंग ट्विस्टर जैसा नाम, ट्विशा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा नाम है। और ये हैं जी सबरा, शबाना और रईसा, खंडवा की तीन बहुएं, यानी बहनें, बहुएं और बच्चे, सबके मैसेज आज पहुंच रहे हैं एफएम गोल्ड के नाम गांव फ्रांसीसार से हैं राजकुमार, प्रमोद, पुष्पेंद्र, कोई भी गीत, बिल्कुल सारे गीत आपकी पसंद के। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब का ये ईमेल पहुंच गया है हमारे पास, इंद्रा विहार दिल्ली से हैं बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी और उमर खेर से अजीता, और ये हैं साथ में सरिता, आपने फिल्म का नाम लिख दिया है लेकिन आपने गीत का नाम नहीं लिखा है तो थोड़ी सी मुश्किल इस वक्त हमारे लिए हो गई है। ऐसा मत कीजिए, हम कश्मकश जो है वो बढ़ जाएगी ज़िंदगी की, इस फिल्म का कौन सा गीत आपको पसंद है और कौन सा नहीं। चलिए जी आगे मेल देख रहे हैं, ये हैं स्वर्ण सिंगल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, आप सभी हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से और आप सब ने मिलकर ईमेल भेजा है कि कोई भी गीत जो आपको अच्छा लगता हो वो हमें भी अच्छा लगेगा, सुनवा दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो कह रहा है तेरी आंख का जो इशारा ना होता, फिल्म है नई रोशनी, रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत ही प्यारा सा ये तराना, आइए मिलकर लुत्फ़ उठाते हैं इसका।

कुछ और ईमेल्स यहाँ पर शामिल करने का वक्त तो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी ना कोई ख़ास बड़ी वजह ना ढूँढें हंसने मुस्कुराने की, क्योंकि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना थोड़ा ठहरना, अपने लिए कुछ पल निकालना और दिल खोलकर मुस्कुरा लेना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। टूटी हुई चीज़ें अक्सर हौसले से जुड़ जाती हैं, थका हुआ मन कभी कभी एक सच्ची हंसी से बहल जाता है। हर बात का जवाब जो है ना वो शब्दों में देना ज़रूरी नहीं होता, कई बार मुस्कान भी बहुत कुछ कह जाती है। चेहरे पर हंसी की रोशनी हो तो मन का अंधेरा भी भाग जाता है ना, धीरे धीरे चढ़ जाता है, भाग जाता है। गम आए तो उन्हें अपनों के साथ बांट लीजिए, और खुशियाँ मिले ना तो उन्हें भी खुलकर बांटिए, लुटाइए, खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी वजह दीजिए कि वो भी मुस्कुरा सके, क्योंकि दर्द भी वही कुछ हल्का हो जाता है जहां लोग मुस्कुराकर जीना जानते हैं। और यादें भी ना वहीं सबसे प्यारी बनती हैं जहां हंसी की गूंज होती है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी तैयारी के। तो आज ऐसा कीजिए, यूं ही बिना वजह के थोड़ा मुस्कुराइए, खुद से दो पल बातें कीजिए और जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशियों की तलाश कीजिए। हो सके तो किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए, ऐसा कोई छोटा सा आज काम कर दीजिए। जैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी हंसूं मुस्कुराऊं और आपके चेहरे पर भी आज हंसी लाऊं, मुस्कुराहट लाऊं, जब आप अपना नाम सुने, है ना। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, कमल साहनी पिंगला वाला चौक जालंधर से हैं, बगेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य, किशन वंजानी, नीलम, स्वाति किशन, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार, खयाला से, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, कस्बा कुन्नौर, उत्तर प्रदेश से एफटी खान फैमिली के लोग शामिल हैं, फारूक अली, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारी

बेटा ताहिरा, और जो और मैसेज हैं ईमेल के जरिए पहुंचे हैं ये हैं, पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा, ऋषिकेश, जीविका, सविता और अशोक, आप कोई भी गीत सुनवा दीजिए ऐसा लिख रहे हैं। ये हैं आदिल कमर गुन्नौर से, बेहतरीन लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है। पता है प्रोग्राम शुरू होता है ना, मेरा मन ही नहीं करता ये ख़त्म हो। ऐसा लगता है 2-3-4 घंटे आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाती रहूं और आपकी ईमेल शामिल करती रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है, तभी वो अच्छी लगती है। सर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। फिलहाल सगाई फिल्म से गीत आप तक पहुँच रहा है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले के स्वरों में, और गीत भी प्ले हो रहा है साथ में। आपके मेल्स कुछ और यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ, वक्त रहते देखती हूँ कितने शामिल कर पाती हूँ। पुराना तालाब डुमराव से वलील अंसारी, आसमान अंसारी और शबनम बानो का ये ईमेल पहुँच गया है हमारे पास। मेल कुछ और ढूंढने पड़ रहे हैं मुझे। सनावत से शेख मूसा का मेल है, और जॉन डिकेस्ट्रो हैं, रोजी पर्ल विलिस आप सभी हैं जनकपुरी सहारनपुर से। तो ये तो कहना बनता है कि जनाब ना ये जमी थी ना आसमां था, लेकिन संगीत था, गीत था, और आपका हमारा साथ भी जन्मों जन्मों से ऐसा लगता है कि साथ ही है। ये विचार रखिएगा आज के दिन अपने साथ, और आपका आगे का दिन जो है बहुत अच्छा बीते, हंसते गाते गुनगुनाते मुस्कुराते बीते, ऐसा मैं चाहती हूँ। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का भी, और हाँ सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। मनभावन आज यहीं तक, नमस्कार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ गीत है ना दिल के पुराने दोस्तों जैसे होते हैं, बरसों बाद भी सुनो तो वही अपनापन, वही मुस्कान, वही यादें साथ ले आते हैं। इन गीतों में सिर्फ धुने नहीं, जिंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत लम्हे कहीं छुपे होते हैं। तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं कुछ सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ हूं मैं नूपुर और ये गीत पहुंच रहा है आप तक फिल्म दाग से, किशोर दा, लता दी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत और साहिर लुधियानवी के लिखे बोल।

0: खान पान और खरीदारी का साथ।
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: FM गोल्ड पर अगला गीत किशोरदा की आवाज फिल्म ब्लैकमेल से संगीत कल्याण जी आनंद जी का, गीतकार राजेंद्र कृष्ण। सुनिए प्यारा सा तराना।

0: assist, personal assistant, junior medical record officer or senior administrative assistant. अन्य विवरण, आवेदन पत्र, नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए एम्स जम्मू की वेबसाइट www.aimsjammu.edu.in. नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब आमंत्रित कर रहा है प्रधानाचार्य के एक पद को भरने के लिए. आवेदन, प्रतिमाह वेतन रहेगा 1,44,200 रुपए समेकित. योग्यता और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.niiftiindia.com. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रधान निजी सचिव के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. नियम, शर्तों, योग्यता, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान आवेदन आमंत्रित कर रहा है. इन पदों के लिए मास्टर गजेटेड पीजीटी पदों की संख्या 1 है. वांछनीय योग्यता है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अध्यापन का 3 वर्ष का पूर्व अनुभव. एक पद स्कूल काउंसलर असिस्टेंट मास्टर का है जिसके लिए उम्मीदवार को होना चाहिए मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में दक्षता, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर न्यूनतम सहभागिता, खेलों में भागीदारी और कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान भी उम्मीदवार को होना चाहिए. आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान की वेबसाइट और ईमेल कर सकते हैं इस पते पर principal@gmail.com. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर Grade 1 और सहायक प्रोफेसर Grade 2. इन भर्तियों के लिए विभाग, विशेषज्ञताएं और पदों की संख्या की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र. विभाग और विशेषज्ञताएं इस प्रकार हैं: सिविल इंजीनियरिंग, संरचनात्मक इंजीनियरिंग, भू तकनीकी इंजीनियरिंग और परिवहन इंजीनियरिंग. यांत्रिक इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और स्वचालन, उपकरणन और नियंत्रण तथा मैकाट्रॉनिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग. विद्युत इंजीनियरिंग में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI तथा संचार और संकेत प्रसंस्करण. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में VLSI परीक्षण, वास्तुकला और चिप डिजाइन. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विज्ञान और बिग डेटा, प्रणालियां और वास्तुकला, वित्तीय गणित तथा क्रिप्टोग्राफी. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंग्रेजी भाषा शिक्षण, विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक वित्त. प्रबंधन अध्ययन में मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और संचालन तथा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं recruitment.nits.ac.in. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की एक नई शाम में हम आ गए हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का एक नया अंक लेकर। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मनोज। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और कार्यक्रम के आज के अंक में उन खास व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
1: नमस्कार सर फिरोजी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द

0: गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और कार्यक्रम के आज के अंक में उन खास व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन है।
1: Namaskar, Sir Firozi, and a very warm welcome to all the listeners who have tuned into our news magazine program, Parikrama. In this program, we'll remember those personalities who were born and those who died on this day, that is the 26th of June, which is the 177th day of the year. In addition, we'll provide you with a roundup of national, regional, business and sports news. Sir Firozi, let's begin with the headlines first.
0: Jee Manoj. गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान, कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट 8 पीपल इन कनेक्शन विद राम मंदिर डोनेशन एम्बेजलमेंट केस।
0: भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना।
1: Prime Minister Narendra Modi recalled sacrifices of Hazrat Imam Hussain on Muharram.
0: T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से, टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें।
1: And Australia qualified for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. And now it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about a very sensitive topic, as it is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Every year, that is, on 26th of June, the world observes the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Established by the United Nations, this day is a global call to strengthen action and cooperation in building a society free from drug abuse and illegal drug trafficking. This year's observance, Sir Firozi, reminds us that the fight against drugs is not only about enforcing laws, it is also about protecting lives, preserving families, empowering young people, and of course, securing the future of our nation.
0: बिल्कुल मनोज, और आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से एक है नशीली दवाओं का दुरुपयोग। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, अपराध को बढ़ावा देता है, आपसी रिश्तों को कमजोर करता है, शिक्षा में बाधा डालता है और प्रोडक्टिविटी भी इससे घटती है। इसकी वजह से युवाओं के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, वो युवा जो किसी देश के भविष्य की असली नींव होते हैं।
1: And Sir Firozi, we've also come across viral videos on zombies, people acting like zombies, and recognizing this threat, the government of India has also adopted a zero tolerance policy towards drugs. Instead of relying solely on enforcement, the government is pursuing a comprehensive strategy that combines prevention, public awareness, rehabilitation, and strict action against drug traffickers. The vision is to transform the fight against drugs into a Jan Andolan, a nationwide people's movement in which not just us, but every citizen, every family, every educational institution, and every community becomes an active partner in creating a drug-free India.
0: बिल्कुल मनोज, और इस पहल के अच्छे नतीजे भी हम देख पा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB समेत पूरे भारत में कई एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए की कीमत के गैर कानूनी ड्रग्स जब्त किए। ये 2023 में जब्त किए गए 16,100 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तुलना में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाता है। वहीं अधिकारियों ने सिंथेटिक ड्रग्स और ऐसी फार्मास्यूटिकल दवाओं की जब्ती में तेजी से बढ़ोतरी की जानकारी दी है जिनका साइकोट्रॉपिक पदार्थों के तौर पर गैर कानूनी रूप से गलत इस्तेमाल किया जाता है।
1: एंड सर फिरोजी, व्हाट रियली मेक्स दीज ड्रग्स डेंजरस इज दैट दे आर हाईली एडिक्टिव, ऑफन इजीयर टू ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट and can have devastating effects on both physical and mental health. The increase in seizures reflects stronger intelligence sharing, better coordination among enforcement agencies, and intensified operations across the country. In a major step towards eliminating the drug menace, agencies in 2024 achieved the country's biggest offshore drug seizure.

0: Under the leadership of the Ministry of Home Affairs, a whole-of-the-government approach is being adopted to dismantle drug networks and bring perpetrators to justice.
1: बिल्कुल मनोज, और इसी क्रम में नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के दुरुपयोग को एक ऐसी चुनौती बताया जो सिर्फ लत तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हित और भारत के युवाओं के भविष्य के लिए भी खतरा है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार अकेले ये लड़ाई नहीं जीत सकती. एकजुट प्रयासों का आह्वान करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षण संस्थानों, युवा संगठनों, माताओं और हर जिम्मेदार नागरिक से अपील की कि वे मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जो ड्रग्स को नकारे और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें. उनका संदेश साफ था, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है.
0: And we've told you, listeners, about dangers of drug abuse. But dear listeners, the question that you might be thinking or that might be rearing in your head is, what is our strongest weapon? And our strongest weapon certainly is awareness. Many young people fall into drug abuse due to probably curiosity, peer pressure, stress, misinformation that it gives you a certain high, or emotional challenges as sort of a resort to these drugs. But every informed decision has the power to prevent addiction before it begins. Parents can create an environment of trust and open communication. Teachers can educate students about the dangers of substance abuse. Friends also can encourage one another to make healthy choices. And as a whole, communities can support rehabilitation instead of stigma, helping those affected return to a productive life. And remember, listeners, addiction is not just an individual struggle. It affects entire family, your friendships, your workplaces, and of course, the entire community.
1: बिल्कुल श्रोताओं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हुए हमें ये भी याद रखना है कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है. जैसा कि मनोज ने बताया, इसके लिए जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है. नशीली दवाओं के खतरों के बारे में हर चर्चा, हर युवा जो नशे की लत के बजाय सेहत को चुन रहा है, हर परिवार जो इन प्रयासों में सहयोग दे रहा है, और हर नागरिक जो नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ खड़ा है, ये सब हमें सुरक्षित और मजबूत भारत की ओर एक कदम और करीब ले जा रहे हैं.
0: And before we wrap up this segment, we would not like to wrap up this segment with just information and information on drug abuse. Let's take a very simple pledge together. I pledge to stay away from drugs, spread awareness about their harmful effects, support those seeking help, and contribute towards building a healthy, safe, and drug-free India. Remember, the greatest achievements in life come from determination, hard work, and healthy choices, not from addiction. Stay informed, stay healthy, and always remember, say yes to life, yes to dreams, and no to drugs. To all the young listeners who have tuned in today to listen to our program Parikrama, remember that drugs are never a symbol of being cool. They only steal your health, dreams, and future. Real confidence comes from making wise choices, pursuing your passions, and staying true to yourself. It does not come from an external stimulant. So say no to drugs and yes to a healthy, happy, and successful life. The Ashura-e Muharram is being observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Hazrat Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. Hazrat Imam Hussein laid down his lives for upholding truth, righteousness, and justice in Karbala. Tazia processions are being taken out to mark the occasion. Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein. In a social media post, he said that Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice.
1: और बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला और महरौली सहित कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं. करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित हो रही हैं. दिल्ली

श्रोताओं, अभी हमने सुना राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आज जयंती है। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर से पहले हुए बांग्ला साहित्यकारों में इनका अग्रणी स्थान है। इनका पहला प्रकाशित रचना थी राजमोहन्स वाइफ। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई। इनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति थी दुर्गेश नंदिनी, जो मार्च 1965 में छपी। वहीं आनंद मठ इनका राजनीतिक उपन्यास है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आत्म बलिदान का आदर्श और देशभक्ति का महत्वपूर्ण मंत्र प्रचारित किया।

0: June 26 is a day of remembrance for Ford Madox Ford as well, the architect of modern storytelling. He died on this day in 1939. Ford was an English novelist, editor and critic, an international influence in early 20th century literature. Ford was born in Surrey, England in 1873. His novel, The Good Soldier, allowed memory, emotion and uncertainty to shape the narrative. The tetralogy titled Parade's End, published during the 1920s, drew upon his own experiences of the First World War. The novel painted a powerful portrait of a society transformed by conflict and remains among the finest literary works inspired by the Great War.
1: और अब हम आपको बॉलीवुड के उस सितारे के बारे में बताएंगे जिसने हिंदी सिनेमा जगत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. इनकी सिनेमाई ताकत और कहानियों ने कई सितारों को चमकाया. हम बात कर रहे हैं यश जौहर की. यश ने अपने करियर की शुरुआत 1952 में सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट से की, जहां उन्होंने मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों में सहयोगी के तौर पर काम किया. इसके बाद वो देवानंद की नवकेतन फिल्म से जुड़े, जहां उन्होंने गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी क्लासिक फिल्मों में प्रोडक्शन का जिम्मा संभाला. और भी कई जानकारी देंगे यश जौहर के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको उनके एक इंटरव्यू का छोटा सा अंश सुनाते हैं जिसमें वो प्रोडक्शन के गुण बता रहे हैं.
2: काफ़ी साल से प्रोडक्शन में रहा, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन में वो थी मेहनत और ईमानदारी और सिंसियरिटी ऑफ वर्क. ये चीज़ें जो थी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती थी. तो अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन में एक बहुत थैंकलेस जॉब है, इससे बेट वर्स जॉब कोई हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक प्रोडक्शन मैन इज एन ऑलराउंडर.
0: These experiences laid the foundation for a remarkable career behind the camera. In 1976, Yash Johar established Dharma Productions, a company that would go on to become one of India's most successful film studios. Its first production, Dostana, released in 1980, was a major box office success. Over the following decades, Dharma produced memorable films including Agnipath, Gumrah, Duplicate, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham and Kal Ho Na Ho. Let's listen to a few songs from his movies.

0: His films became known for their emotional storytelling, strong family values, lavish production design, and unforgettable music.
1: और भारत की ग्रामोफोन गर्ल के नाम से मशहूर गौहर जान की भी आज जयंती है. गौहर ने गायन और शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग ली. 1888 में गौहर ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी और उन्हें दरभंगा राज के शाही दरबार में दरबारी संगीतकार नियुक्त किया गया.
0: Born as Angelina Yovard in Azamgarh in present-day Uttar Pradesh, Gauhar Jaan came from a culturally diverse background. Listeners, one account says that she used to charge 3,000 rupees per song when the price of gold was 20 rupees per tola.

0: This was the first recorded song, and Gauhar embraced the new technology with remarkable confidence.
1: और श्रोताओं अब इजाजत दीजिए सरफिरोजी और मनोज को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की नमस्कार
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है 5 बजने को है कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है 5 बजे हैं लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडाण, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मूड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, शिवपुर, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, नवापारा, सोनहत, नवगई, गैना, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चौरपानी, बांसाझाल, आमापानी, घोघरा, मानपुर, दांती ढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा और तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, बालाझर, सोनगिरसा, बीजाघाट, सारू ढाब, तेलाइन, माटी पहाड़, कोल्हेन, झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, ताल दादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल

हमर हाथी हमर कोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आइए सबसे पहले आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। रात 9:30 पर आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:10 पर युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी होगा। इसमें आप सुनेंगे आजकल, विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस। क्रम सेहत का विषय होगा युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान। इस विषय पर भेंटवार्ता में जानकारी देंगे डॉक्टर एस एन मंढरिया। भेंट करता होंगे दीपक हटवार। हमारी बेड़ियां ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा आज शाम 6:30 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें होगी आज की बात, विषय होगा पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती। क्रम हेलो चौपाल में सुनिएगा बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग की जानकारी। जानकारी देंगे डॉक्टर तोरण लाल साहू, सहायक प्राध्यापक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:15 पर कलाकार होंगी मीनू पुरुषोत्तम।

उत्कल भारती उड़िया लोक गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। कलाकार होंगे ब्रजमोहन दास और साथी। यादें फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10:30 पर। श्रोताओं ये तो थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल रात 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10:30 पर संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातः 7:05 पर सुनेगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। इसमें सुनेगा योग और ध्यान का महत्व और रोगों से बचाव, इस विषय पर डॉक्टर मृत्युंजय राठौर से भेंटवार्ता। सुबह 9:00 सुनिएगा कार्यक्रम बातों बातों में, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे विदुषी ममता चंद्राकर और साथी, और शाम 6:30 पर कलाकार होंगे शिवदयाल पटपरिया और साथी। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। 11:05 पर सुनेगा सदाबहार नगमे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम के लगभग 5:15 बज रहे हैं और तुम्हारा यूं मस्तानी शाम गुनगुनाना, वाह क्या बात है भाई।
1: क्यों नहीं भाई, मस्त शाम है और इस समय हमारे श्रोता हमें सुनने के लिए रेडियो की ओर खींचे चले आ रहे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस गीत से शुरुआत की जाए।
0: अरे बिल्कुल, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा और इसी स्नेह के साथ हम अपने प्रिय श्रोताओं और श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में स्वागत करते हैं और आप सभी स्वीकार करें हमारा यानी सुयश और
1: श्रिया का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: सुयश, मुझे लगता है कि इस समय हमारे बहुत से श्रोता अपने दिन भर के काम से लौट रहे होंगे, कोई दुकान में होंगे, कोई खेत से घर आए होंगे, कुछ साथी कॉलेज या कोचिंग से लौट रहे होंगे, तो बहुत से लोग इस समय घर में बैठकर एक साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे।
0: हाँ बिल्कुल श्रिया, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का समय हमें अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए मिलता है। इस समय हमें सोचने का मौका मिलता है कि आज हमने क्या सीखा, क्या किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं,
1: और इसी समय हम तय करते हैं कि अपने खाली समय का कैसे सदुपयोग करना है।
0: तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बातों ही बातों में कह दी श्रिया, खाली समय, क्योंकि यही समय कई बार किसी को आगे बढ़ा देता है और कई बार किसी को गलत रास्ते पर भी ले जाता है।
1: बिल्कुल, कुछ लोग समय का सदुपयोग करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिटनेस के लिए वर्जिश करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेकार घूमते फिरते गलत संगत में पड़ जाते हैं।
0: और साथियों, गलत संगत अच्छे लोगों को भी गलत बना देती है जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है।
1: हाँ, शुरुआत में सब सामान्य लगता है लेकिन धीरे धीरे आदतें बदलने लगती हैं, सोच बदलने लगती है और कई बार व्यक्ति नशे जैसी बुरी आदतों की ओर बढ़ जाता है।
0: श्रिया, आज का युवा बहुत प्रतिभाशाली है, उसके पास खुद को बेहतर करने का अवसर है, तकनीकें हैं और जानकारियां भी हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन जितने अवसर बड़े हैं उतनी ही चुनौतियां भी हैं। आज युवाओं पर पढ़ाई का दबाव है, करियर की चिंता है, प्रतियोगिता है,
0: और ऐसे में जब युवा मन परेशान होता है तो कुछ लोग इसे बहाना बनाकर सिगरेट शराब जैसी कई नशीली चीजों की लत में पड़ जाते हैं,
1: जबकि सच्चाई ये है कि नशा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बन सकता। दोस्तों, भले ही लगा हो कि वो कुछ समय के लिए परेशानी को छिपा सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता।
0: और आज हम नशे के बारे में बातें इसलिए कर रहे हैं साथियों क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और हम सभी को देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज को नशे की लत से दूर करके सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाने का संकल्प लेना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल साथियों, और इसके लिए हमें समझना होगा कि सकारात्मक ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है।
0: साथियों, सकारात्मक ऊर्जा हमें तीन चीजों से मिलती है, पहला है अच्छे विचार, दूसरा है अच्छी आदतें और तीसरा है अच्छे लोग।
1: वाकई,
0: अगर सुबह उठकर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
1: इसलिए साथियों, सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमारे शरीर का भी स्वस्थ होना अनिवार्य है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी मजबूत रहेगा और निर्णय भी सही होंगे।
0: शिया, तुमने बहुत अच्छी बात कही। और कई बार लोग कहते हैं ना कि नशे करने वाले लोग बुरे होते हैं, तो इसमें तुम क्या सोचती हो, सहमत हो इससे?
1: नहीं सुयश, मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि नशे की लत एक समस्या है। अगर कोई व्यक्ति धोखे से या गलत संगति के

0: कारण इस समस्या में पड़ा है तो उसका समाधान तिरस्कार से नहीं बल्कि सहयोग से होगा।
1: यानी अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमें उसे नशे की लत से बाहर निकलने में उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वो एक अकेला नहीं है बल्कि उसके पीछे माता पिता, बच्चे और परिवार भी हैं।
1: और साथियों, अगर जरूरत हो तो ऐसे लोगों को विशेषज्ञों और नशा मुक्ति केंद्रों में भी सहायता दी जा सकती है।
0: हाँ, क्योंकि समय पर मिली मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।
1: और एक बात जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है वो ये है कि हर व्यक्ति समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। साथियों,
0: बिल्कुल, समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए बहुत बड़ा पद या बहुत ज्यादा पैसा जरूरी नहीं है।
1: और जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें भी भीतर से खुशी मिलती है।
0: तो दोस्तों, आज अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछिए।
1: ये पूछिए कि क्या आप अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं?
0: क्या आपकी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं या पीछे खींच रही हैं?
1: क्या आप और हम अपने परिवार, अपने गांव और अपने समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन पा रहे हैं?
0: अगर इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए सही रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा।
1: और सकारात्मक सोच रखिए साथियों, स्वस्थ रहिए, नशे से दूर रहिए। और ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है कि वो किसी भी नशीली चीज या ड्रग्स का विक्रय करता है या सप्लाई करता है या युवाओं और किशोरों को इसे सेवन करने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति की शिकायत आप अपने समीप के थाने में कर सकते हैं या सूचना दे सकते हैं।
0: तो दोस्तों, आइए आज हम संकल्प ले कि नशे से स्वयं भी दूर रहें और दूसरों को भी इसके गिरफ्त में जाने से बचाएं
1: और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें,
0: क्योंकि जीवन की असली खुशी किसी नशे में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने और अपनों के चेहरे पर मुस्कान देखने में है।
1: और हम तो यही कहते हैं भाई कि जिंदगी एक सुहाना सफर है और यहाँ कल क्या हो कौन जानता है।

0: दोस्तों, कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तन और मन स्वस्थ हो तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। छोटी छोटी आदतें कब बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती है, इसका पता भी नहीं चलता।
0: इसलिए साथियों, जरूरी है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें और अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को अपनाएं।
1: तो दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी और जागरूकता से भरपूर प्रस्तुत है क्रम सेहत, जिसमें आज का विषय है युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर SN मंडरिया से दीपक हटवार की भेंट वार्ता।
2: श्रोताओं नमस्कार। एक समय था जब कुछ बीमारियों को लेकर ये कहा जाता था कि ये बीमारी एक उम्र के बाद ही होती है, लेकिन आजकल युवाओं में भी ऐसी बहुत सी बीमारियां देखी जा रही हैं जिनका अब उम्र से सीधा कोई संबंध नहीं रहा, और उन्हीं में से एक समस्या है उच्च रक्तचाप की, पक्षाघात की। इस संबंध में हमारे युवा साथियों को विस्तार से जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है न्यूरो और स्पाइन सर्जन डॉक्टर SN मढ़रिया साहब को। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: अगर हम युवाओं के संबंध में आपसे जानना चाहें कि आज की तारीख में, क्योंकि युवाओं के साथ बहुत सी बातों को लेकर तनाव भी जुड़ा हुआ होता है, भागदौड़ भी जुड़ी हुई होती है, ऐसे में क्या युवाओं को भी उच्च रक्तचाप का सामना करना पड़ता है?
3: निश्चित रूप से। आज की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो माहौल है और जो लाइफ स्टाइल है, वही और हमारे यंग पेशेंट आने के कारण है ब्लड प्रेशर लेके। और ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि 8 में से एक यंग मतलब 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर देखा गया है। और उसका मुख्य कारण लाइफ स्टाइल है, खान पान के तरीके हैं, ज़्यादा सोडियम लेना है, नमक बहुत ज़्यादा खाने का है, जंक फूड, ये सब चीज़ों में बहुत मसाला और नमक बहुत ज़्यादा होते हैं, सोने के तरीके हैं, और रिएक्शन भी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातों में आप देखे होंगे कि बहुत जल्दी गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा चालू कर लेना, रिएक्ट करना, तो कुल मिला के ये आप लाइफ स्टाइल बीमारी हो गई है ब्लड प्रेशर, जो यंग में भी बहुत कॉमन हो गया है।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम मना स्थिति की बात करें तो कई बार ये देखा जाता है कि एक युवा जो शिक्षित होकर रोजगार की तलाश में निकलता है और उसे समय पर मनचाहा अगर काम नहीं मिलता तो उसका उसके मन पर या उसके रक्तचाप पर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या?
3: स्ट्रेस तो हमेशा हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है। जब भी हम किसी भी कारण से स्ट्रेस में आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना होना ही है। लेकिन वो किस लेवल में बढ़ रहा है इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या होता है, एक रिएक्शन टेस्ट होता है जो हम लोग MBBS में होते हैं तो शुरू में किया जाता है।

0: बताता है कि हाउ आवर बॉडी इज रिएक्टिंग विद द स्ट्रेस. तो वो एक मेथड होता है जिससे हम अपन जान लेते हैं कि हमारा बॉडी कितना प्रोन है ब्लड प्रेशर डेवलप होने के लिए. लेकिन ये सामान्यता नहीं किया जाता, इसलिए बेस्ट मेथड अब यही है कि हमें रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर नपवाते रहना चाहिए.
1: डॉक्टर साहब, युवाओं की दिनचर्या की अगर हम बात करें तो ज्यादातर युवाओं में ये देखा गया है कि देर रात तक जागते हैं. जागने के कारण भी अलग अलग होते हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो कि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो देर रात तक जागते हैं, देर से सोकर उठते हैं. क्या ये जो हमारा जो लाइफ साइकिल जो है इससे डिस्टर्ब होने की वजह से भी रक्तचाप पर इसका कोई असर पड़ता है?
0: निश्चित रूप से हमको अपना रूटीन नॉर्मल जिसको स्टैंडर्ड रूटीन कहते हैं उसमें रखना चाहिए. सोने का टाइम 9-10 बजे हो जाए, उठने का टाइम 4 बजे हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं है. लेकिन जैसे अब बच्चों लोग का हैबिट हो गया है कि 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो उसको अपनी बॉडी को कैसे एक्लेमेटाइज कर रहे हैं ये देखना है. ये जरूरी नहीं कि 3 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ने वाले बच्चे को ब्लड प्रेशर हो जाए, लेकिन अपना बीच बीच में ब्लड प्रेशर देखवाते रहें, जाँच कराते रहें. और ये जानना भी जरूरी कि फैमिली हिस्ट्री कैसी है, क्योंकि इसमें हेरिडिटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और एक्चुअली जब अपना रात भर जगते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, तो कभी कभी किसी में इफेक्ट आ सकता है. लेकिन हमेशा हमें थोड़ा सा अपना सावधानी बरतते हुए बीच बीच में कभी भी ब्लड प्रेशर दिखा लेना चाहिए.
1: अगर हम रक्तचाप के कम होने या बढ़ने की बात करें तो युवाओं को ये कैसे आभास होगा कि उनके रक्तचाप में कोई परिवर्तन आ रहा है? किस लक्षण से, किस संकेत से उन्हें पता चलेगा?
0: ये तो कहना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर थोड़ी सी चीज़ों में बहुत गुस्सा आने लग गया या स्ट्रेस आने लग गया, हेडेक होने लग गया, डिजीनेस आने लग गया, मतलब चक्कर आने लग गया, कभी कभार किसी को उल्टी होने लगती है, कुछ लोगों में नाक से खून बहने लग जाते हैं, तो ये कुछ साइलेंट चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट रूप से बता सकते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा हो. लेकिन हर केस में ये जरूरी नहीं है.
1: डॉक्टर साहब, आज की तारीख में जब हम रोजगार प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की बात करते हैं तो ऐसे में युवाओं को कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक फिटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए उन्हें दौड़ भी लगानी पड़ती है, तैयारी भी करनी पड़ती है. तो ऐसे युवाओं के लिए भी क्या इस तरह का कोई खतरा रक्तचाप से संबंधित बना होता है?
0: हाँ, अगर वो उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो निश्चित रूप से उसको ध्यान देना पड़ेगा. और दूसरी चीज़ें, हमारा जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर किसी भी जॉब के लिए, उसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन करते रहें. और उस जब प्रिपरेशन में अपन जब जाते हैं तो हमें अपने को अपने बॉडी का जनरल चेकअप तो कराते ही रहना चाहिए कि मेरा बॉडी कैसे. अब जैसे किसी को बोला कि 10 किलोमीटर दौड़ने का है, अब आप कल एग्ज़ाम दिए और परसों आप इंटरव्यू में 10 किलोमीटर दौड़ने के जा रहे हैं, तो ये बॉडी के लिए तो सूटेबल है ही नहीं है. तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बीच बीच में हमें शरीर का जांच भी करा लेना उतना ही ज़रूरी है, ये जानना कि हमारी बॉडी में क्षमता कितनी है. इसलिए बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे जो ज़्यादा दिन तक प्रैक्टिस नहीं किए रहते और अचानक एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिजिकल एग्जॉशन हो जाता है, सिस्टम उनके कोलैप्स होने लगते हैं.
1: अब अगर हम एक दूसरे पक्ष की बात करें डॉक्टर साहब, और वो है दुर्व्यसन. बहुत से युवाओं को इसकी लत लग जाती है, कुछ लोग धूम्रपान की लत में पड़ जाते हैं या अन्य तरह का नशा करने लगते हैं, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए किसी चीज़ का सेवन करें, इसका हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?
0: जितने भी प्रकार के स्टिमुलेंट है हमारे शरीर में वो ब्लड प्रेशर ही बढ़ाता है. इसलिए धूम्रपान का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे ब्लड प्रेशर से. और धूम्रपान ही नहीं, अभी जो लत है तंबाकू खाने की बहुत ज़्यादा हो गई, वो भी हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है. तो मैं युवाओं के लिए यही कहूँगा कि हमेशा फिट रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए हमें इस तरह के लत से दूर रहना पड़ेगा. हमें ये शुरू में लगता है कि स्टिमुलेशन मिल गया, मुझे अच्छा लग गया, बट वो आपकी बॉडी को ख़त्म कर रहा है, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है. लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही नुकसान करेगा. और जिस तरह से भी ट्रेंड चल रहे हैं, बहुत अर्ली एज में स्ट्रोक हो जाते हैं, उसे हमें ऑपरेट भी करना पड़ जा रहा है. तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप धूम्रपान से, तम्बाकू

0: उसमें वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, जब अपन बहुत देर तक सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें हमारा दिमाग फटीग हो जाता है, हमारी याददाश्त कम होने लगती है, हमें कुछ करने का मन नहीं रहता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें, जैसे अगर चिड़चिड़ापन आ गया किसी कारण से, हम फटीग हैं, आप कोई ज़रूरी काम भी नहीं करके अपन रिएक्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शरीर में इफेक्ट आएगा। इसलिए सोशल मीडिया को एक हमारा लाइफ का एडजुवेंट के रूप में यूज़ करें, ना कि उसमें आप पूरा 100% इन्वॉल्व हो गए और 3-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं टाइम। आपका कैरियर भी जाएगा, स्वास्थ्य भी जाएगा, रिएक्शन भी जाएगा और ब्रेन भी जाएगा।
1: अब हम रक्तचाप के जो दुष्परिणाम होते हैं या इसका जो गंभीर परिणाम सामने आता है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो जिनको रक्तचाप की समस्या होती है उनको रक्तचाप के किस गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ता है?
0: देखिए, नॉर्मल रक्तचाप बोला जाता है 130 से कम हो, और इधर ये सिस्टोलिक प्रेशर है, और डायस्टोलिक जो होता है 80 से कम हो। जब अपन 80 से 90 के बीच डायस्टोलिक होता है या सिस्टोलिक 130 से 140 के बीच होता है, तो स्टेज वन ब्लड प्रेशर का बोला जाता है, उसके ऊपर को फिर स्टेज टू में चले जाते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है हमारा, तो उससे क्या है कि हमारी जो धमनियाँ हैं, आर्टरीज हैं, उसमें प्रेशर आता है। दूसरी चीज़ें, ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, धूम्रपान करने वाले हैं और नशे की लत है, जिन्हें खान पान का कंट्रोल नहीं है, तो उनकी धमनियों में वसा का जमाव होने लगता है। तो रक्तचाप बढ़ने के कारण दो चीज़ें हो सकती है, एक तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, उसमें क्या होता है कि धमनियाँ बंद हो जाती है, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें नस फट जाती है। तो दोनों केस में मरीज को परमानेंट ब्रेन डैमेज होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो।
1: डॉक्टर साहब, अगर किसी को पहली बार ये पता चलता है कि उनका रक्तचाप अनियंत्रित है, तो क्या उनकी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं?
0: हाँ, उनकी दवाइयाँ तुरंत शुरू हो जाएगी। लाइफ स्टाइल भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, खान पान को भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
1: तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये क्या थोड़े समय के लिए ली जाती हैं या लंबे समय तक चलाना पड़ता है?
0: नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर, जिसको बोला हाइपरटेंशन बोला जाता है, उस केसेस में आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। और दवाई के लिए यही बोलूँगा मैं कि उसमें एक बार चालू हुआ तो दवाई फिर आप हमेशा खाते रहिए और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहिए उसको।
1: कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि जिनको रक्तचाप की समस्या होती है वो उसे नज़रअंदाज कर बैठते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग कुछ दिन दवाइयाँ खाते हैं फिर बंद कर देते हैं, चेकअप भी नहीं करवाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ब्लड प्रेशर की जो गोली है वो टाइम से खाइए, छोड़िए मत। अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक बम की तरह है, वो बढ़ेगा, कब नस को फोड़ेगा और कब आप कोमा में जाओगे या पैरालिसिस परमानेंट हो जाएगा, आपको पता नहीं है। तो जो 200-400 रुपए की जो दवाइयां हैं वो हमारे जान बचाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर छोड़ देते हैं तो फिर आप एक बार पैरालिसिस हो गया तो शायद जीवन में आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए ब्लड प्रेशर वाले से हमेशा यही बोलता हूँ मैं कि गोली का टाइम फिक्स रखिए, मुझे 9 बजे खाना है तो 9 बजे खाइए, चाहे आप खाना खाए हो या खाना नहीं खाए हो, या जैसे कि टूर में जा रहे हो, सो रहे हो ट्रेन में, तो उठो उस समय खाओ फिर सो जाओ। इसलिए ब्लड प्रेशर की गोली हमेशा फिक्स टाइम में खाना चाहिए, उसको हमारी दिनचर्या से कोई रिलेटेड नहीं है। कुछ ब्लड प्रेशर की गोली एक्सेप्शनल है, जिसको बोला जाता है कि खाना के साथ खाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपको खाना लेट हो रहा है तो उसको मिस कर दो, आप खा लीजिए, उससे ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम रक्तचाप की वजह से होने वाले पक्षाघात की बात करें तो उसमें अभी युवाओं की क्या स्थिति?
0: आज से 10-15 साल पहले युवाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अभी अभी पिछले 5-6 सालों से युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर एक, जो आपने कहा कि दवाई खाते नहीं है ठीक से, इग्नोर करते हैं, इग्नोर ही नहीं करते, अपनी लाइफ स्टाइल को भी ख़राब रखते हैं और खाने के स्टैंडर्ड भी बहुत ही ख़राब होता है। और पक्षाघात जब हो जाता है तो फिर वो परमानेंट लॉस है हमेशा के लिए, फिर आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, जीवन भर आपको फिजियोथेरेपी कराने पड़ेंगे, जीवन भर एक साइड जो वीकनेस है उसको लेके चलना पड़ेगा। इसलिए आप इसको कभी भी लाइटली मत लीजिए और लाइफ स्टाइल को ध्यान दीजिए, जीवन जीने के लिए है और

0: और उसमें इम्पोर्टेंट है हमारा कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ हैं तभी तक हमारे लिए सब चीज है, नहीं तो दुनिया का कोई महत्व ही नहीं है।
1: अंत में हमारे सभी युवाओं के लिए आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आपके पास तो बहुत से युवा भी आते हैं रक्तचाप की समस्या को लेकर, पक्षाघात की समस्या वाले भी युवा आते हैं, तो हमारे सभी युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं युवाओं के लिए यही कहूंगा कि जीवन को प्लानिंग के रूप में लीजिए कि मुझे क्या करना है, डिसाइड करिए, उसके अनुसार आप अपने शरीर को फिट करिए, नंबर एक। नंबर दो, आपका खान पान और जो तरीका है, हमारे जो पुराने तरीके हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बोला है कि इतने बजे सोइए, ऐसा रिएक्ट करिए, भोजन ऐसा होने तरीका होता है, उस तरीके से रहेंगे तो सब साइंटिफिक है, वो हमारे पुराने तरीके साइंटिफिक हैं। हम उस तरह से अगर अपना जीवनचर्या को बना कर रखेंगे, रूटीन को बना कर रखेंगे, तो शायद अपन ब्लड प्रेशर से ही बच सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी मील्स, साउंड स्लीप, स्ट्रेस फ्री रिएक्शन टू अवर सराउंडिंग एंड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, वट एवर कमिंग इन द लाइफ वी शुड प्रिपेयर टू फेस नॉर्मली विदाउट स्ट्रेस। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दवाइयाँ रेगुलर खाइए, दवाइयों का टाइम फिक्स रखिए, उसको आपकी दिनचर्या से मत जोड़िए आप, और रेगुलर ब्लड प्रेशर दिखाते रहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: डॉक्टर एस एन मडरिया जी, आज आपने रक्तचाप और पक्षाघात से संबंधित समस्या और समाधान के बारे में हमारे युवा साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, क्रम सेहत में आज का विषय था युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान, जिसमें हमने सुनी डॉक्टर एस एन मडरिया से दीपक हटवार की भेंट वार्ता।
3: और दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिंदगी के बारे में। जिंदगी के हर सफर में मन एक साथी खोजता है, और संगीत से अच्छा साथी भला कौन हो सकता है।
2: और संगीत कभी हमारी खुशियों में शामिल हो जाता है तो कभी हमारे कठिन पलों में हौसला बनकर साथ खड़ा रहता है।
3: संगीत की यही खूबसूरती उसे हर उम्र और हर मन का साथी बना देती है। चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना रहा हो, अपनी पसंदीदा गीतों के साथ बिताए गए कुछ पल मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं।
2: तो आइए साथियों, सुरों और एहसासों से सजे इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब समय है क्रम अपनी पसंद का, और पेश करते हैं इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना फिल्म खट्टा मीठा का ये गीत, जिसमें स्वर थे के और सुनिधि चौहान के। इसे लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की भरदा मगरलोड से देवनारायण भुनेश्वरी टामिनी साहू, पुराना फिंगेश्वर से प्रेम कुमार सोनिका लक्ष्य साहू, भोरिंग महासमुंद से नीलकमल वत्सला नित्या साहू, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप और अनुराग कश्यप, कबीर चौक शीतला मंदिर रहिवारा दुर्ग से डबल कुमार डब्बू धीवर, सतीन हेमराज बब्बू धीवर,
0: सिग्मा से लवकुश सेन, प्रहलाद आदित्य प्रकाश सेन की।
1: साथियों, मन की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। कभी वो बीते हुए पलों में खो जाता है तो कभी आने वाले कल के सपने सजाने लगता है।
0: कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन किसी अनजानी तलाश में निकल पड़ता है, जैसे उसे किसी ऐसी खुशी की खोज हो जो अभी तक मिली न हो।
1: जिंदगी की भागदौड़ में हम सबके भीतर भी एक ऐसा मन बसता है जो कुछ पल सुकून के, कुछ पल अपने लिए और कुछ पल उन ख्वाबों के लिए बिताना चाहता है जिन्हें हम अक्सर रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में पीछे छोड़ देते हैं।
0: अगला गीत इसी चंचल और खोजी मन की कहानी कहता है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

0: साथियों, फिल्म चमेली का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में। इसे लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया था संदेश शांडिल्य ने।
1: और दोस्तों, पसंद थी इन श्रोता साथियों की शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा, रंगीनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेमतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, विजेंद्र ब्रजकांत सारथी,
0: नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव।

0: जितेंद्र यादव, योगेश यादव, महामाया पारा, दरचुआ से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू।
1: दोस्तों, आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी मन बिना किसी वजह ही खुश हो जाता है। हर तरफ एक नई सी ताजगी और हर पल कुछ खास सा लगने लगता है।
0: ये तो तुमने सही कहा श्रिया, और इन्हीं एहसासों को जब संगीत का साथ मिल जाए तो हर लम्हा और भी यादगार बन जाता है।
1: हमारी अगली प्रस्तुति भी कुछ ऐसी ही खुशियों और दिल के खूबसूरत जज्बातों को अपने सुरों में समेटे हुए हैं।
0: तो साथियों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म जोधा अकबर का प्यारा सा गीत, जिसे स्वर दिया था जावेद अली ने, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत दिया था एआर रहमान ने।
1: और पसंद की थी इन श्रोता साथियों ने शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, सिर्री गातापार से कुमारी लवण्या साहू, कुमारी उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू, प्रभु राम साहू, सिर्री गातापार से ही श्रीमती धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा साहू, श्रीमती बिंदेश्वरी साहू, नागेश्वरी साहू, श्रीमती चमेली साहू, भूमिका साहू, कुमारी मोनिका साहू, कुमारी पूनम साहू।
0: डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, करहीभधर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा लोचन विद्यार्थी, दीपेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीणा सोनवानी, धरसीवा से छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव की।
1: तो साथियों यहीं तक था क्रम अपनी पसंद, और जाते जाते आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम होंगे छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। तो इसी के साथ साथियों बरसात का मौसम आ गया, कृषि है ना, तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, सूखे कपड़े पहनिए और हमें दीजिए युवाणी से इजाज़त। स्वीकार करिए मेरा सुयश कुमार साहू और
0: मेरा श्रिया चक्रवर्ती का
1: प्यार भरा नमस्कार।

0: युववाणी युवा श्रोताओं का ये दैनिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत

0: अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
2: कुछ यादें अतीत की।
3: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
2: कुछ बातें वर्तमान की।
4: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
2: कुछ सपने भविष्य के।
5: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
2: कुछ किस्से अनकहे।
6: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
2: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होके लड़े के आह्वान करें। मुख्यमंत्री ह आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करें और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होके लड़े के आह्वान करिन हैं। उमन किहिन के मादक पदार्थ के कारोबार तेज के सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हित और युवा मन के भविष्य पर खतरा है। उमन आध्यात्मिक नेता युवा और महिला मन ले ए अभियान में मिलके भाग ले के अपील करिन हैं। श्री शाह ए बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेटर सेंटर यानी NCORD के 10वां शीर्ष स्तरीय बैठकाला संबोधित करत किहिन। गृहमंत्री हकीन के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हा मादक पदार्थ ले जुड़े अपराध के जानकारी बेरा मा साझा करे बर कई ठिन ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे हे। ओमन जम्मू राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मनला ए पोर्टल मा नशा

0: ले जुड़े मामला के जानकारी तय समय सीमा के अंदर अपलोड करे बर किहिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगो के विमोचन करें। ए मौका में बच्छर 2021 के आवास मेला में मकान बुक करैया हितग्राही मनला लकी ड्रा के माध्यम ले पुरस्कार माटे गिस। ए मौका में मुख्यमंत्री हा लोगो तैयार करने वाला अंशुल कश्यप ला घलो प्रतियोगिता के पुरस्कार राशि के रूप में 2.5 लाख रूपया के चेक दिन। मुख्यमंत्री हा उम्मीद जताइन कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में घलो महत्वपूर्ण भूमिका निभाही जेखर ले प्रदेश के विकास ल नवा गति मिलही। ओमन बताइन के पाछू 2 बच्छर में मंडल हा लगभग 7388 संपत्ति के विक्रय करके 1532 करोड़ रूपया के राजस्व अर्जित करी से। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है बताइन कि अब कोनो भी नवा आवासीय परियोजना के निर्माण तभी शुरू होगी जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाही जेखर ले अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम ले बाँचे जा सकी। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव है बताइन कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप ले व्यावहारिक परियोजना ऊपर विशेष जोर दे जाही। प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर परिवहन विभाग जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दे है। परिवहन सचिव है बस संचालक मल्ला 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाला बस में उपकरण लगाए और बंद उपकरण मल्ला चालू करे के निर्देश दिन है। नियम के पालन नहीं करैया वाला संचालक मन ऊपर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करे जाही। केंद्र सरकार है औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ता मल्ला बड़का राहत देवत गैर घरेलू पैक्ड LPG के आपूर्ति में जम्मू क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दे है। ऐसन में अब पश्चिम एशिया संकट ले पहली के जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दे गए है। ये बहाली हाले में LPG आपूर्ति के स्थिति में होवत सुधार ल देखत करे गए है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है युवा मन ला आह्वान करीन है कि ओमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नवा तकनीक ले डरे के बजाय ओला अपन भविष्य के निर्माण के सबले बड़का अवसर माने। श्री चौधरी है ये बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज डहार ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौती और भविष्य के प्रभाव विषय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में किहिन। उमन किहिन कि आज पूरा दुनिया तेजी ले ज्ञान तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़त है। एकरे सेती युवा मनला बेरा रहत तकनीकी परिवर्तन ला समझ के खुद ला ओखर अनुरूप तैयार करना होही। उमन किहिन कि जौन AI ला अपना ही उही भविष्य के अगुवाई करही। श्री चौधरी हा युवा मनले आग्रह करीन कि उमन केवल नौकरी ढूंढे तक सीमित झन रहें बल्कि नवाचार और उद्यमिता के दिशा में घलो आगू बढ़ें। संग्रा विश्व स्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनी बनाए के लक्ष्य रखें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कोती। सरकार हा पासपोर्ट आवेदन शुल्क मा बढ़ोतरी कर दे है। आवेदक मनला नवा पासपोर्ट या नवीनीकरण करे बर अब 2500 रुपया शुल्क देना होही। नवा दर 1 जुलाई ले लागू होही। नवा शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाला नवा पासपोर्ट या पासपोर्ट ला फेर जारी करे के लागत 5000 रुपया होही। पासपोर्ट के दूसरा श्रेणी में घलो शुल्क में बढ़ोतरी करे गए है। प्रदेश ले माओवाद के समस्या सिराय के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादी मन कोती ले लुकाए गए जीनीस के बरामदगी में लगे हुए है। यही कड़ी में नारायणपुर जिला में टेकला के जंगल ले इंसास SLR 303 राइफल समेत बड़का मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक जीनीस बरामद करे गए है। एकर अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी ले घलो माओवादी कोती ले लुकाए गए 24 लाख रुपया नगद राशि बरामद करे गए है। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधर ही एक

0: लैले लागू होवैया वीबी जीरामजी योजना ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एका प्रसारण काली 27 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहरले एफएम और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी बेमेतरा जिला के थान कमरिया थाना के प्रधान आरक्षक अजय लहरेला 15,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। एसीबी के टीम आरोपी ले पूछताछ करके मामला के जांच में लगे है। उन्हें एसीबी के टीम बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लालपुर हल्का के पटवारी लघलो 25,000 रुपया रिश्वत लेवत गिरफ्तार करे है। पटवारी ऊपर नक्शा बटांकन पर रिश्वत लेके आरोप है। आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने जगह में मोहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहर्रम में संदेश जारी करके हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के श्रोता करीन है। उमन किहिन कि हजरत इमाम हुसैन के बलिदान सच और न्याय के रद्दा में अटिक रहे के प्रेरणा देते। मोहर्रम के मौका में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ठिन शहर में ताजिया निकाले जाते। रायपुर के करबला में घलो हजरत हुसैन के कुर्बानी ला सुरता करत आज रतिहा मजलिस यानी धार्मिक बैठका के आयोजन करे जाही। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार अवैया 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सा में आगू बढ़े पर अनुकूल परिस्थिति बने हुए है। उन्हें काली 27 जून ले राज्य में मानसून के गतिविधि बढ़े के संभावना है। मौसम विभाग अवैया 7 दिन तक प्रदेश के कुछ एक इलाका मन में गाज गिरे के चेतावनी घलो दे है। यही बीच बलरामपुर जिला के कंदरे गांव में गाज के चपेट में आए ले 2 युवक के मौत हो गए। बरसा ले बचे खातिर ये युवक मन रुख के नीचे खड़े रहिन। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग प्रदेश के आने आने नगरीय निकाय पर एल्डरमैन के नियुक्ति करे है। विभाग को तिले रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिला के 62 नगरीय निकाय में 252 एल्डरमैन नियुक्त करे गए है। नगरीय निकाय में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में काम करते। उमन निकाय के बैठका में भाग लेके स्थानीय समस्या और विकास कार्य ऊपर सुझाव देते। अब थोरकुन समाचार सार में। शक्ति जिला के जोंगरा गांव में आज 2 अज्ञात मनखे मन एक युवती ला गोली मार दीन जेखर ले ओखर मौत हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गिन। पुलिस मामला के जांच शुरू कर दे है। बताया जाते है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल में पहुंचे रहीन और पता पूछे के बहाना युवती ऊपर हमला कर दिस। सुशासन तिहार के दौरान मिले शिकायत ऊपर कार्रवाई करत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर पटवारी बद्री प्रसाद साहू निलंबित कर दे है। धमतरी जिला के मगलोर थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तरिया में नहाए के दौरान डूबे ले 2 नोनी के मौत हो गए। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र डहरले काली 27 जून के अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के आह्वान करीन। मुख्यमंत्री आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करीन और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बस जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमंत्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादकद्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रियसुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राममन्दिरदानराशिस्तेयप्रकरणे 8 जनाः निगडिताः। पैक्सिलिका सन्धौ कृत्रिमबुद्धिमत्ता आपूर्तिशृङ्खलायै भारतेन सह 34 देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मोहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु US ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः।

0: विशदीकृत्य गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसङ्घर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभाम् अभिसम्बोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह अवोचत यत् चतुरोत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26,00,000 किलोग्राममितं संश्लेषितमादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्यापेक्षया 14,00,000 26,00,000 गृहीतानि संश्लेषितमादकद्रव्याणि 18,11,000,000 किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादकद्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अङ्कैः ज्ञायते। मादकद्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स् कण्ट्रोल् ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्याणाम् अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचितादानप्रदानार्थम् अनेकानि आन्लैन् पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशामुक्त भारत अभियानं जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादकद्रव्यमुक्त भारत निर्माणस्य महत्वविषये सामाजिक न्याय सशक्तीकरण राज्यमन्त्रिणः बी.एल्.वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तरप्रदेश आरक्षकेण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि स्तेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च स्तेयसम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखमागतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य SIT दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिकाशिखरसम्मेलने भारतेन सह अन्यैः 34 देशैः कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृङ्खलायाः निर्माणार्थम् अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिकविषयाणाम् अमेरिका उपसचिवः जैक हेल्बर्गः अवोचत् यत्

0: एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेल वर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयस्य सचिवेन एस कृष्णन महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्ण श्रद्धया गांभीर्येण च आचर्यते। अयं दिवसः पैगंबर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बला युद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते संदेशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढतया स्थातुं अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रिय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला, महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य मासस्य 24-25 दिनांकयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ जयशंकरः द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेश मंत्रिणा चो ह्यून इत्यनेन सह विस्तृतां उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम अनेक प्रमुखाणां क्षेत्राणां सहयोगस्य समीक्षा कृता, यत्र व्यापार निवेशौ, वित्तीय सहयोगः, रक्षा सुरक्षा, प्रविधयः, नवाचाराः, संस्कृतिः, शिक्षा तथा च परस्पर जनसंपर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतं तथा च बहुपक्षीय मंचेषु सहकार्यं वर्धयितुं उपायानां विषये मंत्रणा कृता। विदेश मंत्रालयानुसारं द्वाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया संबंधेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतं। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक संधिं इतोपि अग्रे नेतुं अविरतं संपर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतं 1:17.24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। आप हमारा पता जरूर लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
3: तो दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं एक कहानी की तरफ, जो कि है एक लड़की के बारे में। वो लड़की गौरी, जो बचपन से अपने सपने संजोती है, शादी के सपने। तो आइए हम जानते हैं उसके सपनों की हकीकत के बारे में। शादी, हाँ दोस्तों, शादी लड़की का सपना होता है। वो बचपन से ही अपने राजकुमार के सपने सजाती है। छोटी उम्र

वह गुड्डे गुड़ियों की शादी कराती है, ये सपना हकीकत में देखने लगती। कहते हैं हर लड़की का एक नहीं बल्कि दो परिवार होता है, पहला जहाँ वो पैदा होती है और दूसरा जहाँ उसकी शादी होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की गौरी की कहानी है जो शादी के सपने सजा रही थी। पढ़ाई लिखाई खत्म होने पर गौरी के माँ बाप उसके लिए एक लड़की की तलाश में लग गए, वो लड़का जो उसका हमसफर बन सके। गौरी

पढ़ाई लिखाई खत्म होने पर गौरी के माँ बाप उसके लिए एक लड़की की तलाश में लग गए। वो लड़का जो उसका हमसफर बन सके। गौरी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। आइए सुनते हैं

0: बेटा गौरी, अब देख, जब हम तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, पर तू भी बता दे तुझे कैसा लड़का चाहिए।
1: हाँ बेटा देख, हम तो चाहते हैं लड़का खानदानी हो, पढ़ा लिखा हो और घर में इकलौता हो, ताकि तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो, तू रानी बन के रहे बेटा, रानी।
2: नहीं नहीं पिताजी, मुझे अमीरी गरीबी नहीं देखना, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे अपनी कमाई में भी खुश रखे और हम छोटे से घर में एक साथ अपने सुख दुख बांट सके, और कुछ नहीं चाहिए।
0: अरे तू बावली हो गई है क्या गौरी, ये सब तो सिनेमा की बातें हैं जो बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती हैं। आज के जमाने में पैसा ही खुशियों को खरीदता है। अब बस हमें जैसा लड़का ढूंढना है, हम तेरे लिए ढूंढ रहे हैं, तू चिंता मत कर।
3: ये सच है कि हर माता पिता अपनी बेटी के लिए एक आलीशान ससुराल चाहते हैं, जहां वो रानी बन के रहे। पर क्या पैसा प्यार से ज्यादा कीमती होता है?
2: अरे अंकल आप, नमस्ते अंकल, आइए बैठिए, मैं पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। पिताजी।
1: आया बेटे। अरे रमेश, कैसे आना हुआ तुम्हारा, बताओ कोई मेरे लायक काम है तो आओ बैठो।
4: अरे भाई साहब, मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एक लड़के के बारे में बता सकता हूँ?
1: हाँ, मगर हम ऐसे लड़के की तलाश में हैं जो घर में इकलौता रहे और सरकारी नौकरी भी करता हो, बाकी हमारी कोई और इच्छा नहीं है।
4: हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, बिल्कुल यही खूबियां हैं, अगर आप कहें तो मिला दूं उससे।
3: और रमेश गौरी के पिता से उस लड़के को और उसके परिवार को मिलवाता है। गौरी और उस लड़के दिनेश की शादी हफ्ते भर में ही हो जाती है, शादी के कुछ ही दिनों बाद।
5: अरे गौरी, तुम इतनी रात तक क्यों जग रही हो? देखो मैं तो अपने दफ्तर से देर से आता हूँ, तुम मेरा इंतजार मत किया करो, खाना बना के खा के सो जाया करो।
3: शादी के बाद जो प्यार एक लड़की अपने पति से चाहती है, वो प्यार गौरी को नहीं मिल पाता, और थोड़े समय बाद तो दिनेश पूरे पूरे दिन घर नहीं आता था, और रात को देर से शराब पीकर घर में घुसता था।
2: आप आज शराब पीकर आए हैं? आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी चिंता होती है, आप देर से आते हैं और आज तो आपने शराब भी पी ली, आप शराब मत पिया कीजिए।
5: तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? रुक, मैं तुझे बताता हूँ।
2: अरे मत मारो मुझे, मेरे बाल, प्लीज मत मारो।
3: दिनेश गौरी को नशे में खूब मारता है और गौरी रोती है, चिल्लाती है, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। सुबह उठकर गौरी दिनेश की माता को रात के बारे में बताती है।
0: अच्छा बहू, तू मुझे ये सब बता रही है, अगर ये समय तू काम में लगाती तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। मुझे तो पता है मेरे बेटे का शौक है पीना, और उससे तू जबान लड़ाएगी तो गुस्सा ही करेगा ना, हाथ ही उठाएगा ना, बड़ी भोली बनती फिरती है घर में।
3: गौरी बहुत निराश हो जाती है, और ये सोचकर कि उसके माता पिता भी परेशान होंगे, वो उन्हें भी नहीं बताती। पर हाँ, दिनेश अब अपनी हदों से आगे बढ़ गया था, वो रोज देर रात से शराब पीकर आता और गौरी को जानवरों की तरह मारता था। अब तो जैसे गौरी टूट ही चुकी थी। समय जरूर बीत गया था, पर हाँ, परिस्थितियां अभी भी बदली नहीं थी। एक दिन गौरी की पुरानी सहेली उसे बाजार में मिलती है।
6: अरे गौरी, तू कैसी है?
2: अरे प्रिया, मैं अच्छी हूँ, तू सुना?
6: मैं भी अच्छी हूँ, मुझे माफ करना।

0: यार, तेरी शादी में नहीं आ पाई, कहीं बाहर गई हुई थी परीक्षा देने को।
1: अच्छा,
0: पर तू अब ये बता, जीजू कैसे हैं?
1: हाँ ठीक है वो।
0: और सुना है तेरा नया ससुराल, वो तो बहुत ही बड़ा है।
1: हाँ
0: काफी पैसे वाले लोग लगते हैं।
1: हाँ वो तो है, लेकिन
0: तो तेरी शादी काफी अमीर खानदान में हुई है।
1: तू वो सब छोड़, लेकिन मैं समझ सकती हूँ यार, तू क्यों नहीं आई होगी, इसके पीछे जरूरी कोई काम होगा। चल चल अब मैं घर जाती हूँ, मुझे बहुत काम है, अब हम कहीं और मिलेंगे।
0: अरे रुक तो सही, क्या बात है, तेरे चेहरे पे ऐसी उदासी क्यों छाई हुई है? मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ, इतनी उदास पहले तो कभी नहीं रहती थी। तू लगता है मुझसे कुछ छुपा रही है। देख मैं तेरी सहेली हूँ, मैं तेरे को बचपन से जानती हूँ, हंसते रहने वाली लड़की कभी उदास चेहरे में ऐसे अच्छी नहीं लगती। बता क्या बात है।
2: और गौरी रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियों का बयान प्रिया को करती है।
0: देख गौरी, तू रो मत और कमजोर मत पड़, क्योंकि लड़की व पत्नी को मारना शादी के बाद कानूनी जुर्म है। हम इसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने हिम्मत रखी और तूने मुझे बताया, वरना आजकल की लड़कियां इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि ऐसी परिस्थितियों को देखकर अपनी जान दे देती हैं। पर क्या ये एक समस्या का हल है? नहीं, समस्याओं से लड़ना ही हिम्मत का काम होता है, ना कि उससे डरकर जान दे देना।
2: गौरी को प्रिया की बातें सुनकर और हिम्मत मिलती है और वो दोनों उसी समय दिनेश के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। गौरी छुपके से अपना सामान लेके अपने ससुराल से निकल जाती है और अपने माता पिता के पास पहुंचती है।
3: बेटी तू यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना?
2: तभी गौरी सारी बातें और हुई घटना के बारे में अपने माता पिता को बताती है।
4: बेटी हमें माफ कर दे, हमने अपनी बच्ची के जीवन को बर्बाद कर दिया। काश हम पैसे और शान शौकत नहीं, पर एक प्यार करने वाला लड़का अगर अपनी बेटी के लिए ढूंढते जैसा उसे चाहिए था। तूने हमारी वजह से कितना सहा, फिर भी यह सोचकर कि हम परेशान होंगे, हमें पता तक लगने नहीं दिया। बेटा आज तूने बता दिया कि लड़कियों में कितनी सहन शक्ति होती है और वो अपनी परिस्थितियों को अंत तक बदलने की कोशिश करती है और आखिर में अपनी बहादुरी से निर्णय लेती है।
2: हाँ ये बिल्कुल सही है कि लड़कियों में सहन शक्ति व परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत होती है, पर यह भी सच है कि हर लड़की गौरी नहीं होती। पर बहुत से जीवन है जो रेल की पटरी पर लेटकर, आग में झुलसकर और पंखे पर लटककर अपने आप को खत्म कर देते हैं। पर क्या यही समस्याओं से बचने का हल है? नहीं, हम भी इतनी हिम्मत रखें कि हमारी बहादुरी और हमारा आत्मविश्वास ही हमें हमारी परिस्थितियों का हल बताए, ना कि जीवन का अंत। ये कहानी हर माता पिता के लिए एक प्रेरणा है कि हमारी बेटियां कीमती हैं, उन्हें पैसों की कीमत नहीं परंतु कीमती हाथों में दें। और हर लड़की अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि परिस्थितियों से भागना ही उसका हल नहीं होता। अगर गौरी भी ऐसा करती तो शायद उसे बहादुर लड़की हम नहीं कहते, जिसने परिस्थितियों से भागकर नहीं पर उससे लड़कर उसका हल निकालना चाहा।
5: दोस्तों ऐसी ही कई गौरियां हमारे समाज में यहां वहां विद्यमान हैं, जो ऐसी कई परेशानियों से जूझ रही हैं। अगर आपके पास या आपके नजदीक में कोई अगर आपको ऐसा घटना मिले तो दोस्तों आप उसकी जिम्मेदारी लें और उसके उत्थान के लिए आप आगे बढ़ें।
6: छोटा सा छोटी सी आशा।

0: अब श्रोताओं, समय है कि कुछ श्रोताओं के नाम आपके सामने हम रखें जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं। और फूलग्राम जिला भिवानी से कुछ लिसनर्स हैं, कुछ श्रोतागण हैं जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी हमारे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मुन्नीलाल प्रजापति, सुमित्रा देवी जी, जय भगवान प्रजापति जी, मट्रो रणबीर, रणबीर प्रजापति जी, गुड्डी संतोष जी, शंकर मास्टर और अनुप। ये हमारे श्रोता हैं जो फुलपुर ग्राम जिला भिवानी से हैं, हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका नाम प्रसारित हो, या फिर आप कविता या फिर कहानी लिखने का शौक रखते हैं, तो हमें जरूर बताएं। तो आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद।
1: छोटी सी आशा,
2: मेरे प्रियो, अगर आपको आज के विषय में हमसे कुछ बातचीत करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है
0: 9311504004। जी हाँ, 9311504004। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 मीटर बैंड पर। जी हाँ, 545.45 मीटर बैंड पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: हमारी बेड़ियां, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़।

0: लगेगी।
1: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी हर वर्ग के बीच जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी।
6: यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और महिलाओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
7: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
5: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस तरह अब पश्चिम एशिया संकट से पहले जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। यह बहाली हाल ही में LPG आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि कर दिया है। आवेदकों को नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। नई शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में मकान बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को भी प्रतियोगिता की राशि के रूप में ₹2,50,000 का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2 वर्षों में मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,500

732 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सके। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के कई विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग की ओर से रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। प्रदेश में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिनों के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियम का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अवसर माने। श्री चौधरी ने यह बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौतियां और भविष्य का प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाने के प्रधान आरक्षक अजय लहरे को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ACB की टीम ने बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लालपुर हरका पटवारी को भी 25,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी पर नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 1 जुलाई से लागू होने वाले VVG योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 27 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश से माओवाद की समस्या खत्म होने के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादियों द्वारा छिपाई गई सामग्रियों की बरामदगी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के टेकला के जंगलों से इंसास SLR 303 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी से भी माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई 24 लाख रुपये नकद राशि बरामद की गई है। आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर संदेश जारी कर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में ताजिए निकाले जा रहे हैं। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए आज रात मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं कल 27 जून से राज्य में मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इस बीच बलरामपुर जिले के कंदरी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए ये युवक पेड़ के नीचे खड़े थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर की ओर से कल जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। सक्ती जिले के जोंगरा गांव में आज 2 अज्ञात लोगों ने एक युवती को गोली मार दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे और पता पूछने के बहाने

0: नियुक्ति पर हमला कर दिया। सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर ने पटवारी बद्री प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। जांजगीर के प्रकाश इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरकर एक ठेका मजदूर की मौत हो गई और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 27 जून को अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी कंपनियों द्वारा करीब 2000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए फिल्म सुर से। गीत लिखा है निदा फाजली ने, संगीत MM करीम का और आवाज है महालक्ष्मी अय्यर की।

श्रोताओं, सुर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यार किया नहीं जाता का ये गीत, जिसे लिखा है और संगीत दिया है आनंदराज आनंद ने, आवाज दी है सोनू निगम और सोनाली बाजपेयी ने।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 होने को है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम राजेश भैया।
1: राम राम पूजा और चौपाल सुनिया हमार सबो श्रोता संगवारी मल्ला हमार दोनों जन के
0: राम राम। भैया अब ये बछर गर्मी है बनेच हलाकान करिस ना।
1: सही कहा था
0: भैया। और देखना एक एक दिन है कैसे पहाई कैसे
1: ढंग के हो गई
0: कैसे ढंग के हो गई भाई। जीव जंतु जंगली जिनावर और मन के सबोला ये पानी का गोरा रही से। कब पानी गिरा और कब ये गर्मी भागे तो इससे लागत रही से। और अब ए दे पानी गिरे चालू हो गए है और मौसम जुड़ा गए है और अब सबोला हाय जी लागी।
1: सही कहे पूजा। और पूजा गर्मी तो हर साल पर्वे करते फिर गर्मी के मात्रा माने तापमान हम बढ़ा जाते। ये साल जतका डिग्री तापमान है ओखर ले ज्यादा अवैया साल में पड़त है। और गर्मी में एक चीज देखे बर मिलते कि जेन कोती रुख राई है जंगल झाड़ी है वो डहर गर्मी थोड़ी कमती पड़ते।
0: हाँ भैया।
1: और शहर कोती गर्मी थोड़ी ज्यादा रही थे काबर की शहर में रुख राई कम रही थे और गाड़ी मोटर कारखाना घलो देखे बार मिलते शहर में तेखर से शहर में गर्मी है थोकन ज्यादा चली थी।
0: अब भैया कहन त अब ये माने जा सकते है ना कि कही सकते हैं कि गर्मी ला कम करे मा हमर जो रुख राई है हमर जो पर्यावरण है हरियर हरियर पर्यावरण है वो है बहुत महत्व राखे। अब बरसात घलोक शुरू हो गए तो हमर जो किसान भाई मन है अपन खेत के मेड़ मन मा पेड़ तो लगाबेज करी त किसान मन के संगे संग हम सब ला मिल के रुख राई लगाना है और अपन पर्यावरण ला सुधराना है जेखर ले गर्मी है ज्यादा जेखर ले ज्यादा गर्मी और बाढ़ असन समस्या ले हम बांस सकते हैं।
1: पर्यावरण सुघर ही था ऐसा समस्या देखे बार नहीं
0: मिले, नहीं मिले हाँ।
1: और पूजा पानी के संग किसानी बूता घलो शुरू हो गए। किसान भाई मन धान के खेती के संगे संग मोटा नाच माने श्रीयन साग भाजी आनी बानी के फसल के जो शुरू में बावत वावत के काम जन होते ओमा लग गए है। और पूजा अब खेती किसानी में बहुते बदलाव आ गए है। आधुनिक कृषि यंत्र उन्नत बीज आधुनिक विधि जैसन नवा माध्यम ले खेती किसानी संगवारी मन करत है।
0: भैया इसने एक विधि है पाली हाउस या इला एक ग्रीन हाउस पद्धति धको कही थे। अब पाली हाउस और ग्रीन हाउस पद्धति यह संरक्षित खेती के उन्नत तकनीक है जहाँ फसल मन ला मौसम के मार जैसे कर है भारी घाम है ज्यादा पानी कीड़ा मकोड़ा ले सुरक्षित रखें और नियंत्रित वातावरण करके यह बढ़िया उत्पादन एमा देते।
1: पूजा ग्रीन हाउस है कांच या पॉलीकार्बोनेट पैनल ले बने ज्यादा टिकाऊ और महंगी संरचना होते जेमा स्वचालित तापमान नियंत्रण के सुविधा होते। पॉली हाउस है ग्रीन हाउस के ही एक सस्ता रूप है जेमा बांस या लोहा के ढांचा में यूवी स्थिरीकृत पॉलीथीन सीट के आवरण होते। हमारे देश में पॉली हाउस है सबले ज्यादा लोकप्रिय है किसान मन संगवारी मन के बीच में। पूजा गोट बात अब करबो अभी सुनथन ये संदेश।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: राजेश भैया हम चर्चा कर रहे थे न पाली हाउस,
7: ग्रीन हाउस के।
6: हाँ, तो एमा पाली हाउस के भी प्रकार होते, ये दो प्रकार के होते। तो एमा के एक प्रकार के हम बात करन त ये है प्राकृतिक रूप ले हवादार पाली हाउस होते। एमा गर्मी और नमी ला प्राकृतिक हवा और वेंटिलेशन के माध्यम ले नियंत्रित करे जाते, ये सबले सस्ता माध्यम होते। और एकरे दूसरा प्रकार वो एक होते जिन्हा पर्यावरण नियंत्रित पाली हाउस ला कही जाते। एमा पंखा या फिर फॉगर लगा के गर्मी और नमी ला कृत्रिम रूप ले नियंत्रित करे जाते। एमा साल भर कोनो भी फसल ले जा सकते, माने आप इमिन एक ठो हो है हमारे प्राकृतिक पॉली हाउस, एक ठो कृत्रिम। तो प्राकृतिक में प्रकृति के अनुसार जो भी मौसम हुई तेकन अनुसार ले जाही, और कृत्रिम में हम साल भर ले सकते हैं।

0: अउ पूजा देखियो बे, सब कतको गाँव में किसान संगवारी मन है माध्यम ले खेती किसानी करत हे। हाँ, अउ अच्छा लाभ घलो लेवत हे। अउ पाली हाउस खेती के लाभ के गोट करन त पहली लाभ तो यही है कि कोनो भी मौसम में कोनो भी फसल के खेती कर सकते
1: करे जा सकते,
0: जेखर ले बाजार में किसान मन ला खुला खेती ले 3 से 4 गुना ज्यादा आमदनी मिलते। खुला खेती सबो किसान करते, खुला खेती मतलब ओमे जो पाली हाउस जैसे ढकाई मुदा नहीं रहे,
1: हाँ।
0: खेत धान है चाहे कोई फसल खुला छिड़ते हुई खुला खेती है।
1: और
0: पाली हाउस में खेती करते हैं तो 10 से 12 गुना ज्यादा पैदावार मिलते। अब ड्रिप है और स्प्रिंकलर के माध्यम ले पानी है खातु है ओकर बढ़िया उपयोग होते। हवा गरेर आ गए, करा पानी गिर गए, ज्यादा घाम कीड़ा मकोड़ा ये मान ले फसल के सुरक्षा होते।
1: बिल्कुल भैया। और भैया देख, पाली हाउस में ना मुख्य रूप ले जो ज्यादा मांग वाले या महंगी फसल दे रहा कह सकत हन ओकर खेती करे जाते। अब महंगी फसल में सब्जी के बात करन त पाली हाउस में लाल पीला शिमला मिर्ची जिन्हा हमला 12 महीना उपलब्ध हो जाते, यही पाली हाउस के माध्यम ले जो खेती करते तेन देते। अब चेरी है और बिना बीज वाला खीरा है, खीरा घलो 12 महीना अब उपलब्ध हो जाते हमला। इम ब्रोकली है और इमा फल की बात करन ता स्ट्रॉबेरी भी मांग बहुत है, यह सबो रिकिम ले उपयोग करे जाते। और इमे ही फूल में जरबेरा है, गुलाब है ना, और इसने बहुत अकन फूल के भी खेती करे जाते
0: जेकर मांग
1: ज्यादा
0: है ना, लगाम खर्चा आते तो ओकर वो मांग के हिसाब से संगवारी मन बोते घलो किसान मन है।
1: हाँ।
0: और ग्रीन हाउस में सबले ज्यादा बड़े टमाटर और चेरी के उत्पादन किसान संगवारी मन करते। और खीरा जल्दी बढ़े फसल आए, यह ग्रीन हाउस में और जल्दी बाढ़ते। मीठा और तीखा दोनों प्रकार के शिमला मिर्चा ग्रीन हाउस के गर्मी में बने उत्पादन देते। इसने भाटा के घलो अच्छा खेती होते, पालक रमकेलिया जैसन फसल घलो ग्रीन हाउस में बो जाते और अच्छा उत्पादन मिलते।
1: भैया देखे दे पाली हाउस लगाए में ना खर्चा ज्यादा आते, तेकर सेती भारत सरकार ह कई ठन और दूसर जो कई ठन राज्य सरकार ह ओहु मन किसान मन ला 50 से 90% तक के अनुदान या जेला हम सब्सिडी की ठन वो देते। जे किसान भाई मन पाली हाउस लगाना चाहते ओमन अपन तीर के कृषि विज्ञान केंद्र असन उद्यानिकी विभाग ले जा करके जानकारी ले सकत हे और सरकार के ये योजना मन के लाभ ले सकत हे और पाली और ग्रीन हाउस पद्धति ले खेती करके ज्यादा लाभ कमा सकत हे।
0: और पूजा आज है शुक्रवार और आज पारी होते क्रम हेलो चापाल के। क्रम हेलो चापाल मा हमार आज के विषय है बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग। ये विषय मा किसान संगवारी मन के समस्या जिज्ञासा के समाधान पर हमारे बीच विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तोरण लाल साहू, सहायक प्राध्यापक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये कार्यक्रम के संचालन करते हैं पूजा चंद्रवंशी और प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडे।
1: आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल में जम्मो श्रोता संगी मन के स्वागत है। हेलो चौपाल में आज के विषय है बरसात में लगने वाला फूल और लैंडस्केपिंग। ये विषय में किसान भाई मन के समस्या के समाधान पर हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर तोरण लाल साहू, सहायक प्राध्यापक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुरुगले। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम, स्वागत है अपन के आज के हेलो चौपाल क्रम में।
2: राम राम दीदी।
1: डॉक्टर साहब फोन आना तो शुरू हो गए है, पहली फोन ले लेते हम। हेलो चौपाल।
3: हेलो चौपाल के सुनैया संगवारी मल्ला, राम राम।
1: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: हम ग्राम सी देवरी पलारी जिला बलौदा बाजार से बोला था मैम।
1: जी भैया, तो का प्रश्न है आज आपके?
3: हमारे ये प्रश्न यही से कि हमारे जो जमीन है कन्हार है तो वहाँ कौन प्रकार के बीज जो है हमारे लगावन वर्षा ऋतु में, जानकारी विशेषज्ञ से चाहना रही से।
1: हाँ, माने कौन प्रकार के फूल के बीजा लगावन कहा था आपन? जी भैया, तो आपके प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ है।
2: बहुत सुंदर प्रश्न करी, जैसे कि आप पूछे कि आपके कन्हार भुइया हरे तो बहुत अच्छा फसल हो सकते, जैसे कि ये मौसम बारिश के मौसम में बस अब के ध्यान देना होगा कि हमला पानी मत भरे हमारे खेत में, तो पानी की निकासी के यदि अच्छा से व्यवस्था रही तो वहाँ गेंदा के फूल बहुत अच्छा से लगा सकते हैं और गेंदा के फूल के बाजार में मांग भी बहुत अच्छा है भैया। तो गेंदा के फूल लगाए पर हमला पूषा नारंगी गेंदा है, पूषा बासंती गेंदा है, अफ्रीकन डबल जैंट करके किस्म है, ये किस्म मल्ला हम लगा करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते।

0: एकर बीज जो है 1 से 1.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए मतलब 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त थे। और ओला हमन हा जो फफूंद नाशी दवाई हवे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छे से मिला करके दी लगावा तो बहुत सारा बीज जनित जो बीमारी ही ओकरो से हमन ला छुटकारा मिल जाये। तो ये करके हमन अच्छा से खेती कर सकथन।
1: ये गेंदा के फूल में सफेद सफेद कुछ फफूंद जैसे आ जाते एक बार कैसे उपचार करना चाहिए भैया?
0: बहुत अच्छा प्रश्न करे हो। देखा एक का है यदि हमन अच्छा से खेती करन तो 3 प्रकार के हमन हम उर्वरक के मुख्य रूप से उपयोग करथन जैसे कि नत्रजन है फास्फोरस है पोटास हवे। तो हमन हर का नत्रजन के ज्यादा उपयोग करे से और पोटास के बिल्कुल उपयोग नहीं करे से एकर बीमारी के समस्या कीड़ा बीमारी की समस्या ज्यादा हो जाते। तो सबसे पहले तो हमन वो चीज ला ध्यान देवन। ओकर बाद जल निकास के पर्याप्त व्यवस्था रहे एक बारे में ध्यान देवो कि पानी मत भरे। ओकर बाद दवाई के बारे में बात करबो आखिरी में कि दवाई डालन तो काला डालन। तो ओकर लिए देखा यदि हमन घर में जैसे नीम के खली के उपयोग करन लगाए के समय में और कीड़ा लग भी जावे तो नीम के तेल जो है वो 5 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से

0: देवन। ओकर बाद जल निकास के पर्याप्त व्यवस्था रहे, एकर बारे में ध्यान देवो कि पानी मत भरे। ओकर बाद दवाई के बारे में बात करबो आखिरी में कि दवाई डालन तो काला डालन। तो ओकर लिए देखाओ, यदि हमन घर में जैसे नीम के खली के उपयोग करन लगाए समय में और कीड़ा लग भी जावे, तो नीम के तेल जो है ओला 5 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि घोल बना करके छिड़काव करन तो एकर से छुटकारा मिल जाही। एकरो से यदि नहीं हो पावत तब भले ही हमारे रासायनिक विधि जावन की डाइकोफाल करके दवाई आते या जो सिस्टेमिक जो दवाई आते और दूसरा ओला उपयोग करके हम हमारे फसल ला सुरक्षित कर सकथन।
1: छत के गमला में भी लगा सकथन गेंदा के फूल।
0: बराबर ओकरे बारे में हम उनके आगे के हेरी समय कि जैसन कि आप शुरू में हमारे खेत के बारे में बात करें, ओकर बाद यदि छत के गमला में हम उनके सजाना हुआ तो वहाँ अच्छा विधि हवा कि छत के गमला के मिट्टी के बारे में बात करिए। खेत में लगाबो तब तो शुद्ध मिट्टी भर रही, लेकिन गमला में लगाना है हमला तो 1 भाग मिट्टी 1 भाग बहुत अच्छा सड़े हुए खाद और 1 भाग रेत मिला करके हम लगावन तो बहुत अच्छा लाभ मिली और फसल भी अच्छा ही। फिर देखन कि वो लगाए के तरीका के बारे में, गमला में लगा तो देथन लेकिन गमला में हम कई बार छेद करे भुला जाथन जेकर से पानी नहीं निकल पावा है। ये सब बात हम यदि ध्यान करके रखन तो बहुत अच्छा घर के छत में भी कर खेती किया जा सकता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर जानकारी दे।
0: धन्यवाद भैया।
2: अगला फोन आवा थे तिला ले लेथन। हेलो चौपाल।
3: हेलो चौपाल
2: जी। भैया कौन बोला था, कहाँ बोला था?
3: मैं लखनपुर का मुर्दा बोला था दीदी, नरीराम चंद्रवंशी
2: जी। भैया का प्रश्न है आज हमारे विशेषज्ञ ले आपके?
3: ये फूलों की खेती के बारे में कहा दीदी, आज के विषय है।
2: हाँ भैया, बरसात में कौन कौन से फूल लगाए जाए और लैंडस्केपिंग
3: दे हन बारी माँ
2: का चीज के थरा दे हो भैया?
3: गेंदा फूल के
2: जी जी।
0: चंद्रवंशी भैया कौन से किस्म लगाए हो गेंदा के थरा देते? माँ
3: बड़े वाले फूल के दे हम भैया, पीला वाले बड़े फूल फूल थे ना।
0: अच्छा अच्छा, तो कहीं बाजार से खरीदे हो कि घर एक बीज है? अरे
3: घर एक बीज रखे रहे भैया पौर के।
0: अच्छा तो पौर ले रहे हो, बाहर से ला रहे हो?
3: पौर ला रहे हो, अंते से ला रहे थे, बीजा है बड़े बड़े होते।
0: अच्छा ठीक, ओला लगाए बर ये चीज ध्यान दिया जरूर कि पानी मत भरे जब खेत में लगा होते समय, वैसन कैसे क्यारी बना के लगा हो। गोबर के खाद के अधिकतम से अधिकतम उपयोग करूँ, कम से कम 25 टन गोबर के खाद डालना चाहिए बोलता मन एक हेक्टेयर के पीछे में, एकर बारे में ध्यान दिया। और यदि संभव हो ही टपक सिंचाई विधि के द्वारा लगाऊ और ओकरे द्वारा खाद पानी दिया तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगी।
3: हाँ भैया
2: जी। भैया धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: हेलो चौपाल।
4: हेलो चौपाल
2: जी। भैया कौन बोला था, कहाँ बोला था?
4: राजेंद्र कुमार दामले गुठिया से सिरमुंडा ले।
2: जी भैया तो का प्रश्न है आज हमारे विशेषज्ञ ले?
4: तो दीदी जी आज के बहुत अच्छा विषय है और समय के अनुसार एक अच्छा विषय चुने हो आप, तो हम बता देते हैं कि लैंड इसके का चीज होते हैं और कैसे कैसे करना है एक बारे में विस्तार से बता देते।
2: जी भैया एक जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ।
0: बिल्कुल भैया, जैसे कि आप सौंदर्यीकरण जैसन की बातें से पता चला था कि हमला जमीन ला सजाना हुआ है या हमारे घर के चारों तरफ ला सजाना है मान के चलो, तो सजाए के 2 तरीका होते। एक तो हमन सीधा सीधा जमीन में लगावन और एक ठो गमला में लगावन। तो एकर लिए हमन जो 2 प्रकार के फूल भी थे, एक तो वार्षिक फूल थे जैसन की गेंदा हुआ है 4 महीना 5 महीने तक चली उसके बाद खत्म हो जाई, ऐसा टाइप से फूल में जैसे की गेंदा है, बालसम है, सिलोसिया, जिनिया, गम्फ्रीना, कास्मास, पोर्चुलाका, लिली, रेन लिली, ये फूल मन हम लगा सकथन जो न कि वार्षिक पुष्प हरे और एक सीजन में रही एक मौसम में ओकर बाद हर खत्म हो जाए ऐसा होगे। फिर ओकर बाद जो बात आते बहुवर्षी, कुछ मतलब बहुवर्षी पौधा भी लगा करके रखना चाहिए जो कि कई साल तक चलते, जैसन कि गुड़हल बोलथन, एक जोरा है, चमेली हवा, कनेर हवा, मधुमालती है, ये जम्मो फूल लगा करके हम अपन घर के चारों मोड़ा ला सजा सकथन। ये जम्मो फूल ला मन सीधा सीधा खेतों में लगा सकथन या जमीन में लगा सकथन। दूसरा जो होते कि जो भी ट्रे हवा है, गमला हवा है, एमा लगा करके हम अपन घर के चारों मोड़ा ला सजा सकथन। काहे जतके फूल दिखी उतका ज्यादा खुशी मिली, तो एकर लिए हम सब फूल लगा करके अपन घर ला सजा सकथन भैया।
4: तो सर जी अपन गमला में ज्यादा अच्छा है रही लगाना की जमीन में?
0: यदि जमीन उपलब्ध है तो जमीन में लगाना बहुत अच्छा रही, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या होता है भैया कि जमीन की उपलब्धता कम हवे। वो बात मा जो हमारे भाई बहनी मन हवे वो मन अपन घर ला सजाए बर गमला के उपयोग कर सकते, तो गमला में भी लगाए जा सकते और जमीन में भी लगाना है।
4: तो सर जी जैसे अपन फूल वूल लगाते हैं तो एकर कुछ देखभाल गलत करे लागी?
0: बराबर देखभाल करने की जरूरत है भैया, जैसे कि गमला में लगाए पहली ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जमीन में लगाथन तब तो हमारे माटी में लगाथन और गोबर खत्ता वगैरह मिलाथन, लेकिन यदि हमला गमला लगाना हुआ है तो 1 भाग मिट्टी लेवन

0: ऊपरी मिट्टी रहते तेन ला एक भाग अच्छा सड़े हुए गोबर के खाद या केचुआ खाद के बारे में बात करथन, और यदि काली मिट्टी है तो एक भाग रेत के भी जरूरत है। ये तीनों के अच्छा से मिश्रण बना करके फिर गमलक तैयारी के बारे में बात आता। गमलक तैयारी में का है कि गमलक नीचे में छेद करन और छेद ला खपरा से ऊपर से ढके रहन। ओकर कारण ये हवे कि यदि छेद ला खपरा के ऊपर से नहीं ढकबो तो ओमा मिट्टी जा करके रुक जाही और पानी जो निकले के जगह तेला बंद कर दी। पानी डालबो जरूर लेकिन उपराहा पानी है बह जाना चाहिए, तब जा करके हमार जो फसल हवे पुष्पी पौधा हवे ते मन अच्छा रही, नहीं तो फिर मरेल धर लेते। तो ये इन बात के ध्यान देना चाहिए। फिर ओकर जो पोषण के बारे में बात आते कि पोषण के लिए जैसे कि नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास हवे और जतका भी सूक्ष्म पोषक तत्व हवे ओखरो जरूरत पड़ते तो समय समय में एकरो मन के उपयोग करना चाहिए। कीड़ा बीमारी लगते तो कीड़ा बीमारी के रोकथाम करे के लिए हम नीम के खली हवे ओकर उपयोग पहली कर लेवन, या नीम के तेल ला हमन छिड़काव करबो तो एकर से कीड़ा बीमारी बहुत कम से कम लगही। इन जम्मो बात के हमला ध्यान देना चाहिए।
1: और सर जी जैसे बात आते कि अपन रेत मिलाना है तो रेत में अपन बारीक वाले रेत मिलाओ कि थोड़ा मोटा रहे रेत रहते वाला मिलाता कच्चे वाले मिलाना।
0: बराबर अच्छा प्रश्न करे। रेत के बारे में बात आते तो रेत ला काबर मिलाया जाते एक बारे में पहले सुन ले। यदि काली मिट्टी हवे तो काली मिट्टी में का होते पानी भर जाते बहुत ज्यादा और नीचे जायल नहीं धरे, नीचे कठोर हो जाते एकर कारण, तो ओकर कारण रेत ला मिलाया जाते कि जो जल निकास की व्यवस्था प्रॉपर हो तो थोड़ा गड़गड़ा ही जो रेती है वही मिलावन बारीक रेती नहीं।
1: जी सर आप जानकारी दे सर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप मतलब भी बहुत धन्यवाद।
2: अगला फोन के आवत ले हमन चर्चा कर लेथन, ये जो बरसात में जो फूल की खेती है का ये खरीफ में धान के जो खेती है तेकर विकल्प में का अच्छा साबित हो सकत है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न करे दीदी। जैसे कि धान तो हमन किसान भाई मन लगावत हवे, शासन भी चाहते है कि धान की खेती जगह में भी दूसरा खेती लगावे का कि बार बार बार बार एक ही फसल लगाए होते का कि ओकर कीड़ा बीमारी है वही में सचरे रही थे और खत्म होने नहीं धरे। अभी भी लगाए ओकर बाद फिर से धान लगा दे वो तो ये बार बार धान लगाए से जमीनों के जो उर्वरा शक्ति है वह खत्म हो जाते और कोई भी फसल ना बार बार नहीं लगाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हमन के फूल की खेती है। काबर की फूल की खेती से डबल फायदा है, एक तो हो गए फसल चक्र अपना लेन, दूसरा फूल के बाजार में बहुत ही ज्यादा मांग हवे और फूल है नगदी फसल हरे। आप ले गए और तुरंत तोड़े और तुरंत बेचाओ, आज फूल गए और दो दिन तीन दिन बाद वाला फूल बेचाओ, मतलब बराबर हर दिन हम फूल बेच करके हमने कमाई कर सकतन, तेकर कारण फूल बहुत अच्छा है।
2: अगला फोन आवत है डॉक्टर साहब, तो ये चर्चा ला आगू करबो फिर अभी फोन ले लेथन।
3: हेलो। हाँ मैडम नमस्ते।
2: राम राम। कौन बोला था, कहाँ बोला था?
3: हाँ मैं मानवेंद्र साहू बोला था, गर्रा पार बांधा बाजार ले।
2: जी भैया क्या प्रश्न है आपके?
3: इन्हें हमारे विषय रही से कि जैसे बरसात अभी अवैया है इन्हें उपयुक्त जिस फूल लगाना है तो कौन कौन से फूल अभी लगा सकते हैं, कैसे ढंग के लगा सकते हैं और फूल हमला कहाँ मिल सकत है, जानकारी लेना रही मैडम।
2: मतलब फूल के बीजा हमला कहाँ से उपलब्ध हो जाए ये जानकारी लेना चाहता था आपन। जी भैया ये आपके प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ है।
0: साहू जी बड़ा सुघर प्रश्न करे हो। बारिश के मौसम में मुख्य रूप से यदि बात करन तो गेंदा हवे, कॉस्मोस है वे, पोर्चुला का हवे, रेन लिली है, गम्फरीना है वे, बालसम सिलोसिया, ये जम्मो फूल की खेती जो वार्षिक फूल है एकर खेती बहुत अच्छा कर सकतन। फिर वार्षिक फूल के साथ में बात आते एक ठक बहुवर्षीय फूल, तो बहुवर्षीय फूल में गुड़हल हवे, फिर हमारे उनके जो जस्मिन हवे और चमेली हवा है, एक जोरा हवा है, मधुमालती है, कनेर है, ये जम्मो फूल के खेती हमन अच्छा से कर सकथन। आप मन के दूसरा प्रश्न रही कि ये कहाँ मिली, तो कोई भी अनुशंसित जगह से चाहे वो मतलब नर्सरी रहा है जिन्हाँ एक्रीडेटेड नर्सरी रहा है जिन्हाँ उपयुक्त तो फूल के पौधा मिलते, शासकीय उद्यान रोपनी राजनांदगांव है और बालोद के पास में नर्सरी हवे, तो ये सभी नर्सरी मन में बहुत अच्छा किस्म करी थे। दूसरा जो है कोई भी पंजीकृत संस्था से यदि हमन बीज लेवन ओकर अनुशंसित बीज तो बहुत अच्छा रही। गेंदा के बारे में मैं बताऊँ आपला, पूसा नारंगी गेंदा है और पूसा बासंती गेंदा हवे, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में यदि हमन उमा फोन नंबर भी मिल जाते वहाँ से मंगावन तो बीज बहुत अच्छा मिल सका हमन ला।
3: अच्छा ठीक ठीक।
2: हाँ
3: तो ठीक है सर जी, जानकारी
2: के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हाँ। ये फोन के पहले हम चर्चा करते रहे धान के विकल्प में का फूल हाँ। की खेती हो सकते है, तो ये विषय में आप जानकारी तो, देवत रहे हो।
0: हाँ तो दीदी जैसे हम चर्चा करते रहे कि धान के विकल्प के रूप में जो फूल की खेती बहुत अच्छा हो सकते है, मैं पहली भी हम बात कर

0: पेन कि नगदी फसल हवे आज तोड़ और तुरंत बेच, ऐसा करके हम मांग करके बेच सकतन। बस ये चीज ध्यान देना है कि धनहा खेत में मेड़ बना करके हमारा बोल पड़ी, क्यारी बना करके ऊंचा करके पानी मत भरा, ये चीज भर के ध्यान दे पड़ी हमन ला। और दूसरा बात, यदि किसान भाई मन फिर भी धान लगावा थे कुछ क्षेत्र में और मेड़ यदि खाली है उसमें हम यहाँ फूल की खेती बहुत अच्छा से कर सकथन। और फूल की खेती से डबल फायदा मैं बताता हूँ आप मतलब, यदि धान लगाए हुए तो मेड़ में लगा करके फायदा ले सकते हैं। दूसरा, फूल में जो है कीड़ा मन आकर्षित जल्दी होते, तो मुख्य फसल में नहीं जाके कीड़ा है, गेंदा के फूल में आही और गेंदा के फूल में ही सिर्फ दवाई छिड़काव करके हम बहुत अकन कीड़ा ला वही मेरे खत्म कर सकथन। ऐसा करके हम मुख्य फसल में हमारा डाले नहीं पड़े जो दवाई वगैरह है, और गेंदा के फूल फायदा भी मिली और कीड़ा भी वही पास आई, तो ऐसा करके हम मुख्य फसल उल सुरक्षा कर सकतन और अतिरिक्त लाभ हम पुष्पी पौधा से कमा सकतन। एक बारे में हमें सोचना चाहिए और जमीन के भी अधिक से अधिक उपयोग हुई। गेंदा के फूल जैसे कि साल में 3 बार लगा सकता ना मना।
1: अच्छा जी।
0: और बहुत ज्यादा खाद उर्वरक की भी ऐसा जरूरत नहीं है और जमीन भी अच्छा बना के रखते, तो ऐसा करके हम साल भर भी हम पुष्पी फसल के हम खेती कर सकतन। मांग तो बाजार में बहुत है छे, ये जम्मो चीज करके हम धान के विकल्प के रूप में पुष्पी फसल के हम खेती ला बढ़ावा दे सकत।
1: तो जैसे आपने बताया कि धान के खेती के साथ में इला कर सकत हन, तो इला लगाए कैसे जाए, माने धान के पौधा के बीच बीच में लगाया जाए कि ओकर धान के जो खेत लगे तेकर मेड़ में लगाया जाए, कैसे लगाया जाए इला?
0: यदि धान के खेत में लगाना हवे तो धान के बीच में नहीं लगा पाबो दीदी, काबर की धान के में पानी भरा हो रही थी, तो एला हमला मेड़ में लगाएल पड़ी।
1: जी जी।
0: यदि धान फसल लगे हुए तो मेड़ में लगाएल पड़ी, और मेड़ खाली थे, बहुत बड़े बड़े मेड़ देखे मिले,
1: चौड़ा चौड़ा मेड़,
0: चौड़ा चौड़ा मेड़ थे, तो ओमा हम एक लगा करके अतिरिक्त लाभ कमा सकतन, एक बारे में हम सोचन।
1: तो भाई ये तो बहुत अच्छा विकल्प हो सकत है, ये तो हम धान के साथ साथ लगाए वाला गोट करे हन। अब अगर सिर्फ अगर मान लो हमला ही बसला लगाने हैं, फूल बस के खेती करना है, तो ओकर तैयारी कैसे करन, भूमि के चयन कैसे करन, माटी के चयन तो ओकर तैयारी कैसे करन, एकर बारे में थोड़ा जानकारी देते हो?
0: हाँ, बहुत अच्छा अपन के सवाल है। तो जमीन के तैयारी के लिए हमला ये चीज ध्यान देना चाहिए कि जमीन जल भराव क्षमता कम रहे, जल लत रुके लेकिन भराव मत रहे, मतलब ठहरे मत, कावर की यदि जल ठहर गए तो वहाँ जड़ के सड़न के रोग हो जाते, ये बात तो हमें ध्यान पड़ी, तब वह बह जावे। तेकर कारण सबसे अच्छा जमीन माने जाते बलई दोमट जो मिट्टी थे वो सबसे बढ़िया थे, जेमा की पानी भीरी थे और पानी ये ढाल होकर के निकल भी जाते, तो ये जमीन के चयन करना चाहिए। जमीन चयन करे के बाद आते जो किस्म के चयन सबसे बहुत बहुत बड़े महत्वपूर्ण है कि बाजार में जिन किस्म के मांग हवे वही किस्म के हम फूल लगावन तो सबसे अच्छा रही, तो एक बारे में ध्यान देना चाहिए। तो गेंदा किस्म के बारे में हम पहली भी चर्चा करें तो वहाँ ऐसा है, तो पूषा नारंगी गेंदा, पूषा बासंती गेंदा, अफ्रीकन जायंट है वे, अफ्रीकन येलो हवे की क्रेकर जेक है, ये किस्म मन के हम लगा सकथन। एकर साथ साथ हमन ला जो रजनीगंधा फूल जेकरो मांग बहुत हवे बाजार में यही फूल लगा सकथन, तो रजनीगंधा के वैभव प्रज्वल किस्म हवे ये वाला लगा सकथन। फिर जमीन के तैयारी के बारे में बात आती, तो जमीन के तैयारी के बारे में ऐसा है कि मिट्टी पलटने वाले हल गहरी जुताई करण कर से, ताकि एक समय में नीचे के उर्वरा शक्ति है ज्यादा अच्छा रही थे और ऊपर के उर्वरा शक्ति ला पहली वाला फसल ले ले रही थे, तो गहरी जुताई करण एक बार और ओकर बाद 2 बार कल्टीवेटर से चलावन, ताकि ओकर ढेला फूट जावे। ढेला फूटे के बाद जमीन ला बराबर कर लेवन, अच्छा समतल कर लेवन, पानी भरा मत हो कारण। फिर क्यारी बना करके लगाना चाहिए, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग दूरी में लगाए पड़ते, जैसे गेंदा फसल के लिए हमन बोलता है कि 45 सेंटीमीटर कतार से कतार और 45 सेंटीमीटर की पौधा से पौधा दूरी रखन बारिश के मौसम में। ये दूरी भी दीदी ये चीज जानने की जरूरत है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग दूरी थे, बारिश के मौसम में फसल के बढ़वार बहुत ज्यादा होते तो दूरी ज्यादा रही थे, और उसके बाद गर्मी के मौसम में यदि हम कभी किसान भाई मन लगाते तो दूरी कम करे पड़ते कार की बढ़वार कम होते पौधा की, तो ये बात का ध्यान जरूरत हमें। उसने गमफ्रीना करके फूल रहे थे फूल हवे ओकर 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के दूरी में लगाना चाहिए, कासमास हवे तो 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर के दूरी में, और रेड लिली हवे ओला 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के दूरी में लगाना चाहिए। ये जम्मो के किस्म के चयन के विशेष ध्यान देने की जरूरत हवे, और बीज अनुशंसित जगह से लिए जाए जो पंजीकृत संस्था है ओकरे से लिए जाए, ताकि जो प्रमाणित बीज रहे वह ओकर अंकुरण क्षमता अच्छा रहे, वहाँ कीड़ा

0: बीमारी के प्रकोप मत रहा है, ये जम्मो बात ला ध्यान दे की जरूरत हवे। भूमि की तैयारी के समय में हमारा अच्छा सड़े हुए गोबर के खाद कम से कम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर मिलाए की जरूरत हवे, और आखिरी जोताई से पहली मिलाना चाहिए जेकर से जमीन पूरा तरीका से मिल जावे। हमन देखा तो वो दीदी की रासायनिक खाद डाले के वो माँ हमारे किसान भाई मन गोबर खत्ता मतलब डालना बंद कर दे।
1: जी जी।
0: मैं सबे किसान भाई ला जतका झन सुना था भाई ये आकाशवाणी के माध्यम से, वो मतलब अनुरोध करूँ कि गोबर खाद के अधिकतम से अधिकतम उपयोग करे, ओकर से जमीन जो है अच्छा रही, हमार भुइयां महतारी है बहुत अच्छा रही और ओकर उर्वरा शक्ति बने रही, काबर की जमीन में बहुत सारा लाभदायक जो है सूक्ष्म जीव रही थे जिन्हें फसल मन ला लाभ देते, एक बारे में ध्यान देना चाहिए। साल में कम से कम एक बार हरी खाद के उपयोग करें हमारे किसान भाई बहन, हरी खाद के उपयोग करे से हमारे जमीने में बोला वही खेत में लगाबो और बोला बाद में पलट देबो तब वह खातु बन जाते।
1: जी।
0: बहुत अकन ढेंचा हवा लोबिया हवा एकर मन से, और नत्रजन जो है वातावरण की नत्रजन तको जमीन में मिलाए काम करते ये फसल बना, एक बारे में ध्यान हमारा दे के जरूरत हवा।
1: माने अगर हम ये फूल के पौधा लगावन तो हमारे माटी के जो पोषक तत्व तो है अगर कम हो गए तो एक से ये भरपूर मिल जाए।
0: भरपूर
1: हाँ जी जी जी। तो एक बार एक देखभाल और सावधानी के बारे में हमारे किसान भाई मल्ला का बताना चाहूँ।
0: जैसन कि हम यहाँ पूरा फसल के खेती तो अच्छा से कर लें, संतुलित जो है पोषक तत्व के उपयोग करन कि जतके जरूरत है उतके उपयोग करन। कभी कभी का है हमारे किसान भाई मन हाँ नत्रजन जो है वे पोषक तत्व ओकर ज्यादा उपयोग कर देते, काबर के ओकर से हरा भरा दिखत रहे थे, लेकिन हरा भरा दिखना ही पर्याप्त नहीं है
1: जी,
0: ओमा संतुलित उपयोग किया जाए, कत का नत्रजन डालना है, कत का फॉस्फोरस डालना है, कत का पोटाश डालना है, कत का सूक्ष्म पोषक तत्व डालना है, यह जम्मू चीज है मृदा के परीक्षण करवा करके ही करना चाहिए, क्योंकि मृदा में हमारे उनके कतका कन हवा ये तत्व मन ओकर हिसाब से मन डालन तो बहुत जरूरी है ये सब चीज़ लग करे के। ओकर बात कीड़ा बीमारी के बारे में बात आते तो कीड़ा बीमारी के लिए भी जतका भी हमारे के जैविक फफूंदनाशी है, जैविक जीवाणुनाशी है, जैविक कीटनाशी है, एकर मन के उपयोग ला बढ़ावा दे जरूरत है। हमारे उनके घर में सरसों खली होते, नीम के खली होते, नीम के तेल होते।
1: चर्चा करबो, फोन आवत है अभी तेरा ले लेते हैं। हेलो चौपाल।
2: हाँ मैडम जी, जय श्री राम।
1: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
2: राम साहू बोला था, गुंडर से बालोद।
1: बालोद ले जी भैया, तो का प्रश्न है आज आप मन के हमारे विशेषज्ञ ले?
2: अच्छा, तो मेड़ में जैसे अभी धान बोथन तो मेड़ मन में फूल लगा सकते
1: हैं? ये प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ है।
0: जैसा की साहू भैया अपन प्रश्न करे, ये प्रश्न पहले भी हमारे उनके किसान भाई मन कर रही थे, तो जो खाली मेड़ है जेमा कचरा उगत रही थे ओमा हमन पुष्प के खेती बहुत अच्छा से कर सकथन, वहाँ जुताई कर देवन अच्छा से, और ओकर बाद यदि जेन में लगाना है तीच में कोड़ कोड़ करके लगावन तो ये अतिरिक्त लाभ के साधन भी हो सकते। और दूसरा मैं पहली भी चर्चा करें कि कीड़ा जो लगते मुख्य फसल में आपके धान में लगने वाला कीड़ा लग इमा आ जाही तब धान में कम से कम कीड़ा लगी, और थोड़ा से फसल हवा जैसे फूल के ओमा मन छिड़काव करके दवाई ला और मुख्य फसल ला भी बचा सकता और अतिरिक्त लाभ के साधन हो सकते, एक बात ला ध्यान दे के जरूरत हवा।
2: गेंदा फूल ला हो सकते ना?
0: बराबर गेंदा फूल ला आप लगा सकत हो मेड़मा, लगाए के लिए बस ध्यान दिया कि बारिश के मौसम में 45 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर कम से कम दूरी रहे पौधा के, एक बारे में ध्यान दे जरूरत है और पोषक तत्व के बराबर हमला उपयोग करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपन बहुत सुघर जानकारी देव हमर किसान भाई बहन के जो प्रश्न है देकर उत्तर घलो देव समाधान करो कि भाई धान के संगे संग कैसे हम फूल के खेती कर सकत हन और कैसे ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमा सकत हन, तो अतिक सुघर जानकारी देव ये खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, जय जोहार दीदी।
3: अभी सुनत रहन क्रम हेलो चौपाल विषय रही से बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग, ये विषय मापन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान करते हैं डॉक्टर तोरणलाल साहू, सहायक प्राध्यापक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन जिला दुर्ग। कार्यक्रम के संचालन करत रहिन पूजा चंद्रवंशी और प्रस्तुत करता रहिन शशि प्रकाश पांडे।
1: और भैया अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच के और हमर संगवारी मल्ला अगोरा हो ही हमर आज के प्रश्न के त हमर आज के प्रश्न हम बता देथन संगवारी मल्ला आज के प्रश्न लिख लो संगी हो। आज के प्रश्न है उन्नत किस्म के फूल के बीज

0: जा या पौधा कहाँले बिसा सकत हन। आज के प्रश्न एक गाँव फिर दोहराव था, उन्नत किस्म के फूल या बीजा, फूल के बीजा या पौधा कहाँ ले बिसा सकत हन। ये तो रिस आज के प्रश्न और पांचवा अब तक के प्रश्न रही से लाख हा के प्रजाति के होते, त लाख हा दो प्रजाति को होते, रंगनी लाख और कुसमी लाख।
1: सही उत्तर विजय संगवारी मन के नाम है, मदनपुर का वर्धन है श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, नवागढ़ कटेल है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा शारदा दामनी वर्मा, बठेना पाटन ले बलकरम वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र उमेश परमिला बंछोर, लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी परमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, और गर्रा पार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना मानवेंद्र राकेश साहू। तो सही उत्तर भेजिए हमारे सबो संगवारी मल्ला हमारे ढाले गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
0: और भैया एक टन सूचना है, हमारे जो क्रम होते हेलो किसान वाणी ते खातिर, अब भैया मंगलवार 30 जून के प्रसारित होने वाला हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में विषय हो ही हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण। ये विषय में आपन के जो समस्या और समाधान है, समस्या और जिज्ञासा है तेका समाधान करे बर हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ हुई डॉक्टर पुणेन्द्र साहू अधिष्ठा उद्यानिकी महाविद्यालय साझा बेमेतरा ले। हमारे संगीमन अपन समस्या उस जिज्ञासा के समाधान पर हमरा फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484 और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 30 जून के भेनिया बेरा 11:30 से 12 बजे तक करे जाही और कार्यक्रम के जो प्रसारण है मंगलवार के माने उही दिन संझा बेरा 7:30 में करे जही। तो हमला हमर संगी मन के फोन कान के अगोरा रही, सूचना ईमेल समाप्त हुआ थे।
1: पूजा अभी संगवारी मल्ला का चीज के अगोरा है,
0: मनोरंजन के अगोरा है, तो मनोरंजन होते गीत संगीत ले।
1: मनोरंजन अब अगोरा तो खेती किसानी में पानी की जरूरत ज्यादा है नहीं, तो सुनते बढ़िया गीत जे लगावा थे सोम ठाकुर।

0: झूम के बरस बेरे बादर संगवारी हो गानल गावत रही है सोम ठाकुर और पूजा अगोट बात करत बेरा हो गए संगवारी मन ले विदा लेके संगी मन बता दे मन काली कार्यक्रम संगवारी हो काली संध्या चौपाल माँ गोट बात संघ किसान वाणी माँ क्रम आज की सलाह माँ जानकारी के विषय हो ही खेत बचाओ अभियान मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं उर्वरकों का संतुलित उपयोग विशेषज्ञ हुई डॉक्टर कुणाल चंद्राकर मृदा वैज्ञानिक विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान महासमुंद संघ में आज के प्रश्न उगी संगीत घलो ही आवाज के कार्यक्रम ले देव विदा सबो संगवारी मल्ला राजेश यादव
1: और पूजा चंद्रवंशी के
0: राम राम, राम।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत सुनिए, पहले आक्रोश फिल्म से। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का और आवाज है अनुपम आमोद की।

श्रोताओं, अगला गीत सुनने से पहले सुनिए ये सूचना। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार, जैव विविधता का संरक्षण। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पूर्णेंद्र साहू, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमित्रा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुनिए अगला गीत चित्रपट संगीत कार्यक्रम से। फिल्म का नाम है शोर इन द सिटी। संगीत सचिन जिगर का, आवाज श्रेया घोषाल और टोची रैना की, और इस गीत को लिखा है प्रिया सररिया ने।

शोर इन द सिटी। इस फिल्म से आपने अभी सुना श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से सजा ये गीत, जिसको संगीत के सुरों में बांधा था सचिन जिगर ने। आइए अब सुनते हैं आरक्षण फिल्म का ये गीत, पंडित छन्नूलाल मिश्रा और श्रेया घोषाल की आवाजों में, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं नानक का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी मीनू पुरुषोत्तम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। फीफा फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जूनियर वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत 7 स्वर्ण सहित 24 पदकों के साथ शीर्ष पर। और ABC पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 183 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में 3 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। आयरलैंड 9 विकेट पर 182 रन बनाए। लॉर्कन टकर ने सर्वाधिक 50 रन की पारी खेली। हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और इस समय अभिषेक शर्मा 49 और तिलक वर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच 28 जून को खेला जाएगा। मुकाबले से पहले भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को साथ लेकर चलने की बात कही।
1: Just want to say, let's try and build a solid culture going forward. It's my first opportunity as a captain for the Indian team and definitely an honor and privilege as great respect as well to be leading the country. Going forward, I just want to build a culture where all of us are protecting, supporting each other through thick and thin. And more importantly, when we are out here playing the match, have fun as much as possible.

0: It's a great opportunity, and this is a family. Let's play like lions and approach the game, each and every game, like we are going to go and win it and play to the best of our ability. That's it, nothing more. But have an atmosphere where we are uplifting each other and enjoying each other's success.
1: बात महिला T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत हासिल की। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं हमारे सहयोगी सर फिरोजी की ये रिपोर्ट।
2: एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत निराशाजनक रही। बांग्लादेश ने महज 8 रन पर दिलारा अख्तर का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद शोभना मोस्तरी ने जुएरिया फिरदौस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। बांग्लादेश के लिए जुएरिया फिरदौस ने सर्वाधिक 33 और निगार ने 32 रन का अहम योगदान दिया। बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 3 जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट हासिल किए। रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में भारतीय टीम ने 19

0: प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं हमारे सहयोगी सरफिरोजी की ये रिपोर्ट।
1: एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत निराशाजनक रही। बांग्लादेश ने महज 8 रन पर दिलारा अख्तर का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद शोभना मोस्तरी ने जुएरिया फिरदौस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। बांग्लादेश के लिए जुएरिया फिरदौस ने सर्वाधिक 33 और निगार ने 32 रन का अहम योगदान दिया। बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 3 जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट हासिल किए। रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में भारतीय टीम ने 19 गेंद शेष रहते 137 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। स्मृति मांधना ने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की। मांधना 8 रन का योगदान देकर पवेलियन लौटी। इसके बाद शेफाली वर्मा ने यास्तिका भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़कर जीत की बुनियाद रख दी। शेफाली 34 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 53 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद तेजी से विकेट गिरे और टीम ने 98 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ 5वें विकेट के लिए 30 रन जोड़कर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। रॉड्रिक्स 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने टीम को जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से ऋतु मोनी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। मैच के बाद भारतीय गेंदबाज श्री चरणी ने अपने विचार साझा किए।
2: आई एम जस्ट ट्राइंग टू बोल फॉर माई स्ट्रेंथ एंड जस्ट फॉलोइंग माई रूटीन्स एंड टेकिंग एवरी बॉक्स एवरी डे, जस्ट ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट।
1: सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवेरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। आइए सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
3: प्रतियोगिता के ग्रुप ई के मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में इक्वाडोर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। जर्मनी ने मुकाबले के दूसरे मिनट में लेरॉय साने के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि इक्वाडोर ने भी मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और 9वें मिनट में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के 77वें मिनट में गोंजालो प्लाटा ने बेहतरीन गोल दागते हुए इक्वाडोर को 2-1 की बढ़त दिला दी और मुकाबले को जीत लिया। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और पराग्वे के बीच खेला गया मुकाबला बिना किसी गोल के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस नतीजे के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट स्टेज में 4 जुलाई को डलास में ग्रुप जी की उपविजेता से सामना होगा। वहीं पराग्वे ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहा।
4: ऑस्ट्रेलिया आर थ्रू टू द राउंड ऑफ 32, फिनिशिंग सेकंड इन ग्रुप डी बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
3: ग्रुप डी के आखिरी मुकाबले में तुर्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान अमेरिका को 3-2 से हराया। अमेरिका ग्रुप डी में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। मैच के तीसरे मिनट में ऑस्टन ट्रस्टी ने सेबेस्टियन बरहाल्टर के कॉर्नर पर शानदार गोल कर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिलाई। 0-1 से पिछड़ने के बाद तुर्की ने भी जबरदस्त वापसी की। अर्दा गुलर ने बारिस यिलमाज के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए गोल दाग कर स्कोर 1-1 कर दिया। पहले हाफ में 30 मिनट के खेल के बाद तुर्की ने दूसरा गोल कर मैच में 2-1 से बढ़त बना ली। 48वें मिनट में सेबेस्टियन बरहाल्टर के गोल के साथ स्कोर 2-2 पर हो गया। मुकाबला जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था तभी स्टॉपेज टाइम के 8वें मिनट में कान अहान ने निर्णायक गोल करते हुए तुर्की की यादगार जीत पर मोहर लगा दी।
4: Good cross, chance for the winner for Turkey, and there it is,
5: So Turkey go home with a win in their final Group D game. First defeat for the USA at the FIFA World Cup 2026.
3: जापान और स्वीडन के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। हालांकि डलास स्टेडियम में इस नतीजे के बावजूद जापान और स्वीडन की टीमों ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है।

0: दूसरे हाफ के 56वें मिनट में रित्सु दुआन के बेहतरीन थ्रू पास पर डाइजेन माइडा ने शानदार फिनिश करते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डालकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि स्वीडन ने जापान की लीड को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। मैच के 62वें मिनट में एंथनी एलंगा ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ही खत्म हुआ।
1: It's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful. Poise, passing. Oh, wow! He's pulled that out of the bag for Sweden. In the end, it's over as a draw. 1-1, the final score.
0: Group F में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनीशिया को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप एफ में पहले स्थान पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। नीदरलैंड्स ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मैच के तीसरे ही मिनट में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद मुकाबले के 7वें मिनट में ब्रायन ब्रॉबी ने टीम की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ट्यूनीशिया ने गोल करते हुए मैच में वापसी की। हैनिबल मेजबरी के कॉर्नर पर हेजम मस्तूरी ने बेहतरीन हेडर के साथ स्कोर को 2-1 कर दिया, मगर नीदरलैंड्स ने मैच का तीसरा गोल दागते हुए एक बार फिर अपनी बढ़त को बढ़ा लिया। जॉन पॉल वैन हेके ने मैच के 62वें मिनट में नीदरलैंड्स की ओर से तीसरा गोल करते हुए टीम को 3-1 से जीत दिलाई।
2: Injured player behind, it continues through Dumfries and Thamen. The Dutch are flying into the knockout stage, top of Group F.
0: Group E के मुकाबले में Cote d'Ivoire ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुरासाओ को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही Cote d'Ivoire ने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है। मैच के 7वें मिनट में निकोलस पेपे ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। मुकाबले के 64वें मिनट में टीम की बढ़त को पेपे ने 2 गुना कर दिया। पेपे द्वारा किए गए दूसरे गोल से Cote d'Ivoire की जीत तय हो गई।
1: They found a way through and they found a second goal. A brace for Pepe. A wonderful finish. And now Cote d'Ivoire really can think about the round of 32. First time in their World Cup history are through to the knockout stages.
0: Vishal Sharma, Sportscast.
3: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एक रिपोर्ट।
4: यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व नंबर 6 और पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चौ तिएन चेन को सीधे गेम में 21-17, 26-24 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जिया को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग भी अंतिम 8 में पहुंच गईं। 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी ने चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग को 21-12, 21-19 से हराया। रक्षिता ने तुंग की हमवतन चेन सू यू को 21-4, 21-19 से मात दी, जबकि 6वीं वरीयता प्राप्त देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हेंग को 21-17, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत का मुकाबला चीनी ताइपे की लियो झाउफू से, वहीं रौनक चौहान का मुकाबला इसराइल के एम जिल्बरमैन से होगा। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा का मुकाबला डेनमार्क की क्रिस्टोफर सेन से और देविका सिहाग का सामना जापान की आर गुंजी तथा रक्षिता श्री और कनाडा की आर चान आमने सामने होंगे। प्राची वाजपेयी, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: और अब बात एथलेटिक्स पर। स्टार स्प्रिंटर्स अनिमेश कुजूर, उन्नति बोलांडर सहित अन्य एथलीटों ने 65वीं नेशनल सीनियर इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अनिमेश और उन्नति ने ट्रैक पर जहां क्वालिफाइंग मार्क पार किया, वहीं सिंधुश्री ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.25 मीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सिंधुश्री के साथ बरानिका फ्लैंगोवन भी महिलाओं की पोल वॉल्ट में क्वालिफाइंग मार्क हासिल करके एशियन गेम्स के लिए जगह बनाई। उन्होंने 4.20 मीटर की दूरी तय करके 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर सेमीफाइनल में 20.87 सेकंड का समय निकालकर आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। बाद में 200 मीटर फाइनल में कुजूर ने 20.74 सेकंड में स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की 200 मीटर रेस में उन्नति बोलांडा ने एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की की।

0: हरिता ने महिलाओं की 200 मीटर रेस और तेजस शीर्षे ने बाधा दौड़ में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के डेकैथलॉन में केरल के तौफीक एन ने 7276 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहिते ने रजत पदक जीता। दोनों ने कांटे की टक्कर वाले फिनिश में 7250 अंक का एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क पार किया। महिलाओं की शॉटपुट में हरियाणा की मनप्रीत कौर और दिल्ली की सृष्टि विग ने एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पार किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैस्ट।
1: और अब बात निशानेबाजी पर। जूनियर वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। और अब बात वॉलीबॉल पर। एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने आखिरी ग्रुप मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने अपने सभी ग्रुप मैच जीतकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। और चलते चलते बात हॉकी पर भी। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इससे पहले ग्रुप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 4 विकेट पर 89 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
3: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
2: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
3: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए। एक रोड मैप

0: आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी

0: प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी

0: के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Chen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details of drug-related cases on these portals within a fixed timeline. He said that timely sharing of information would help the government

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजने को है, लीजिए सुनिए उड़िया लोकगीतों का कार्यक्रम उत्कल भारती। उत्कल भारती कार्यक्रम में आज कलाकार हैं ब्रिजमोहन दास और साथी। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

0: पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारि दिगर जिते भक्त मैंने आपण आसती
1: दर्शन पाई
0: दर्शन को न पाई सिंह द्वार मथा को पिटुंट आपण चाहती हेले भक्त मान सहित किसी पदे हेले कथा
1: कथा कहना।

0: भज श्री सत्यनारायण गुरुप्रीतीर्थ बुलानंदे कुमार
1: हरि बोला।
0: उत्कल जननी श्री शरदंग प्रीतीर्थ बुलानंदे कुमार
1: हरि बोला।
0: विश्व महाप्रभु मंगल कामना करंदु बुलानंदे कुमार
1: हरि बोला।

उत्कल भारती उड़िया लोकगीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे ब्रजमोहन दास, सहयोगी कलाकार थे बलराम दास नरसिंह, सामंत राय, वरुण कुमार साहू और रमेश चंद्र राउत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें।

श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम यादें में। दोस्तों, गीत बदलते हैं, दौर बदलते हैं, लेकिन कुछ धुनें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। इन्हीं अमर धुनों और आपकी प्यारी फरमाइशों को लेकर आज हाजिर हूं मैं इस कार्यक्रम यादें में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम कुछ ऐसे फरमाइशी गीतों के साथ जो बीते लम्हों को ताजा कर दे और हमारे आपके दिलों को सुकून से भर दे। इस पहले गीत को सुनना चाहे हमारे इन श्रोता साथियों ने, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, कुरासी भैसा रायपुर से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू, ग्राम पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सोमांशु पांडे, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ही हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म महल से। गीत लिखा है नक्शब ने, संगीत खेमचंद का और आवाज है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, महल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, अगला फरमाइशी गीत है फिल्म बरसात की रात से। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत रोशन का, और आवाजें हैं सुधा मल्होत्रा, मन्ना डे, मोहम्मद रफी और बातिश की। और इस गीत को सुनना चाहा हमारे इन श्रोता साथियों ने, मलियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और आदि जैन, कस्बा बराड़ जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म बरसात की रात से।

श्रोताओं, बरसात की रात फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म मुझे जीने दो का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का, आवाज़ है लता मंगेशकर की और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आप सब हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी देवाना, पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, अर्जुन जजोरिया और गुड्डू, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, फरासी हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी, नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, छत्रपति संभाजी नगर से राजेंद्र सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, भाटापारा से दान सिंह रावत रानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमधा सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी गोपी, भूपेश दीपेश वर्मा, भाटापारा से बचकामल यादव, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय कुमार ठाकुर, सोना डी से सुब्रत शांतना चौधरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन, श्रीमती उर्वशी देवांगन, जतिन जयंत, कुनिका देवांगन, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश, ग्राम कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से प्रेषक हैं ध्रुवा राम साहू, परस राम साहू, देवानंद साहू, श्वेता योगिता और किंजल साहू, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की

विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन हटौत बाजार लाहौत से, कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म मुझे जीने दो से।

श्रोताओं, अगला फरमाइशी गीत सुनिए। फिल्म आजाद से गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत सी रामचंद्र का, आवाज है लता मंगेशकर की और फरमाइश है आप सबकी। चिरमिरी कुरसिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, ग्राम पहरा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, मां महामाया चौक मेघापारा चिल्फी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल,

अंजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज यादव, चिंटू, तरुण यादव, चोवा राम यादव, कन्हैया, निर्मला यादव, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रिचा गायत्री वैष्णव, सांकड़ा सोमनी जिला राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू, आरंग भिलाई से वासुदेव साहू, रेणुका साहू, हिमांशु साहू, झिलमिल साहू, धरसीमा से हैं छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना यादव, अनुराधा, अल्पना, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरैशी, संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था और प्राची और प्रियल। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म आजाद से।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही यादों का आज का ये सफर बस यहीं तक। तो दीजिए इजाजत अपनी साथी सुषमा को इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

यादें फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाले केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि

कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।